मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज खेत खलियान कार्यक्रम में वार्ता का विषय है मिर्च की खेती। वार्ताकार श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे दैनिक जीवन में मिर्च का काफी महत्व है। इसका अनेक रूपों में इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम और आर्द्रता का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मिर्च की फसल अधिक तापक्रम और आर्द्रता पसंद करती है। यह प्रायः 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पसंद करती है। लेकिन सब्जी जाति वाली किस्में कुछ कम तापमान में भी अच्छी

0: होती है। मिर्च की फसल की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्षारीय भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, परंतु चूने की अधिक मात्रा हो तो भी इसकी सफल खेती की जा सकती है। यह कुछ हद तक अम्लीयता बर्दाश्त कर सकती है। भूमि का पीएच 5.5 से 6.5 होना अच्छा होता है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मिर्च की बुआई सही समय पर करनी चाहिए। बिहार में मुख्य फसल हेतु बीज की बुआई का उपयुक्त समय जून जुलाई का महीना है और रोपण का समय जुलाई अगस्त है। बीजों को बीज स्थली में बोएं जिसका ठीक समय अभी चल रहा है। बीज की बुआई के पहले बीज का उपचार थीरम या कैप्टान नामक दवा से निश्चित रूप से आप कर लें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम दवा मिलाकर उपचारित करें। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर भूमि पौधशाला के लिए पर्याप्त होगी। बीज बोने के लिए पौधशाला की ऊंचाई भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर रखें तथा उसमें पानी नहीं रुके इसकी भी व्यवस्था रखें। क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार रखें। बीज को उपचारित करना किसी भी हालत में नहीं भूलें, अन्यथा पौधे बीमारी से आक्रांत होकर मर जाएंगे और उपज में काफ़ी कमी होगी। अगर पौधे कमजोर हों तो यूरिया का उपरिवेशन कर तुरंत सिंचाई कर दें। पौधशाला में लगे पौधे को कम से कम 2 बार 10 से 12 दिनों के अंतराल पर डाइथेनियम 45 नामक फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें ताकि रोग होने की आशंका नहीं रहे। कीट का आक्रमण दिखाई पड़े तो मेटास्टाक दवा के 0.1% घोल का छिड़काव भी 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करें। हरी मिर्च के लिए फसल सारों भर उगाई जाती है। किसान भाई इसके लिए बुआई भी फसल लेने के समय के हिसाब से ही करें। सफल खेती के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का उपयोग करें। बीज की दर उसके अंकुरण और शुद्धता प्रतिशत पर निर्भर करती है। यदि बीज का अंकुरण 90 से 95% है तो प्रति हेक्टेयर 700 से 900 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। प्रायः मिर्च के पौधे के रोपण शाम के समय ही आप करें। तेज धूप के समय यदि आप रोपाई करती हैं तो पौधे की वृद्धि कम होती है और पौधे मुरझाने लगते हैं, उन्हें सूखने का भी भय रहता है। मिर्च में रोपाई के लिए उचित दूरी किस्म एवं ऋतुओं के अनुसार कम या अधिक होती है। साधारण तौर पर मिर्च की रोपाई पंक्ति से पंक्ति 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। अगर खेत में उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक है तो दूरी कुछ और अधिक आप बढ़ा सकते हैं। किस्मों के बारे में आप जान लें। मसाला के लिए मिर्च की प्रमुख किस्में हैं पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, G1, G2, G4, G5, पंतसी 1, आंध्र ज्योति, भाग्यलक्ष्मी, K2, पंजाब लाल। संकर किस्मों के लिए सोल्जर, क्रांति, दशहरा, गोदावरी, प्रीति, हीरो, BSS 202, BSS 414, तेजस्विनी अच्छी जातियां हैं। इनकी आप बुआई कर सकते हैं। कुछ कम कड़वी किस्में भी हैं जिसमें अर्क वसंत, अर्क गौरव प्रमुख हैं। संकर किस्म में भारत और इंदिरा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब ध्यान देने वाली बात यह है कि खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप निकाई गुड़ाई करते रहें। कृषि रसायनों का भी प्रयोग आप कर सकती हैं। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, लेकिन यदि वर्षा नहीं हो और धूप तेज हो, नमी की कमी हो जाए तो उस समय आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई भी कर सकते हैं। इस तरह से मिर्च की रोपाई करें और इसकी खेती से लाभ उठावें।
1: खेत खलियान कार्यक्रम में आपने जाना मिर्च की खेती के बारे में वार्ताकार श्रीनिवास सहाय से। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। ये समय होता है दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया।

0: यह है, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपके लिए प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
3: महात्मा गांधी के जीवन के कई आयाम हैं, जिनमें स्वतंत्रता

सेनानी, राजनेता, दार्शनिक, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक आदि प्रमुख हैं। दक्षिण अफ्रीका उनकी पहली कर्मभूमि रही, जहां उन्होंने खुद को एक समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया और इस बात को सबसे अधिक महत्ता दी कि समाज में बदलाव की सबसे पहली कोशिश स्वयं से करनी चाहिए। वे इस बात से इत्तफाक नहीं रखते हैं कि समाज के अन्य लोग उनके इस व्यवहार को कैसे देखते हैं। उनका सिर्फ इसी में विश्वास है कि उनका साधन सही हो ताकि साध्य दूषित ना हो पाए। दक्षिण अफ्रीका में जब रेल के प्रथम श्रेणी में बैठ जाने के कारण गोरों द्वारा उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया, तब उन्होंने इसे एक आंदोलन का रूप दिया ताकि उनकी इस पहल से समाज के सभी लोगों को फायदा मिले। अगर इस घटना की तुलना हम वर्तमान समाज से करें तो हम में से अधिकांश या तो इसे अपनी नियति मान लेते, जैसा कि उस समय दक्षिण अफ्रीका के बाकी लोग कर रहे थे, अथवा अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर अपने लिए विशेष रियायत प्राप्त करने की कोशिश करते। इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम में से कोई आगे निकलता भी है तो हम उसे प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित ही करते हैं। लेकिन हमें यहां अपने देश की विरासत को समझना चाहिए कि किस तरह भारत अब तक स्वयं को अक्षुण्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इन सब बातों को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे घरों में दर्पण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। दर्पण हमें वही दिखाता है जैसा कि हम हैं, ना कि वो जो हम देखना चाहते हैं। आप किसी दिन अपने चेहरे को देख रहे हैं और आपके चेहरे पर एक छोटा सा दाग हो गया है जिसे आप देख नहीं पाते। हाँ, देख पाते अगर चेहरे को गौर से देखा होता। जब वह दाग थोड़ा बड़ा होगा तब वह आपकी सामान्य नजरों से नहीं बच पाएगा। इस बिंदु पर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस दाग के बारे में सोचें या इसे अनदेखा कर दें। तात्पर्य है कि इसे उतना महत्व ना दें।

0: डरता से सबके सामने रखा। ये कमियां चेहरे के उन दागों की तरह थे जो कुछ को बहुत पहले दिखे तो कुछ को दाग के बड़े होने पर। गांधी उन व्यक्तियों में से थे जिन्हें यह दाग बहुत पहले ही दिख गया, चाहे वो दाग स्वयं में हो या समाज में। यही वजह रही कि महात्मा गांधी ने जिन समस्याओं को अपने समय उठाया वे आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। हाँ, यहां यह कहना जरूरी है कि कुछ समस्याएं निश्चित रूप से कम हुई हैं, लेकिन उन समस्याओं की जो मूल जड़ है वो आज भी वही है। ये मूल जड़ है लोगों की मानसिकता। हम और आप आज भी दाग के बड़े होने का इंतजार करते हैं, जबकि दर्पण हम रोज ही देखते हैं। हमें अपनी इस मानसिकता से निकलना ही होगा। समस्या को उसके जड़ बिंदु पर ही पहचानना होगा, तभी हम अपने चेहरे के दाग, दूसरे शब्दों में समाज में व्याप्त कमियों को दूर कर पाएंगे। आइए हम इस पर चिंतन करें।
1: चिंतन मनन का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब आनंद लें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

अपने दिन का प्रारंभ हमें भक्ति भजन के साथ करना चाहिए, ध्यान योग के साथ करना चाहिए। भक्ति भजन ध्यान हमारे मन को शांति देता है और वहीं योग हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती है। आइए अपने दिन की शुरुआत करें माता रानी के भजन के साथ।

प्रणाम सनातन की जननी, प्रणाम माँ दुर्गा। माता रानी का नाम मधुर है, अत्यंत मधुर। एक बार जो माता रानी के नाम के मधुरता का रसपान कर ले, उसके बाद वो माता रानी के नाम को जपने से पीछे हट ही नहीं सकता।

शेरावाली का नाम कितना मधुर होता है, उनकी भक्ति कितनी शांति देती है। परंतु कहते हैं भक्ति शांति देती है, वहीं कर्म तृप्ति देती है। अगर हम गलत रास्ते पर चलें, हमारा राह गलत हो, तो हमारे मन में शांति हो ही नहीं सकती। हम अक्सर बेचैन रहेंगे कि ना जाने अगले क्षण क्या होगा, कहीं हमारी गलती पकड़ी तो नहीं जाएगी, कहीं हमारा कर्म हमें ले तो नहीं डूबेगा। हम भक्ति चाहे जितनी भी कर लें, परंतु अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारे मन को तृप्ति नहीं मिलती, हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो भक्ति केवल एक ढोंग मात्र रह जाएगा, वो भक्ति हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचाएगा। वहीं अगर हम भक्ति का सहारा लें और कर्म को भी बेहतर रखें, तो हम पाएंगे कि हम राम श्याम हर ईश्वर तक हमारी पहुंच आप ही हो गई है। भक्ति के साथ अगर हम अपना मन पवित्र रखें, अपने कर्मों को अच्छा रखें, तो हम पाएंगे कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमें उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और जिनका मन पवित्र होगा, कर्म अच्छे होंगे, उन्हें तो हर जीव में हर प्राणी में ईश्वर ही नजर आएंगे।

0: एक सिरे पर राम मिलेंगे, एक सिरे पर श्याम। अगर हम कर्म को ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी बना ले तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:35 होने ही वाले हैं। श्रोताओं, ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज भेंट वार्ता का विषय है टिटनेस, कारण, लक्षण एवं बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर कामाख्या कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बातें कर रहे हैं टिटनेस के बारे में और हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और उपचार डॉक्टर कामाख्या कुमार से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, टिटनेस क्या होता है?
2: टिटनेस एक घातक बीमारी है जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है, आम है। ये एक बैक्टीरिया के चलते होता है, जहाँ पे की वायु की प्रचुरता कम होती है वहाँ पे ये बैक्टीरिया ज्यादा पनपता है, और ये अगर एक बार शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाए तो उसके बहुत ही घातक लक्षण हमारे शरीर में होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर जाए तब ये घातक सिद्ध हो सकता है।
2: जी जी।
1: तो ये किस किस रूप में या किन कारणों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं?
2: ये टिटनेस जो होता है खास करके धूल में और मिट्टी में पाया जाता है
1: जी।
2: और जब भी हमारे शरीर में कोई इंजुरी होता है, कोई भी जख्म होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्किन में कटाव या फिर कोई जलन हुआ या फिर कोई जानवर काट लिया, आदमी काट लिया, या फिर मदर से भी बच्चों में हो सकता है अगर उनके प्लेसेंटा को ठीक से केयर नहीं किया गया, ठीक से उसका ध्यान रखा नहीं गया बच्चों के जन्म के दौरान, तो उस कंडीशन में भी टिटनेस का जो जीवाणु होता है वो हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करता है
1: जी। तो कभी कभी सुना जाता है कि जंग लगे हुए कांटी से या लोहे से कट गया शरीर का कोई भाग, तो उसमें भी टिटनेस क्या प्रवेश कर सकता है?
2: जी जी बिल्कुल, वो माध्यम है प्रवेश करने का, बशर्ते कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए वहाँ जख्म हो या फिर वैसा माध्यम बना हो जिसके द्वारा जो मैंने अभी बताया वो सारे चीज उपलब्ध हो, तो टिटनेस का कीड़ा पहुँच सकता है शरीर के अंदर में।
1: जी, तो आपने ये भी कहा अभी कि गर्भवती माँ के द्वारा बच्चे में भी आ सकता है।
2: जी जी।
1: तो इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए हम लोग तीन चीज है मेडिकल साइंस में, उसका नाम है क्लीन हैंड्स, साफ सुथरा हाथ होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे बच्चे को जन्म देती है माँ, वो सरफेस एरिया, वो जो सतह होना चाहिए वो साफ होना चाहिए, और बच्चे के जन्म के समय में जो हम लोग प्लेसेंटा बांधते हैं उसकी साफ सफाई अच्छे ढंग से होनी चाहिए, जैसे कि काटने वाला जो सीजर होता है वो साफ होना चाहिए। उसके बाद जो प्लेसेंटा काटते हैं उसको बांधना नहीं चाहिए, उसके बाद कुछ उस पर लगाना नहीं है हमारे प्लेसेंटा पे। ये सब चीज़ कुछ हैं जो मेडिकल साइंस में ध्यान रखा जाता है कि बच्चे में टिटनेस की बीमारी ना फैले।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अब इसके अगर लक्षणों की बात की जाए तो अगर किसी व्यक्ति को टिटनेस हो गया है तो प्राथमिक लक्षण कौन कौन से नजर आएंगे?
2: सबसे पहले तो टिटनेस का लक्षण है कि जितने भी हमारे शरीर के मसल्स, मांसपेशियां हैं, उसमें खिंचाव शुरू हो जाता है, बुखार भी आ सकता है। जो मांसपेशियां हैं खास करके मुंह के मांसपेशी, जिसमें कि जबड़ा का नहीं खुलना, शरीर के रीढ़ की हड्डियों का सख्त हो जाना, उसके बाद पेट और निचले जो हमारे पैर हैं उसके मांसपेशियों में भी तनाव खिंचाव आता है, ये सब कुछ लक्षण है। खाना नहीं खा सकता है आदमी, इस कंडीशन को हम लोग टिटनेस के लक्षण के रूप में जानते हैं।
1: जी, और अगर ये बहुत बढ़ जाए तो ये किस हद तक घातक हो
2: ये सकता? अगर लक्षण बढ़ जाए तो उस कंडीशन में सांस का रुकना, उसके बाद हृदय गति का रुकना भी हो सकता है, और इस बीमारी के चलते 40-80% लोग इस बीमारी में मरते हैं, इसलिए इसे घातक बीमारी कहा जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अगर अब हम इसके उपचार की बातें करें तो इसका उपचार कैसे किया जाना चाहिए?
2: सबसे पहले तो हम लोगों को रोकथाम करना है कि टिटनेस हो ही ना।
1: जी,
2: जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करें, जैसे बाहर से आते हैं सही ढंग से हाथ धो के खाने के लिए बैठे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं तो हाथ धोना है, या फिर जो हमारे गाँव में जननी है, जो दाई है आजकल, उसको ट्रेनिंग दिया जाए कि कैसे भाई बच्चों का जन्म कराना है, उस हिसाब से। और दूसरा सबसे बढ़िया है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको उनको गर्भ के दौरान 16 से 36वां सप्ताह के अंदर में कम से कम टिटनेस की 2 सुई लगवाएं और साब और बाद में बच्चों को जन्म के बाद DPT के रूप में टीका आता है, टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए बच्चों को ताकि भविष्य में उनको यह बीमारी ना हो। और हर 5 साल 10 साल पे उनका बूस्टर डोज आता है, वो अपने निकटतम चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जाके इम्यूनाइजेशन सेंटर पे जाके जरूर लें।
1: जी, ये तो हुई गर्भवती माँ और बच्चे की बात। अगर किसी बड़े व्यक्ति को लोहा या जंग वाला कुछ ऐसा सामान चुभ जाए तो उसे कितने घंटे के अंदर टीका लगवा लेना चाहिए?
2: उस अवस्था में किसी भी आदमी को सबसे पहले ध्यान रखना है कि ATS की सुई हर जगह अवेलेबल, हर एक मेडिकल दुकान में अवेलेबल है। ATS की सुई तुरंत लगवाएं और जहाँ पे घाव है, कटा चटा है, उसको अच्छे से ड्रेसिंग करवाना चाहिए, एंटीसेप्टिक लगा के धोना चाहिए, साफ रखना चाहिए, गर्म पानी से, बॉयल पानी से उसको धोना चाहिए, हमेशा घाव का ध्यान रखना चाहिए।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और टिटनस के कारण, लक्षण और उपचार पर बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना टिटनस के कारण, लक्षण एवं बचाव के बारे में भेंटवार्ताकार डॉक्टर कामाख्या कुमार से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी अनूप जलोटा के स्वर में।

सागर तट पर श्रीराम की सेना डेरा डाले हुए है। रीछराज जांबवान वानर सेना को उपदेश कथाएं सुना रहे हैं। समीप ही पर्वत कंदरा में भूखे बैठे जटायु के भाई वृद्ध संपाति हर्षित होते हैं कि आज घर बैठे विधाता ने उनके लिए आहार भेज दिया। कंदरा से बाहर संपाति को देख वानर भयभीत होते हैं, किंतु अंगद को जटायु का स्मरण हो आता है जिन्होंने प्रभु सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपने छोटे भाई जटायु के प्राण विसर्जन की बात सुनकर संपाति को वास्तविकता का ज्ञान होता है। वे सागर तट पर भाई को तिलांजलि देकर युवावस्था की अपनी और जटायु की उस उड़ान की कथा सुनाते हैं जब दोनों भाई सूर्य के निकट पहुंच गए थे। जटायु तो थककर लौट आए थे, किंतु युवावस्था के उत्साह में स्वयं उन्होंने अपने पंख जला लिए थे। उनका उपचार करने वाले दयालु सन्यासी चंद्रमा ने उन्हें तब आश्वस्त किया था कि त्रेता युग में स्वयं परम ब्रह्म के दूतों से मिलकर तू पवित्र हो जाएगा। आज वही अवसर आ गया था। संपाति ने अपनी गीत की दूरदृष्टि का लाभ उठाया और उस स्थान का पता बताया जहां रावण ने सीता को छिपा रखा था।

रामचरितमानस गान आपने सुना अनूप जलोटा के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे सुनिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत मौसम का मिजाज, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां और आनंद लीजिए सुगम संगीत और फिल्मी गीतों का। साथ ही सुनिए गांधी कथा। आज फिल्मी गीतों का प्रसारण समय है प्रातः 9:06, 10 बजे, 11 बजे, 11:30, दोपहर 2:30, शाम 5:30, रात 8 बजे और रात 10:30 पर पसंद आपकी होगा। प्रस्तुत होगा सुगम संगीत प्रातः 9:30 पर। कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। रात 7:52 पर कलाकार आनंद कुमार सिंह। लोकगीत सुनिए प्रातः 10:30 पर कलाकार मधु मिश्रा। 1 बजे गोपाल भगत के स्वर में लोकगीत होगा। बहनों का कार्यक्रम नारी लोक दोपहर 12 बजे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर। ग्रामीण बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:30 पर। हमारी आज की ये सभा मीडियम वेव पर दोपहर 3 बजे संपन्न होगी। आप न्यूज़ ऑन एयर और FM 100.1 MHz पर विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन पाएंगे। मीडियम वेव एवं FM बैंड पर हमारे केंद्रीय के शेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे युवाओं को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज शाम 7:10 पर वार्ता का विषय होगा परिवार कल्याण, बेहतर जीवन की ओर पहला कदम। वार्ताकार होंगी डॉक्टर शोभा रेवन। सुनना न भूले साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल रात 9:30 पर। श्रोताओं आपको बता दें आज 7:20 पर गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे गांधी कथा। गांधी कथा में आज वार्ता का विषय होगा गांधी और जीवन शैली। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुधांशु शेखर। साथ ही आपको बता दें हमारी आज की ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होगी दोपहर 3 बजे FM बैंड 100.1 MHz एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर। आप विविध भारती के कार्यक्रम शाम 5 बजे तक सुन पाएंगे। शाम 5 बजे से हमारे केंद्रीय के शेष कार्यक्रम। शाम 5 बजे युववाणी। प्रस्तुत होगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम रात 10 बजे कलाकार उस्ताद यूनुस हुसैन खान राग जोश। हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्व गमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियंत्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकम्।

0: पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्त राज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के साथ बज चुके हैं, आइए सुने मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग, राम राम, शुभ प्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आप सभी का बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा और आज के आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। जी हाँ, दिन की शुरुआत आपने अभी तक यकीनन कर ली होगी क्योंकि सुबह के, जी हाँ, आज अगर अभी वक्त का हाल मैं आपको बता दूँ तो 7:02 हो चुके हैं और दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है 10 जुलाई सन 2026। और अभी आप हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जहां मनोरंजन की पोटली में लिपटी हुई है ढेर सारी जानकारी। बस एक एक करके ये पोटली खुलेगी और जानकारी निकलेगी, बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और एक और बात कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि ध्यान के साथ करनी चाहिए अपने दिन की शुरुआत, योग करना चाहिए, और साथ ही इसके अलावे आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए, खुद के लिए ज़रूर निकालें और खुद के साथ बैठकर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास बहुत ही आसानी से सारे न्यूज़ पहुँच जाते हैं, हमारे पास न्यूज़पेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शन में हमारी शांति कहीं खो गई है। बहुत वर्षों पहले किन्हीं ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब शांति सबसे महंगी होगी, और शायद कहीं ना कहीं हम उस दौर की ओर धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जहां हमारे लिए शांति सबसे महंगी होगी। हमारे पास इतने सारे संसाधन, इतने सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं कि हम चुनने में व्यस्त हो जाएंगे और मन की शांति कहीं खो देंगे। इसलिए अगर मन की शांति चाहिए तो कभी थोड़ा बैठकर बोर भी होइए। आज के ज़माने में हम बोर होना तो भूल ही गए हैं, क्योंकि थोड़ा भी वक्त, हमें 2 मिनट का भी वक्त मिलता है तो हम फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं और फ़ोन के साथ अपना वक्त बिताने लगते हैं और बोर होना किसे कहते हैं, भूल जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बोर होने में हमारा क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारा

फायदा होता है जब आप बिना किसी चीज के बैठे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें आएंगी, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे जुड़ी बातें आएंगी। अगर किसी समस्या का समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है आप जब अकेले बैठे हों, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी और उपकरण या संसाधन के बैठे हों, तो हो सकता है कि आपको उस वक्त आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। और ख़ुद के साथ वक्त बिताना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कहते हैं कि जीवन में ना, इस जगत में ना, सबकी झूठी प्रीत होती है। अगर सबसे सच्ची प्रीत अगर कुछ है तो ईश्वर के साथ है, और उसके बाद अगर किसी के साथ सच्ची प्रीत होती है तो हमारे खुद के साथ होती है। तो बस अपने इस प्रीत को, अपने साथ के प्रीत को ज़रूर निभाइए। हाँ, अपने अपनों का भी विशेष ध्यान रखिए, पर आप अपने अपनों का विशेष ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप अपने साथ अपनी प्रीत को निभाएंगे। जगत के झूठी प्रीत को थोड़ा किनारे करके आज अपने आप के बारे में सोचिए।

जल्दी बदल जाता है कि समझ ही नहीं आता है कि अभी 5 मिनट पहले क्या मौसम था, अभी 5 मिनट बाद क्या मौसम है। और अगर आज के मौसम की हम बात करें तो आज दिन में अधिकतम तापमान रहने वाला है 32 डिग्री सेल्सियस, और वहीं रात की बात करें तो रात में 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, और वहीं अगर हम बात करें बारिश की तो बारिश की संभावना है। जी हाँ, बारिश की संभावना है, मानसून ने दस्तक दे दी है तो बारिश की संभावना तो यकीनन होगा। और इसके साथ अगर हम बात करें तो आज बहुत ज़्यादा धूप खिली हुई नहीं रहेगी क्योंकि बादल छाए रहेंगे। और वहीं अगर हम बात करें सापेक्ष आर्द्रता की तो सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। और अनुमान है कि 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। तो ये है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। आजकल मौसम आँख मिचोली खेल रहा है, किसके साथ पता नहीं, पर आँख मिचोली तो खेल रहा है, हमारे ही साथ खेल रहा होगा ना, है ना। और इस मौसम में, हालांकि ये मौसम बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी लेकर आता है, कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी, हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये मौसम काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और हालांकि कुछ परेशानी के बाद अगर हम देखें तो मौसम का आनंद उठाया जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उठाया जा सकता है। बारिश और बारिश में भीगते पेड़ और बारिश में भीगती ये ज़मीन बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऐसे मौसम में बस कविताएं सुनने का, कहने का मन करता है। और आइए आज हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता, कविता सोहन लाल द्विवेदी की लिखी हुई, और इस कविता को आवाज़ दी है अनुपमा कुमारी ने। जी हाँ, आप सुगम संगीत सुनना शुरू कर चुके हैं और अभी जो आप सुन रहे थे वो आपने सुना गुरु नानक की रचना। आइए अब सोहन लाल द्विवेदी की ये रचना सुनते हैं।

0: ये रेशम की डोरी, नैनों की रेशम की डोरी या फिर रिश्तों की रेशम की डोरी तब और भी बेहतर हो जाती है जब बहुत ही अजीज हो। और कई बार हमारे अजीज हमसे बहुत दूर रहते हैं, और अगर वो आपसे मिलने आज आ रहे हैं या आप उनसे मिलने जा रहे हैं और ट्रेनों से जा रहे हैं, तो आइए हम आपको ट्रेनों का हाल बता देते हैं। कौन सी ट्रेन सही समय से है और कौन सी ट्रेन लेट लतीफ़ है। अगर आप किसी से मिलने नहीं भी जा रहे हैं, बस बस यूं ही एक जीवन से छोटा सा अंतराल लेकर जा रहे हैं, तो भी ट्रेनों के साथ जो सफ़र होता है वो बहुत ही खास हो जाता है। आइए ट्रेनों का हाल जानते हैं, कौन सी ट्रेन सही समय से है और कौन सी ट्रेन अपने समय से देरी से चल रही है। ट्रेन संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने सही समय पर यानी कि 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय यानी कि 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय समय से 51 की देरी से चलते हुए 9:06 पर भागलपुर पहुंचेगी। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने निर्धारित समय से 14 की देरी से चल रही है, ये 8:19 पर भागलपुर आएगी। 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर अपने सही समय 8:37 पर भागलपुर आएगी। 12335 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 8:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस बिल्कुल अपने सही समय यानी कि 9 भागलपुर पहुंचेगी। और बात करें 63431 यानी कि साहिबगंज जमालपुर मेमो की, तो बिल्कुल ये भी अपने सही समय से चलते हुए 9:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। 13409 यानी कि मालदा की ओल इंटरसिटी अपने निर्धारित समय 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी अपने सही समय 10:15 पर भागलपुर आएगी। 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। तो यह है ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। अगर आप जीवन के एक छोटे से अंतराल पर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही होगा। फिलहाल हम कार्यक्रम के एक छोटे से अंतराल पर चलते हैं।
1: Use a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara.

0: Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under Rs. 1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
4: श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गांधी कथा। गांधी कथा में आज वार्ता का विषय है गांधी और जीवन शैली। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर।

0: नमस्कार। आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे गांधी जी के उन विचारों की, जहां मनुष्य की जीवन शैली किस तरह से हमारे चारों तरफ घूमती हुई नजर आती है, कब कब बदलती है, कैसे और किस दिशा में वो सकारात्मक रूप लेती हुई मानव जीवन को एक अच्छा राह दिखलाती है। गांधी जी का कहना था कि हम जो कहें वो जरूर करें, हमें अपने जीवन शैली में कुछ उस तरह की बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जहां शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति का हमेशा के लिए अच्छा रहे। गांधी जी वैसे जीवन शैली के समर्थक थे जिसमें मनुष्य के व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ लोक हित भी सिद्ध हो। उनका कहना था कि वास्तव में ये जीवन ईश्वर का है, हम मानव जीवन को एक अवसर समझें, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान है हमारा जीवन। मानव जीवन में एक बार शुरू किए गए सारे कार्य को जो हमें ईश्वर कहता है उसकी बातों को समझते हुए जरूर पूरा करना चाहिए। गांधीवादी जीवन शैली में संतुलित आहार का भी बहुत महत्व दिया गया है। गांधी जी स्वच्छता के प्रति भी जीवन में सारी बातों को समझते हुए हमेशा अपने साथ लोगों को कहते थे कि हम जो कुछ करें उसमें यथा संयम के साथ साथ सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म संभाव और स्वदेशी के भी बातों को जरूर समझें। गांधी जी की इन बातों को लेकर, उनकी जीवन शैली को बातों को लेकर जो भी गांधी जी ने लोगों को कहा, जो पुस्तकें लिखी, गांधी जी का जो जीवन दर्शन है उसमें जीवन शैली की बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण हैं और इस पर हम विस्तार से कुछ बातें आपको सुनवाते हैं। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर।
1: महात्मा गांधी जो करते थे वही कहते थे, इसलिए उनकी करनी एवं कथनी में भेद नहीं है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। दूसरे शब्दों में, उनकी जीवन शैली ही उनके दर्शन में प्रतिबिंबित हुई है। गांधी मानव जीवन को एक दुर्लभ अवसर मानते थे, मानवता की सेवा का अवसर और ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति का अवसर। वे जोर देकर कहते थे कि मानव शरीर मात्र मांस एवं रुधिर का लुथरा या मल मूत्र की खान नहीं है, बल्कि मानव शरीर आत्मा का मंदिर है। इसलिए हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे हमारी आत्मा का उन्नयन हो। हमें जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इसकी रक्षा हेतु ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे यह सेवा धर्म का पालन पूरी तरह से कर

सके। वास्तव में मानव जीवन ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें यह थोड़े समय के लिए स्वच्छ एवं निरोग रखने हेतु और सेवा के निमित्त दिया है, इसलिए हम जीवन के मालिक नहीं हैं, ट्रस्टी हैं। हमें ट्रस्टी या रक्षक के रूप में जिम्मेदारी एवं सावधानी से काम करना चाहिए। हमें जीवन का लोक हितार्थ सदुपयोग करना है। हमें जीवन के प्रति अतिरिक्त मोह नहीं होना चाहिए और न ही इससे अनावश्यक विरक्ति ही रखनी चाहिए। हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे हम अपनी शक्ति एवं ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन का सदुपयोग संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए और अपने आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के लिए कर सकें। गांधी वैसी जीवन शैली के समर्थक थे जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध कराए, अर्थात हमारे शरीर, मन एवं आत्मा को सामंजस्यपूर्ण स्थिति में बने रहने में मददगार हो। दूसरे शब्दों में, हम वैसी जीवन शैली अपनाएं जिससे हमारा शरीर स्फूर्तिवान, मन आनंदित एवं आत्मा आलोकित हो। इसके लिए हमें न तो अतिशय शारीरिक व्यायाम करने की जरूरत है और न ही अत्यधिक बौद्धिक वाग विलास एवं कठोर आध्यात्मिक साधना की। बस हमें सरल, सहज एवं सजग रूप में जीवन का स्वीकार करना है। गांधीवादी जीवन शैली में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से अधिक महत्व आध्यात्मिक स्वास्थ्य का है। गांधी ने स्वयं कहा है कि जीवन में शारीरिक आरोग्य का महत्व गौण है, क्योंकि शारीरिक क्षति को तो आदमी सह भी लेता है, लेकिन आत्मा की हुई क्षति अपूर्णीय है। शरीर के आरोग्य से अधिक आत्मा के आरोग्य पर ध्यान देना चाहिए। गांधीवादी जीवन शैली में संतुलित आहार का अत्यधिक महत्व है। हम जानते हैं कि जीवन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समुचित आहार की आवश्यकता होती है। गांधी सभी मनुष्यों को समुचित एवं संतुलित आहार सहज उपलब्ध कराने पर जोर देते थे, लेकिन उनकी स्पष्ट हिदायत है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना चाहिए। हमें सब खुराक औषधियों के रूप में लेनी चाहिए, स्वाद के खातिर हरगिज नहीं। गांधीवादी जीवन शैली में संतुलित आहार के साथ साथ सम्यक विहार का भी काफी महत्व है। इसके अंतर्गत स्वच्छता, श्रम एवं संयम की बातें शामिल हैं। हमें अपने तन, मन एवं जीवन को स्वच्छ एवं पवित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी स्वच्छता के साथ साथ पास पड़ोस एवं गांव समाज की स्वच्छता भी जरूरी है। गांधी स्वच्छता के साथ साथ शारीरिक श्रम पर काफी जोर देते थे और कहते थे कि जो बिना श्रम के खाता है वह चोर है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गांधी के लिए श्रम का अर्थ गुणवत्तापूर्ण एवं उत्पादक कार्यों से था, न कि घर बैठे साइकिलिंग करने या जिम जाकर बॉडी बिल्डिंग से। गांधी दर्शन में स्वच्छता एवं श्रम के साथ साथ संयम का भी काफी महत्व है। संयम के अंतर्गत एकादश व्रतों यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म संभव एवं स्वदेशी के पालन की बातें शामिल हैं। गांधी दर्शन में केवल रोगों के समुचित उपचार की कामना नहीं है, बल्कि ऐसी जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा भी है जिससे रोग हो ही नहीं। यही कारण है कि गांधी इलाज से अधिक परहेज पर जोर देते थे। वे यह मानते थे कि प्रायः सभी रोग हमारी गफलत या गलत जीवन शैली के परिणाम हैं। अतः रोगों से बचने

0: का सबसे अच्छा तरीका अपने जीवन शैली में सुधार लाना है। लेकिन यदि हम अपनी जीवन शैली में सुधार लाए बगैर सिर्फ डॉक्टरी इलाज एवं दवाओं के भरोसे रहते हैं तो इसका अत्यधिक घातक दुष्प्रभाव पड़ता है। गांधी वैसी जीवन शैली के समर्थक थे जिससे मनुष्य के व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ लोक हित भी सिद्ध हो। दूसरे शब्दों में वे सर्वोदय अर्थात शवों के उदय, सब प्रकार से उदय एवं शवों के द्वारा उदय के उपासक थे और वैसी जीवन शैली का समर्थन करते थे जो सर्वोदय के विराट लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो। यहाँ शवों के अंतर्गत न केवल सभी मनुष्यों एवं मनुष्येतर प्राणियों वरन संपूर्ण चराचर जगत का समावेश होता है। गांधी को जीवन जगत की यह वैश्विक दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं सर्व खलु इदं ब्रह्म जैसे आदर्शों पर आधारित प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति में नजर आती है। यही कारण है कि गांधी नीति प्रधान भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाने पर जोर देते हैं और अनैतिकता को पोषित करने वाली पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को पूरी मानवता के लिए विनाशकारी मानते हैं। संक्षेप में, आज पूरी दुनिया भोगवादी आधुनिक जीवन शैली की गिरफ्त में है। इसके कारण दुनिया भर में गरीबी, भूखमरी, विषमता, हिंसा एवं पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ा है। साथ ही अनिद्रा, तनाव, हताशा एवं कुंठा जैसी मानसिक समस्याएं और एड्स जैसी महामारियां भी फैलती जा रही हैं। ऐसे में मानवता को बचाने के लिए गांधीवादी जीवन शैली को अपनाना अपरिहार्य है। यह जीवन शैली कठिन जरूर है लेकिन यही श्रेयस्कर है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
1: तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि गांधी जी का विचार और गांधी जी का जो मार्गदर्शन था वो जीवन के प्रति दर्शन को, जीवन शैली को किस रूप में हमें सब कुछ एक मैसेज देता है, एक हमें वो सारी चीजें बताने के लिए हमेशा तैयार है गांधी जी का वो दर्शन, जहां हमें इस बात का साफ साफ संप्रेषण मिलता है कि जीवन शैली को किस तरह से हम बनाए रखें और मानव जीवन के मूल्यों को एक हम अवसर के रूप में समझें। मानव जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसमें मनुष्य को अपने कथनी और करनी को, अपने जीवन के अनुशासन को पूरी तरह से समझना चाहिए और देश हित में आगे बढ़ते हुए अपने साथ के लोगों को भी आगे बढ़ाते जाना चाहिए। चलिए, हम बहुत सारी बातें करेंगे आगे भी अंक में, लेकिन चलते चलते गांधी जी के उन गीतों को जो लगातार आप सुनते रहते हैं, उन गीतों में भी कहीं ना कहीं स्वर, ताल और शब्दों के दर्शन हैं, जीवन शैली के दर्शन हैं। चलिए उस जीवन शैली के कुछ शब्दों को गुनगुनाते हुए इस कार्यक्रम को सुनते हैं।

आप सुन रहे थे गांधी कथा में वार्ता, गांधी और जीवन शैली। वार्ताकार थे डॉक्टर सुधांशु शेखर। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में। और अगर बात करें तो हम कार्यक्रम में अगले पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और अगले पड़ाव पर पहुंचने पर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और साथ ही बहुत सी बातें आपको बताने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ वक्त का हाल। अगर वक्त का हाल बता दूँ तो वक्त हो चुका है 7:34 और दिन है आज शुक्रवार का। तारीख है 10 जुलाई सन 2026। और आज की तारीख में क्या कुछ घटित हुआ है, आइए इस बारे में जानते हैं, यानी कि इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि इतिहास में क्या कुछ दर्ज हुआ है। आज ही के दिन 1995 में म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक असंतुष्ट एवं नज़रबंद नेत्री आंग सान स्यू की लगभग 6 वर्षों के

बाद नज़रबंदी से मुक्त की गई थी। 1957 में फिजी में नए संविधान को मंजूरी मिली, साथ ही भारतीय समुदाय को राजनीतिक अधिकार मिला था। 2005 में अर्जेंटीना जूनियर विश्व कप हॉकी का नया चैंपियन बना था। 2006 में इनसेट 4C भारत का भूतुल्यकाली उपग्रह था, जिसे प्रमोचक रॉकेट GSLV-FO2 ऑन बोर्ड इनसेट 4C सहित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया था। साल 2008 में भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अब बात उन व्यक्तियों की जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज के दिन साल 2014 में जोहरा सहगल का निधन हुआ। जोहरा सहगल प्रसिद्ध अभिनेत्री और रंगमंच कलाकार थीं। अगर जोहरा सहगल के बारे में बात करें तो इनका जन्म 27 अप्रैल 1912 को हुआ था और ये एक दिग्गज भारतीय अभिनेत्री थी, नर्तकी थी और साथ ही बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि जोहरा सहगल एक कोरियोग्राफर भी थे। 7 दशक से अधिक उन्होंने अपने फिल्मी करियर को बनाए रखा और अभिनय किया, रंगमंच किया, साथ ही उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है और माना जाता है कि वो भारतीय सिनेमा की ग्रैंड ओल्ड लेडी हैं। अगर उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था और अगर उनके थिएटर और नृत्य के बारे में बात करें तो पहले तो वो जर्मनी गई थी, वहाँ उन्होंने अगर उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें तो लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद वे जर्मनी के ड्रेसडेन स्थित मैरी विगमैन में वेले स्कूल में नृत्य सीखने गई और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। और इसके सिर्फ पहली भारतीय महिला ही नहीं बल्कि पहली भारतीय बनी जो उस स्कूल में नृत्य सीखने गई थी। और इसके साथ अगर हम बात करें तो वहाँ से लौटी तो उन्होंने जोहरा महानर्तक उदय शंकर की नृत्य मंडली में शामिल हो गई और उसके बाद उन्होंने दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया और बाद में वो पृथ्वी राज कपूर के पृथ्वी थिएटर से जुड़ी और लगभग 14 वर्षों तक उन्होंने नाटक में काम किया। और अगर इनके फिल्मी सफ़र के बारे में बात करें तो जोहरा सहगल 1940 के दशक में फिल्मों में कदम रखा उन्होंने और धरती के लाल उनकी पहली फिल्म थी, नीचा, नगर, अफसर, इन सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और इन्हें जो पहचान मिली इनके आरंभिक जीवन में तो मिली ही, बाद में इन्होंने अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में भी फिल्मों में काम किया और कहा जाता है कि ये फिल्म की सबसे चहेती दादी के रूप में उभर कर आई। 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने दिल से हम दिल दे चुके सनम, कभी खुशी कभी गम, चीनी कम, वीर जारा जैसी सफल फिल्मों में काम किया और यादगार भूमिकाएं निभाई। 2007 में आई फिल्म सावरिया उनकी आखिरी फिल्म थी और फिल्मों के अलावा उन्होंने द ज्वेल इन द क्राउन जैसे प्रसिद्ध टीवी शो में भी काम किया था। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने पेंटर, वैज्ञानिक और नर्तक कामेश्वरनाथ सहगल से शादी की थी 1942 में और जोहरा सहगल को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले थे। 1998 में उन्हें मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2001 में पद्मश्री और 2004 में संगीत नाटक अकादमी का फेलोशिप सम्मान और 2010 में पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा गया था और सम्मानित किया गया था। जोहरा सहगल 102 वर्ष की लंबी और प्रेरक आयु में 10 जुलाई साल 2014 को इस दुनिया को अलविदा कह गई थी और ये जोहरा सहगल की जीवन यात्रा थी। और अब हम आगे बढ़ें तो साल 2006 में अहमद नदीम कासमी का निधन हुआ था। अहमद नदीम कासमी प्रसिद्ध शायर थे। अब्दुल गफूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। साल 2004 में इनका निधन हुआ था। साल 1971 में भिखारी ठाकुर का निधन हुआ था। भोजपुर के समर्थ लोक कलाकार थे। सर गंगाराम प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक 1927 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज है जन्मदिन। 1983 में जन्म हुआ था चित्रा के सोमन का, भारतीय एथलीट हैं। असद भोपाली प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे। 1921 में इनका जन्म हुआ था। 1950 में जन्म हुआ था परवीन सुल्ताना का। प्रवीण सुल्ताना भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। आलोकनाथ का जन्म हुआ था
10 जुलाई 1956 में 1949 में सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था। भारतीय क्रिकेटर सैयद अली भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। इनका जन्म 1942 में हुआ था। रजनीकांत अरोल भारतीय समाज सेवी थे। 1934 में जन्म हुआ था इनका। 1910 में जन्म हुआ था कर्नल धर्मवीर सिंह का, भारतीय सेना के जावाज सैनिकों में से एक थे। ये थे आज के इतिहास के पन्नों से निकली हुई कुछ बातें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ही के दिन जन्म हुआ था असद भोपाली का। इन्होंने बहुत ही कमाल के गीत लिखे, बॉलीवुड में इनके बहुत ही मशहूर गीत हैं। आइए इनके कुछ गीतों को सुनते हैं और गीत के उस पार एक छोटा सा अंतराल होगा। अंतराल के उस पार मैं ढेर सारी जानकारियों के साथ वापस आपके साथ जुड़ूंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए।

0: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km, and running costs of under ₹1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की.
3: Oh, lovely. Well done.
2: Business loan approved.
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से.
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ.
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो.
3: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी.
7: एक बहुत ही प्यारे से गीत और एक छोटे से अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला. गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा. आपका एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में. हमने अब तक इतिहास के पन्नों को पलट लिया है. इतिहास के पन्नों के पलटने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम वर्तमान में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में भी जानें और हमारे आसपास की खबरें रहने से हम कॉन्फिडेंस तो आता ही हमारे अंदर और साथ ही हम जागरूक भी रहते हैं. हमारे साथ कुछ गलत ना हो इस बारे में भी हम जागरूक रहते हैं. तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बढ़ा है और क्या नया घटित हुआ है इस बारे में जानते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों से. जनहित में कार्यवाही, सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसरों को जारी किया इफेक्टिव मीटिंग गाइडलाइन. अफसरों को पालन का निर्देश. अब नहीं चलेगा साहब मीटिंग में है, 50 मिनट से लंबी बैठकों पर लगाम. मोबाइल चलाने पर पाबंदी, 3 दिन में तय होगा एक्शन. 142 साल में पहली बार लॉर्ड्स में आज पहला महिला टेस्ट, हमारी बेटियां खेलेंगी. क्रिकेट में नारी शक्ति का सबसे सशक्त पल, क्योंकि 1999 से पहले यहां महिला क्रिकेटरों की पवेलियन में एंट्री तक बैन थी, वजह पुरुष वर्चस्व. क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर 142 साल के इतिहास में पहली बार शुक्रवार को यानी कि आज महिला टेस्ट खेला जाएगा. लॉर्ड्स का संचालन करने वाले क्लब एमसीसी में महिलाओं को सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी. 1999 में पहली बार महिलाओं को क्लब की सदस्यता मिली. मैच के दौरान महिला दर्शकों, यहां तक कि खिलाड़ियों की पत्नियों या महिला क्रिकेटरों को भी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक पवेलियन में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी. 1976 में पहली जब महिला टीम पहली बार यहां वनडे खेली, तब भी वे सीधे पवेलियन से होकर मैदान पर नहीं उतर सकती थी. उनके लिए ड्रेसिंग रूम भी अलग बनाया गया था. लड़कियों का क्रिकेट खेलना असंस्कारी माना जाता था. महिला प्लेयर्स को स्कर्ट पहनकर खेलना पड़ता था. रशेल हे हो जैसी महिला क्रिकेटरों को ये पुरुष प्रधान किला तोड़ने में लंबी कानूनी जंग लड़नी पड़ी और आज 142 साल बाद पहली बार आज हमारी बेटियां लॉर्ड्स में महिला टेस्ट खेलेंगी. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. अगली खबर है जंग तेज, ईरान का कतर, जॉर्डन, इराक पर जवाबी हमला. 5 देश निशाने पर. हमले में ईरान का चाब हार पोर्ट तबाह. यहां भारत ने 1,000 करोड़ लगाए थे. ईरान मुआवजे के 28 करोड़ रुपए पर अड़ा, ट्रंप तैयार नहीं. हाईकोर्ट ने कहा 19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई. बिहार में 34.6% बेटियों के हाथ 18 से पहले हो रहे पीले. कानून की दहलीज पर बचपन बिहार में बाल विवाह रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट में पहली बार उतरा CNLU. सरकार से विस्तृत जवाब मांगा. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का निर्देश जारी. ट्रैफिक चालान की सुनवाई अब स्थायी लोक अदालत में होगी. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर भारी पेंडेंसी खत्म करने की तैयारी. अब थाली का स्वाद बढ़ाएगा बिहार का मखाना पापड़. मिलेगा रोजगार का नया जरिया. BAU के इंक्यूबेशन सेंटर में विशेष ट्रेनिंग. इसे एक बड़े स्टार्टअप मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना. खतरे की घंटी. सबौर प्रखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लगा शिविर. कैंप में 84 लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग, 17 संदिग्ध मिले. बेली ब्रिज व भोलानाथ ROB की प्रगति का लिया जायजा. सेतु पर 30 नवंबर तक गाड़ी चलाने का लक्ष्य दिए कड़े निर्देश। गोवर्धन बायोगैस प्लांट फुल क्षमता से नहीं चल रहा, प्रभारी डीएम ने जताई नाराजगी। 24,000 शौचालयों में सिर्फ 10,952 को भुगतान। महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान, भागलपुर की हर पंचायत में खुलेगा जीविका सुधा केंद्र। 75,000 से शुरू होगा व्यापार, मिलेगी सरकारी मदद। बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाएगा, सौर पवन

ऊर्जा में निजी निवेश को बढ़ावा, किसानों को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी, मुख्यमंत्री का फैसला। भारत में दुनिया का पहला हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन लॉन्च हुआ। साइलेंट किलर युवाओं की ले रहा जान, किडनी, हार्ट व बीपी शुगर के मरीज बढ़े। मेडिकल कॉलेज व सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आंकड़े से हुआ खुलासा। 50 से कम उम्र में आ रहा हार्ट अटैक, लाइफस्टाइल व तनाव बिगाड़ रहे सेहत का गणित। थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 69.16 एकड़ शेष भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध। पावर प्रोजेक्ट व सब स्टेशन के लिए जमीन की कवायद तेज हुई। नाथनगर में बनेगा नया पावर सब स्टेशन, विद्युत भार कम होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पहल, गंगा तट पर बनेगा बायोडायवर्सिटी पार्क, 50 एकड़ भूमि की तलाश। नाथनगर अंचल को मिले नए सीईओ, मनोहर कुमार ने संभाला पदभार, बोले लंबित मामलों का होगा त्वरित निष्पादन, भ्रष्टाचार पर रहेगी सख्ती। मौसम की बेरुखी, 120 दिनों में होने वाली धान की किस्में लगाएं, वैज्ञानिकों की सलाह। समय पर बारिश नहीं, बीज में भी देरी, भागलपुर में धान की खेती पिछड़ी। उत्तराखंड में 98% लिटरेसी रेट, इसी लिटरेसी रेट के साथ उत्तराखंड देश का 6ठा साक्षर देश बना। प्रभारी कुलपति पर टिप्पणी मामले में जेपी कॉलेज के प्राचार्य निलंबित हुए। प्रस्ताव, सबौर महाविद्यालय का बदलेगा स्वरूप, ऐतिहासिक विभूतियों के नाम पर होंगे प्रवेश द्वार। बिशरी पूजा की तैयारियों के लिए 19 जुलाई को केंद्रीय समिति की बैठक। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 जुलाई तक नामांकन होगा, सम्राट ने कहा, क्षेत्र की जनता सुशासन के साथ। भाजपा के अभिषेक और राजद की रेखा समेत 9 उम्मीदवारों का नामांकन, पी के 13 को पर्चा भरेंगे। राज्य सरकार ने लीज की 266 एकड़ जमीन वापस ली। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नई चीनी मिल खुलेगी, रिसर्च सेंटर भी बनेगा। उद्यमी योजनाओं में लोन की मंजूरी के लिए हर जिले में शिविर लगेगा। कांवरिया पथ पर हर 2 किलोमीटर पर तैनात होंगे डॉक्टर। श्रावणी मेला की स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक की। शिविरों में 24 घंटे चिकित्सा कर्मी उपलब्ध रहेंगे। अर्निंग सीजन शुरू, अप्रैल जून में सबसे बड़ी आईटी कंपनी की आय उम्मीद से ज्यादा हुई। टीसीएस में मुनाफा 4.6% बढ़ा, 72,275 करोड़। आय में एआई की हिस्सेदारी 9%। टीसीएस में अप्रैल जून तिमाही का रिजल्ट जारी हुआ। सॉफ्टवेयर रिसर्च में निवेश के मामले में भारत सबसे तेज। बाजार की वापसी, सेंसेक्स 238 अंक चढ़ा। आईफोन एक्सपोर्ट में टाटा ने फॉक्सकॉन को पछाड़ा। नीट फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। जेल में बंद आरोपियों को ईओयू की टीम ने 72 घंटे की रिमांड पर लिया। अब बात खेल जगत की। फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम आठ राउंड से पहले 96 मैचों का रिकॉर्ड, 280 गोल, पेनल्टी मिस होने का रिकॉर्ड, सबसे उम्रदराज प्लेइंग 11। विंबलडन में 23 वर्षीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में कोबोली को हराया। ब्रिटेन के आर्थर फेरी सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 25 साल में पहले वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी। अब उनका फ्रेंच ओपन चैंपियन जेवरेव से सामना होगा। महिला क्रिकेट की बात करें तो भारत इंग्लैंड आज दोपहर 3:30 पर भिड़ेंगे। इंग्लैंड में टेस्ट का अजय रिकॉर्ड दांव पर। इंग्लिश ओपनर टैमी ब्यूमेट का इस मैच के बाद संन्यास, भारत का इस साल दूसरा ही टेस्ट। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका पुर्तगाल के बाहर होते ही टिकटों की कीमत 50% गिरी। अमेरिकी लीग में प्रीटोरियस का पहला T20 शतक, यूनिकॉर्न को जीत मिली। T20 में सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड को 159 रन का लक्ष्य। T20 में श्रेयस का अर्धशतक, भारत ने बाएं हाथ के रिकॉर्ड 8 बल्लेबाज उतारे। वनडे में बांग्लादेश के 13 रन से हार, जिम्बाब्वे की सीरीज जीत में
करेन का शतक पूरे 50 ओवर टिके रहे। यूथ वनडे में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज 1-2 से गवाई। अंडर 19 अंतिम ओवर में 10 रन नहीं बचा सकी टीम इंडिया, एक विकेट से हार। अमेरिका H-1B ग्रीन कार्ड व छात्र वीजा से जुड़े नियम अब और सख्त होंगे। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब समय का हाल कह रहा है कि मुझे लेनी चाहिए आपसे इजाज़त और हमारे आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहिए। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। और इजाज़त लेने से पहले, इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले, मैं आपसे कुछ विशेष बातें कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएं, वहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही आप अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और बस जीवन का आनंद लेते रहें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुने कुछ संदेश।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
5: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
6: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
5: रूबरू होंगे आप खबरों से,
6: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
5: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
6: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
5: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
6: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
5: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
6: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
5: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
6: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
5: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से।

प्रातः के 8 बजने वाले हैं। आइए अब सुने दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा। श्रोताओं, खबरनामा के थोड़ी ही देर बाद आप पटना केंद्र से सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इजरायली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशन की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।

0: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीम की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन

0: संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
1: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइस को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्रेडिबिलिटी
1: दुनिया देख रही है।
0: आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
2: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वजीर आजम ने भारतीय बरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भारतीय बरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया।
3: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। नामानिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: ये मीटिंग वाज़े इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को दोनों अहम पार्टियों की किस कदर तायीद हासिल है। स्ट्रेटजिक शराकत दारी में तआवुन पर इत्तेफाक करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सच्चा दोस्त करार दिया और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात को फरोग देने की तायीद की। आला सतही मुलाकात के नतायज की हिमायत करते हुए अपोजिशन लीडर टेलर ने पुरअमन मकासद के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम फराहम करने और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसे तकनीकी तआवुन के इकदामात की भी तायीद की। ये बातचीत सियासी तब्दीलियों के बावजूद सिक्योरिटी और तवानाई के अहम शोबों में मुसलसल और मुस्तहकम तआवुन को यकीनी बनाने की अक्कासी करती है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज के हमराह आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
2: न्यूजीलैंड मतारिकी मना रहा है जो उम्मीद यादों और नई शुरुआत की अलामत का माओरी नया साल है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दो दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं जो पिछले तकरीबन 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से इस दिन की अहमियत और बढ़ गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
5: ऑकलैंड में वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वहां आबाद भारतीय अफराद के साथ साथ न्यूजीलैंड के कई लोग भी रिवायती माओरी इस्तकबाल किया ओरा मोदी के साथ उनका खैर मकदम करने के मुंतजिर हैं। न्यूजीलैंड के माली और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर खवातीन नौजवान कारोबारी रहनुमा तालीमी और कम्युनिटी अरकान जनाब मोदी के इस दौरे को भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए दौर के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। उनका ये मानना है कि इससे तजारत तालीम सरमायाकारी खेलों और सकाफती तबादलों के शोबे में इश्तराक मजीद मुस्तहकम होगा। भारतीय बरादरी के अरकान का कहना है कि तकरीबन 40 साल बाद भारतीय वजीर आजम का यह दौरा उनके लिए बड़े फख्र और गहरे जज्बात का लम्हा है। न्यूजीलैंड के लोगों का भी कहना है कि वजीर आजम का यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम करता है। ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमबनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे जिसमें गुज़श्ता दो साल में खासतौर पर तजारत कॉमर्स और दिफा के शुबे में नुमाया पेशरफ्त हुई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है

0: के एक महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ता और मुस्तैद मुआशरा मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। नई दिल्ली में सरहदी अजला के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह बात कही। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क में दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए एक मुतहरिक तरीक़ाकार कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने सरहद पर बुनियादी ढांचे में साइंसी तौर पर 400% का इजाफा किया है। दरख्शा गांव प्रोग्राम का हवाला देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इस पहल के तहत माइग्रेशन को रोकने, रोजगार के मौके पैदा करने और हुकूमत की फलाही स्कीमों के 100% निफाज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोर्ट का मुसवदा तैयार करने की खातिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। कल महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में उन्होंने ये ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि भारतीय आईन में सरकार की पॉलिसी से मुतालिक रहनुमा उसूल हर रियासत पर जोर देते हैं कि वो यकसां सिविल कोर्ट के निफाज पर गौर करे। ये कमेटी आइंदा 6 माह के अंदर रियासती सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तराखंड में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कई जिलों के लिए शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। इस वार्निंग के तनाजुर में कई जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्ला अली खामनाई इस साल 28 फरवरी को अमरीका इसराइल हमलों में हलाक हो गए थे, जिसके बाद मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर महाजाराई का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया का नया रहबर आला मुकर्रर किया गया था। फीफा आलमी कप में अमरीका के बॉस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थीं, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 60वें मिनट और 66वें मिनट में उसके 2 खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। मर्दों के क्रिकेट में ब्रिस्टल में चौथे टी20 बैन अलावामी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान सुरेश अय्यर ने 49 गेंदों में 80 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 2-2 विकेट हासिल किए। खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए तारीख रकम करेगी। ये लॉर्ड्स के मैदान पर खवातीन का पहला टेस्ट मैच होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस तारीखी मुकाबले को यादगार बनाना चाहेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
1: शुक्रिया अर्जुमंद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, तवानाई और साइबर सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद अहम माहदे। मगरबी एशिया कशीदगी के ताल्लुक से भारत के मौकिफ को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत का तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर। दिल्ली में भारत रूस वर्किंग कमेटी की 14वीं मीटिंग से मुतल्लिक खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से माहिगीरी को फरोग देने से मुतल्लिक कौमी प्रोग्राम के आगाज की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا. وہ چار مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے. اور فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है. मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर. थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.

0: 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,423 करोड़ रुपए की राशि को DBT के माध्यम से भेजेंगे। 6 योजनाओं के प्रत्येक लाभुक को 11,1100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में भारी पैमाने पर लंबित ट्रैफिक चालानों के मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोगों से फर्जी ट्रैफिक चालान से सावधान रहने की अपील की है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई के अनुसार SMS या WhatsApp के माध्यम से मिलने वाले ट्रैफिक चालान के लंबित रहने के संदेशों को आधिकारिक पोर्टल echalan.parivahan.gov.in पर सत्यापित करें। PIB ने कहा है कि फर्जी संदेशों के जरिए पहुंचे लिंक पर क्लिक करने से साइबर ठगों द्वारा OTP चोरी किया जा सकता है या बैंक खाते या UPI से अनधिकृत लेन देन हो सकता है। PIB ने लोगों को ऐसे लिंक नहीं खोलने की सलाह दी है। परिवहन विभाग राज्य भर के निजी स्कूली वाहनों का लेखा जोखा रखने के लिए इसी महीने एक पोर्टल लॉन्च करेगा। विभाग के सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पोर्टल पर सभी स्कूल अपना पंजीयन कराएंगे। पोर्टल पर वाहन और उसके चालकों का पूरा विवरण भी दर्ज होगा। पोर्टल के माध्यम से वाहनों के फिटनेस और बीमा पर भी नजर रखी जाएगी। सचिव ने कहा कि स्कूली वाहनों को लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में सभी यातायात पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो मानक E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और साथ ही सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने व्यापक जैव ईंधन नीति का बचाव करते हुए इथेनॉल

0: मिश्रित पेट्रोल से इंजन को होने वाले नुकसान और वाहन के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं को प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति डॉ सीपी राधा कृष्ण दो दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा के प्राइड और बिपार्ड के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नदियों में कटाव निरोधक कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में तटबंधों की नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और वरीय अधिकारियों को लगातार स्थल निरीक्षण करने को भी कहा है। श्री चौधरी ने संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ निरोधी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सामग्री के भंडारण के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार बाढ़ से पूर्व सटीक, समयबद्ध और विश्वसनीय सूचना आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर पहल कर रही है। इस संबंध में बिहार मौसम सेवा केंद्र, भारतीय मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बाढ़ संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को अधिक प्रभावी, समन्वित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में बाढ़ से एक भी जान नहीं जाने देने के संकल्प के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र SEOC के माध्यम से एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और खगड़िया समेत दक्षिण पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान राज्य के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने चलने की संभावना

0: रहा है।
1: इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी को आज मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह पर सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अंतिम यात्रा और जनाजे की नमाज में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार भारी भीड़ के कारण ताबूत को हवाई मार्ग से दरगाह तक पहुंचाया गया। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के सभी 84 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आज से प्रत्येक महीने के पांडे शारदा पाठशाला कहलगांव में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर अन्य विद्यालयों में महिला पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर छात्राओं से सीधा संवाद करेंगी। इस दौरान वे छात्राओं को जीवन कौशल, अधिकारों और भविष्य निर्माण से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देंगी। प्रदेश के सेतु मिश्रा ने चीन के ओरदोस में चल रही पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का स्वर्ण पदक जीत लिया है। मोतिहारी के सेतु मिश्रा के अलावा आस्तिक प्रसाद और दो महिला धावक सांद्रमोल साबू तथा श्रावणी सचिन सांगले की चौकड़ी ने दौड़ 3:18 और 64 नैनो सेकेंड में पूरी की। सेतु मिश्रा 400 मीटर पुरुष दौड़ में भी भाग लेंगे। इधर प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में प्रदेश के ही विभास्कर कुमार हीट में चौथे स्थान पर रहे। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने पर सेतु मिश्रा को बधाई दी है। ब्रिस्टल में मेजबान इंग्लैंड के साथ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल रात भारत को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर 5 मैचों की श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। T20 श्रृंखला में यह भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार है। दोनों टीमें कल साउथहैम्पटन में श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच खेलेंगी। इसके बाद भारत 14 जुलाई से इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेलेगा। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर चलाई जा रही 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इनमें पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन स्पेशल और दानापुर आनंद विहार स्पेशल समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे, खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित होगा। दैनिक जागरण ने रेलवे बोर्ड से जुड़ी खबर पर लिखा है, रेलवे में अनुकंपा पर नियुक्त आश्रित भी OPS के हकदार। दैनिक भास्कर ने EOU की कार्रवाई पर लिखा है, उत्पाद निरीक्षक ने 21 साल की नौकरी में 2,36,00,000 की अवैध संपत्ति बनाई। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदेगा भारत, 1100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य। राष्ट्रीय सागर लिखता है, टेंडर घोटाला में ऋषुश्री की याचिका खारिज। आज अखबार की सुर्खी है, पटना स्थित ANSINHA इंस्टीट्यूट बनेगा विश्वविद्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि DBT के माध्यम से भेजेंगे। प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। और चीन में चल रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोतिहारी के सेतु मिश्रा ने 4x400 मीटर मिक्स रिले का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी

0: पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए आनंद ले फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है गुरु फिल्म से। गुलजार के लिखे गीत को आवाज दी है हरिहरन और अलका याग्निक ने, संगीतकार AR रहमान।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे।
3: Yours always stand out, but what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0 liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just ₹6.85 lakh. So why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
4: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आइए सुने जलीस राशिद का लिखा गाना क्या यही प्यार है फिल्म से। संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने, गाया कलाकार अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो।

इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फिल्म ताल गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार ए आर रहमान।

Thank you.

श्रोताओं, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम आपको शंकर मिश्र नाहर के स्वर में सुगम संगीत नहीं सुनवा पाएंगे। आइए सुने स्वामी प्रणवानंद के आवाज़ में ये सुगम संगीत।

नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। नहीं सत्संग,

रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुखया भागे से नर नरक रूप।

तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सठ हठ पियत विषय विष मांगी।

0: जगत जननी दुख लागी, जनमत जगत जननी दुख लागी, भव भंजन पद विमुख अभागी, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, भव भंजन पद विमुख अभागी।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत आपने सुना शंकर मिश्र नाहर और स्वामी प्रवाणानंद के स्वर में। अगले कार्यक्रम से पहले एक अंतराल।
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
1: Nexa. ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बज चुके हैं। आइए आनंद लें फिल्मी गीतों के कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुने गीता दत्त के स्वर में ये गीत प्यासा फिल्म से, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीत सचिन देव वर्मन का।

अब गीतकार इंदिवर का लिखा गाना लता मंगेशकर की आवाज में, धुन है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म हिमालय की गोद में।

अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के सुर में बोल है आनंद बख्शी के फिल्म हमजोली।

श्रोताओं, अब राहुल देव वर्मन के संगीत से सजा ये गाना अमर प्रेम फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने।

अब लव स्टोरी फिल्म का ये गाना आवाज दी है अमित कुमार ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार राहुल देवर्मन।

0: फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से में आज इतना ही। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगले कार्यक्रम से पहले एक अंतराल।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब लोकगीत मधु मिश्रा के स्वर में, आरंभ में सुनिए देवी गीत।

0: श्रोताओं, लोकगीत में कलाकार थे मधु मिश्रा। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले कुछ जरूरी संदेश एवं सूचनाएं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं और वक्त है कार्यक्रम नई फिल्मों से के तहत नई फिल्मों के संगीत को सुनने का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म ओ रोमियो के इस गीत से, जिसे गाया है मधुबंती बागची और जावेद अली ने। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म धड़क 2 का गीत दर्शन रावल, जोनीता गांधी और रोचक कोहली की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं गुरप्रीत सैनी ने, धुन बनाई है रोचक कोहली ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म परम सुंदरी का गीत सोनू निगम और कृष्णकली साहा की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। आइए अब सुनते हैं फिल्म रेड टू का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतसिर, पूर्णा माला आबादी और नुसरत फतेह अली खां ने। संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खां और रोचक कोहली ने।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में लापता लेडीज का गीत। गीत के बोल लिखे थे प्रशांत पांडे ने, धुन बनाई थी राम संपत ने। मिस्टर एंड मिसेस माही, अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद फैज़ की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं जानी और समीर अंजान ने, संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव और जानी ने।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत, शीर्षक है गुलदस्ता।

नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं कुछ धुने वक्त की किताब में नहीं दिल की तहों में लिखी जाती है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं।

दोस्तों, कभी कभी प्रेम का सबसे सच्चा रूप शब्दों में नहीं, दुआओं में मिलता है। वो न कोई वादा मांगता है, न कोई रिश्ता, बस किसी अपने की राह में बिखर जाने की खामोश सी आरजू अपने भीतर संजोए रहता है। रूह से निकली मोहब्बत कभी मंजिल की शर्त नहीं रखती, उसे तो बस इतना सा सुकून चाहिए होता है कि जिस राह पर कोई अपना चल रहा हो, उस राह की धूल भी अगर उसके हिस्से में आ जाए तो वो अपनी तकदीर समझ ले। प्रेम जब समर्पण बन जाता है तब वो पाने की जिद छोड़ देता है और खोकर भी मुस्कुराना सीख लेता है। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, कि कभी कभी पूरी जिंदगी बस एक छोटी सी इजाज़त की प्रतीक्षा में गुजर जाती है। इजाज़त साथ चलने की, इजाजत किसी की थकान बांट लेने की, इजाजत उसके सफर की दुआ बन जाने की। शायद यही वो मुकाम है जहां इश्क इबादत की चौखट को छू लेता है। तुम्हारी राहों में फूल न बिछा सकूं तो कम से कम अपना आंचल ही बिछाने दो। तुम्हारी मंजिल मेरी न सही, अगर तुम्हारे सफर की कुछ दूरियां भी मेरे नाम लिख दो। साथी कहो या न कहो, मुझे तुम्हारे साथ चलने का सौभाग्य तो दे दो।

कहते हैं दोस्तों कि दूरियां सिर्फ फासलों से नहीं बनती, कभी कभी खामोशियां भी मीलों लंबी हो जाती हैं। कोई चला तो जाता है, मगर उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, उसकी यादें दिल के आंगन से कभी रुखसत नहीं होती। वक्त आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इंतजार की घड़ियां अक्सर वहीं ठहर जाती हैं जहां आखिरी बार किसी अपने ने मुड़कर देखा था। मोहब्बत का सबसे लंबा सफर शायद इंतजार ही होता है। हर दस्तक पर दिल चौंक उठता है, हर आहट में उसी की परछाई दिखाई देती है, हर हवा का झोंका जैसे उसी का पैगाम लेकर आता है। और जब कोई लौट कर नहीं आता, तब दुआएं ही उसका पता पूछने लगती हैं। कभी कभी रात की खामोशी में दिल बस इतना ही कह पाता है कि अगर लौटना मुमकिन ना हो, या फिर मुमकिन हो तो लौट आओ, क्योंकि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, इंतजार से सांस लेते हैं। कुछ नाम होठों पर नहीं आते, फिर भी हर धड़कन उन्हें पुकारती रहती है। आइए इसी तड़प, इसे इंतजार और इसी अनकही पुकार को अपने सुरों में पिरोता ये बेहद भावपूर्ण फिल्मी गीत सुनते हैं।

कहते हैं दोस्तों कि बिछड़न सिर्फ दो लोगों के बीच की दूरी नहीं होती, कभी कभी वो पूरी दुनिया के उजड़ जाने का नाम भी होता है। किसी अपने के जाने के बाद घर तो वही रहता है, रास्ते भी वही रहते हैं, मौसम भी लौट लौट कर आते हैं, लेकिन जो नहीं लौटता वो है दिल का सुकून। मोहब्बत जब अपनी इंतहा पर पहुंचती है तो वो आवाज़ नहीं देती, बस खामोश होकर रूह में उतर जाती है। और जब वही रूह किसी अपने की जुदाई से खाली हो जाए तो इंसान चलता फिरता तो ज़रूर है, मगर भीतर से जैसे वक्त की किसी वीरान मस्जिद में गूंजती हुई अकेली अजान रह जाती है। कभी किसी की याद शाम के धुंधलके की तरह उतरती है तो कभी रात की तन्हाई में चांदनी बनकर आँखों से बह जाती है। तब महसूस होता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में मेहमान बनकर नहीं आते, वे हमारी धड़कनों का हिस्सा बन जाते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो धड़कनें तो रहती हैं मगर उनमें ज़िंदगी की रौनक नहीं रहती। वो क्या गया कि सांसों की रवानी भी साथ ले गया, दिल की हर धड़कन से एक कहानी भी साथ ले गया। अब तो बस खामोशियों का बसेरा है मेरी रूह में, वो मेरा जानी था मेरी जिंदगानी भी साथ ले गया। चेहरा मुस्कुराता है मगर आंखें ये राज कहती हैं कि ये जिस्म तो रह गया मगर जान कहीं और रहती है।

दोस्तों, जुदाई का दर्द अजीब होता है। इसमें मिलने की उम्मीद भी होती है और बिछड़ जाने का यकीन भी। कुछ रिश्ते वक्त की धूल में खो तो जाते हैं, लेकिन दिल की धड़कनों से कभी दूर नहीं होते। तब आंखें किसी की राह नहीं, उसकी एक झलक का इंतजार करती हैं, क्योंकि कभी कभी दूर से देख लेना भी पूरी उम्र का सहारा बन जाता है। शायद इसी खामोश तड़प को एक प्रेमिका अपनी भीगी हुई आवाज में कहती है कि पास आने की जिद नहीं है, बस इतना रहम कर दो कि मेरी नजरें तुम्हें दूर से ही सही देखती रहें। और इसी के सहारे ये दिल अपनी बुझती हुई प्यास को जीता तो रहे। तेरे करीब आने की दुआ अब नहीं करते, बस दूर से तुझे देख लेने की आरजू रखते हैं। मोहब्बत अगर मुकम्मल न भी हो, तेरी यादों के सहारे ही अब उम्र गुजरते हैं।

दोस्तों, कभी कभी प्रेम की सबसे गहरी कहानी होठों पर नहीं आती, वो पलकों की नमी बनकर ठहर जाती है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती, वो मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे चुपचाप सांस लेती रहती है। हर रात की तन्हाई में दुआ बनकर आसमान से बातें करती है। जब दर्द अपने इंतहा पर पहुंच जाता है ना दोस्तों, तब आंसू भी खामोश हो जाते हैं, फिर आंखें रोती नहीं, बस किसी एक चेहरे की याद में नम रहती हैं। और शायद यही खामोशी सबसे सच्ची मोहब्बत की जुबान होती है। रूह ने जब तेरी याद का सजदा किया, रूह ने जब तेरी याद का सजदा किया, दर्द भी इबादत की तरह मुकद्दस हो गया। लब खामोश रहे, आंखें सब कहती रहीं, इश्क का हर आंसू दुआ बनकर खुदा तक पहुंच गया।

दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। गीतों की ये महकती पंखुड़ियाँ अब धीरे धीरे यादों की किताब में सिमट रही हैं, लेकिन सुरों की खुशबू कभी बिखरती नहीं, वो तो दिलों में बस जाती है। और फिर किसी तन्हा पल में, किसकी मुस्कुराती सुबह में, या फिर खामोश रात में फिर से गुनगुनाने लगती है। उम्मीद है आज के इन सदाबहार नगमों ने आपकी यादों को छुआ होगा, आपकी मुस्कान को आवाज दी होगी और शायद आपके दिल के किसी अनकहे एहसास को भी सुरों का सहारा मिला होगा। महफिलें यूं ही नहीं, दिलों की रोशनी से सजती है। हर धुन किसी की दुआ बनकर हवाओं में बिखरती है। फिर मिलेंगे किसी नए गीत, किसी नई यादों के साथ। तब तक मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट ही जिंदगी की सबसे हसीन बंदगी है। इसी दुआ के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। दिल में मोहब्बत, लबों पर मुस्कान और जीवन में संगीत की मधुरता बनाए रखिए।

अभी आप सुन रहे थे कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोग, प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

0: नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, आज की इस नारी लोक को आरंभ करने से पहले बता दें कि आज क्या खास है। बहनों, आज हम सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम बहनों की पसंद, जिसमें बहनें सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद उठाएंगी। आइए बहनों, अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से। बहनों, मौसम गर्मी का है, जितनी बारिश इस समय होनी चाहिए वैसी हुई नहीं है। उमस है कि हमारा जीना मुहाल किए हुए है, हर व्यक्ति इस गर्मी से बेचैन है। बहनों, ऐसी गर्मी में ज़रूरत है कि हम अपने जीने का तरीका बदलें, भोजन पर ध्यान दें, क्योंकि मौसम के अनुसार ही भोजन हमें करना चाहिए। यदि हम मौसम के विपरीत भोजन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है और हमारे बीमार होने का खतरा बना रहता है। बहनों, अभी गर्मी का समय है, उमस ज़्यादा होती है, ऐसे में डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है, तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें तरल पदार्थ और पानी की होती है, ताकि हमारे शरीर में तरलता बनी रहे। और जहाँ तक भोजन का सवाल है बहनों, तो ज़्यादा मसालेदार तले भुने भोजन से बचें। हरी सब्जी और फल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सादी रोटी और चावल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। चाय कॉफ़ी संतुलित मात्रा में लें। एकदम गर्म भोजन का प्रयोग ना करें। ताजे फल जो इस मौसम में मिलते हैं, इसे अधिक से अधिक खाएं। फास्ट फूड से बचें। कोल्ड ड्रिंक की जगह शरबत से काम चलाएं। यदि बहनों हम इन बातों का ध्यान रखकर इस मौसम में खुद को बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं। बहनों, हमारी आपकी बातें आगे भी होंगी, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अंतराल के बाद बहनों, हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आइए अब आरंभ करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बहनों की पसंद। कार्यक्रम का पहला गीत हमने बेटा फिल्म से लिया है। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की। इस गीत को पसंद करने वाली बहनें हैं लोदीपुर भागलपुर से रूपा रानी, रीना रानी, रूबी रानी, लालूचक भट्टा रोड से स्मृति, शांति, ज्योति, रूपा, रुन्नी, जया, प्रिया, भिखनपुर 12 नंबर गुमटी से रंजना, संजना, केतकी, रागिनी। आइए बहनों, इस गीत को सुनते हैं।

बहनों, अगले गीत के लिए फिल्म का नाम है क्रिमिनल। स्वर है अलका याग्निक का। इस गीत को सुनना चाहा है उर्दू बाजार भागलपुर से बेबी कुमारी, रजनी कुमारी, सुनीता कुमारी, नाथनगर भागलपुर से बबली, गुड्डी, प्रिया, मिन्नी, रूपा, पर्वती भागलपुर से जूही, प्रिया, अनीता, मोनी और सोनी।

इस गीत के लिए फिल्म का नाम है दिल, स्वर है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का। इस गीत को पसंद करने वाली बहनें हैं मिर्जानहाट भागलपुर से, शीला, विमला, कल्पना, सुनीता, मिनी और गीता।

तिलका मांझी हवाई अड्डा से नीलू सीलू चंपा वैभवी रागिनी सौम्या लालूचे कंगारी से सोनी देवी रोली कुमारी रूपा देवी सबौर रानी तालाब से जया गीता मीतू सीनू चंदा और उसके घर के सभी सदस्य।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने जान तेरे नाम फिल्म से लिया है। स्वर है आशा भोसले और कुमार सानू का। इस गीत को पसंद करने वाली बहनें हैं साहबगंज भागलपुर से लता देवी, मीना देवी, सीना देवी, शिवपुरी कॉलोनी से रूपा, मीटा, सीना, रागिनी, कामिनी, भिगनपुर गुमटी नंबर 2 से कलावती, रूपाली, मिताली, सोनाली और रूबी। आइए बहनों, इस गीत को सुनते हैं।

आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
3: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
3: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
3: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
3: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
2: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
3: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
2: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
3: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्यकालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा

बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे भागो
1: अरे जाओगे अरे भागो रे अरे सिपाही आ गए अरे
0: मार जाओगे अरे भागो
1: अरे भागो छुपा छुपा अरे यहां यहां नहीं मिलेगा
2: अरे मैंने कुछ नहीं किया
3: अब आया कब
4: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर,
4: बढ़े चलो, बढ़े

0: सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।
1: अरे

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
4: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
5: सिकंदर आ गए, सिकंदर आ गए।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें भुजाएं चाहिए।
0: मैसिडोनिया चलो,
4: वापस चलो
0: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों,
3: अरे कुछ तो सबर करो साथियों। जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो दुष्टों को, भाग मेरे भाई, पकड़ो पकड़ो इन्हें।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
5: धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो आचार्य,
7: धन्य हो
6: आचार्य,
7: धन्य हो।
8: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्त बात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छिनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए गोपाल भगत के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनके आवाज में सुनते हैं लोक भजन।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार हैं गोपाल भगत। इनकी आवाज़ में आप सुनते हैं देवी गीत।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, लोक रंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झीरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकड़ी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5-स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झिरी स्थित बायोगैस प्लांट और लिगेसी वेस्ट बायो माइनिंग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक मेडिकल रूम का उद्घाटन किया। आपात स्थिति के लिए एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर से लैस जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी तैनाती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिसंबर तक टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा।
1: ये मस्ट है, किसी भी यात्री को कहीं हेल्थ इश्यू आता है तो उसको तुरंत ही हम रिलीफ दें। मणिपाल उसके 49 हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश भर के। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो रांची एयरपोर्ट है, बहुत सुविधा

0: को दिखावा करार दिया है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 7 वर्षों में राज्य में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाकर पीठ थपथपाने से झारखंड में कोई वास्तविक निवेश नहीं आने वाला है।
1: इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें महारत हासिल है झारखंड के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता से कई सारे उद्योग लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन पिछले 7 वर्ष की सरकार में एक भी बड़ा उद्योग जो है पूरे प्रदेश में लगाने में वो विफल रहे।
0: एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की झारखंड स्थित पकरी बरवाडीह कोयला खदान को देश में पहला स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला नियंत्रक कार्यालय ने पकरी बरवाडीह ओडिशा की दुलंगा और छत्तीसगढ़ की तलाई पल्ली खदानों को 5-स्टार रेटिंग दी है। कंपनी ने इसे सुरक्षित खनन और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। धनबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिन्हित 3000 बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सिविल सर्जन के निर्देश पर आज और 13 जुलाई को जिले के सभी प्रखंडों में प्रथम चरण का उपचार किया जा रहा है। गंभीर बीमारी वाले बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस आज आर्यभट्ट सभागार में शुरू हुआ। 3 दिवसीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर झारखंड स्टेट एजुकेशन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नरेंद्र भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कुलपति ने बताया कि कल सोहराय कला पर विमर्श और पेंटिंग प्रतियोगिता होगी। समापन वाले दिन पौधारोपण और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
2: कल विद्यार्थी जो शिक्षा के नीति के अनुरूप उनका कला और संस्कृति दीर्घा और फाइन आर्ट्स का प्रदर्शन होगा, और परसों जो हमारा अंतिम दिन होगा जो कि वास्तव में 12 तारीख स्थापना दिवस है, उस दिन हम विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे।
0: पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चक्रधरपुर में ब्राउन शुगर तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग छापेमारी में 75 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की। SDPO डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि पुलिस इस बड़े सिंडिकेट की जांच कर रही है।
3: पुलिस के पूछताछ के क्रम में ये पाया गया है कि ये सभी लोग एक ड्रग पेडलिंग सिंडिकेट का हिस्सा, बाहर से ब्राउन शुगर लेकर आते थे चक्रधरपुर में, छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचा करते थे। तो एक बड़े नेटवर्क को इसी तरह 2 बैक-टू-बैक छापामारी करते हुए ध्वस्त किया गया। इसमें और भी हमारे पास इनपुट है और लीड है जिस पर अभी अनुसंधान जारी है।
0: सरायकेला खरसावां में आगामी रथ यात्रा महोत्सव को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने नगर क्षेत्र का पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान रथ यात्रा समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.9% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 666 अंक चढ़कर 77,407 पर और निफ्टी 198 अंक बढ़कर 24,161 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,000

0: ₹400 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत ₹2,32,000 प्रति किलो है। राज्य में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। 12 और 13 जुलाई को रांची, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में गोड्डा में सबसे अधिक 44.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बोकारो में 18 से 27 अगस्त तक NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन होगा। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी संघ के जिला अध्यक्ष लंबोदर महतो ने बताया कि इसमें देश के बेहतरीन तीरंदाज, ओलंपियन और राष्ट्रीय कोच शिरकत करेंगे।
1: निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। सभी ग्रुप का मिलाकर लगभग 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रांची के झीरी बायोगैस प्लांट का किया निरीक्षण, समय पर काम पूरा करने के निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची एयरपोर्ट पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस और नए मेडिकल रूम का किया उद्घाटन, कहा दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा टर्मिनल के चेकिंग क्षेत्र का विस्तार। रांची के इटकी में 50 एकड़ भूमि पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार, आयुष मंत्रालय की टीम ने किया जमीन का निरीक्षण। झारखंड की पकरी बरवाड़ी कोयला खदान लगातार दूसरे साल देश में पहले स्थान पर, कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दी 5-स्टार रेटिंग। और बोकारो को मिली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी, 18 से 27 अगस्त तक जुटेंगे देश के 700 दिग्गज तीरंदाज और ओलंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को पुनः जारी रखते हुए गोपाल भगत की आवाज में आइए सुनते हैं झूमर।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं गोपाल भगत। इनकी आवाज में आप सुनते हैं गोदना गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे गोपाल भगत। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे, क्षमा करेंगे श्रोताओं, बांसुरी पर थे ब्रजेश कुमार छाया, नाल पर घनश्याम सिंह, बासुकी प्रसाद मिश्र, हारमोनियम पर ढोलक पर थे कौशल किशोर सिन्हा और पर्कसन पर थे बलबीर कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन की सभी प्यारी बहनों को कमली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, रिमझिम बरसात का सुहावना मौसम है, हमारी धरती भी हरी भरी हो गई है। तालाब, नदियाँ, कुएँ जो सूख रहे थे उनमें भी अब नया जीवन आ गया है। यानी कुल मिलाकर बहनों, यह बरखा ऋतु हम सभी गृहस्थों के लिए खुशियों की बौछार लेकर आई है। खुशियाँ जीवन में रंग भर देती है, लेकिन देखा जाए बहनों, तो खुशी तो हमारे भीतर ही होती है, बस उसे देखने और महसूस करने की ज़रूरत होती है। सकारात्मकता जीवन जीने का नज़रिया ही बदल देती है। कई बार बहनों, हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते सोचते हमें हमारी छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि हमसे ज़्यादा परेशान, हमसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं, और फिर हम दुखी रहने लगते हैं। हम अपने आसपास ऐसी आभासी दुखी दुनिया बना लेते हैं जिसमें हमारे लिए बस कष्ट ही कष्ट है, परेशानी ही परेशानी है, और इस तरह हमारे जीवन का अधिकांश समय खुद को और परिस्थितियों को कोसने में ही चला जाता है। बहनों, यह एक मनोविकृति है, हमें इससे ज़रूर बचना चाहिए। साथ ही हमें बेवजह का तनाव लेने से भी बचना चाहिए, नहीं तो हमारे अच्छे खासे सुखद जीवन में घुन लगते देर नहीं लगती। बहनों, जीवन एक चक्र है, समय चक्र। हमारी कुछ समस्याएं तो समय के साथ स्वतः ही खत्म हो जाती है, जैसे कि बहनों, अभी बारिश के आ जाने से सूखे की समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और बहनों, हमारी कुछ समस्याओं के समाधान के लिए हमें धैर्य के साथ योजना बनानी होती है और उस योजना को प्रतिबद्धता के साथ पूरा भी करना होता है। इनमें से ही एक है अच्छी शिक्षा की योजना। हाँ बहनों, सुखी और खुशहाल जीवन के लिए

जरूरी है कि हम शिक्षा को सही तरीके से अपनाएं, बस साक्षर होने भर के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपने समझ बढ़ाने के लिए, अपने तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए, अंधविश्वास से पार पाने के लिए। शिक्षा हमारे जीवन में ज्योति बनकर आती है और हमारे जीवन को अलौकिक कर देती है। और जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें अपनी बाकी समस्याओं के समाधान भी दिखने लगते हैं, हमारी सोच विकसित होती है, हमारा नज़रिया बदलता है, हमारा आत्मविश्वास जगता है और यही आत्मविश्वास हमारा मनोबल बनता है। हम कुछ नया करने और उसे पूरा करने का प्रयास भी करना होगा। और बहनों, जो भी ऐसा करते हैं, सोचते हैं और उसे पूरे मन से करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे वो सफल भी होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बहनों, जीवन एक चुनौती की तरह है, इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना ही जीवन की जीत है, है ना बहनों? बहनों, बातें अभी बहुत सारी है, रुकते हैं, एक अच्छा सा सोहर सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहनों, अभी हम बातें कर रहे थे शिक्षा की। शिक्षा हमारे जीवन का प्रकाश है और इसके बिना हमारा जीवन अलौकिक नहीं हो सकता। और बात जब बालिका शिक्षा की हो तो यह और भी जरूरी हो जाती है। तो बहनों, इसी विषय पर आइए विस्तार से जानते हैं एक वार्ता के जरिए।
1: बालकों को शिक्षा देना या उसे शिक्षित करने में पर्याप्त सहयोग करने का महत्वपूर्ण अर्थ है। नई पीढ़ी में नई सामाजिक चेतना जागृत करके उसे भविष्य की जिम्मेवारियों को वहन करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करना, इसके साथ ही साथ उसे सुसंस्कृत और आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक सहयोग करना। समाज का रथ पुरुष और स्त्री इन दोनों पहियों पर गतिमान रहता है। यदि एक पहिया दुर्बल हुआ तो रथ का चलना ही रुक जाएगा। ये पहिए ठीक से चले, इसके लिए शिक्षा बालिकाओं और बालकों दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा की ज्योति से

चित पर छाए हुए कुसंस्कारों का कुहासा छटता है, उससे जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की शक्ति मिलती है। संस्कार और सुरुचि का अंकुर पनपता है, परंतु जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा या उसे शिक्षित करने का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में हम आज भी बालिकाओं और बालकों में भेदभाव करते हैं। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को शिक्षित करने या उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाने, आत्मनिर्भर बनाने में माता पिता अधिक रुचि लेते हैं। लड़की को पराया धन मानते हुए भविष्य में उन्हें दहेज देना पड़ेगा, इससे अभी से ही भयभीत होकर लड़की को पराया उपेक्षित करते रहते हैं, जो माँ बाप के लिए जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध है और समाज तथा देश के सुनहरे भविष्य पर कुठाराघात है। जब तक समाज बालकों और बालिकाओं को समान रूप से समझते हुए उसे शिक्षित करने में अर्थात उसे आत्मनिर्भर बनाने में दोनों को समानता से अवसर नहीं देते, तब तक हम अपने परिवार, समाज और देश के सुनहरे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज में नारी की महत्ता पर महात्मा गांधी ने कहा है कि नारी त्याग की मूर्ति है। जब वह कोई काम शुद्ध और सही भावना से करती है, तब पहाड़ों को भी हिला देती है। मैंने स्त्री को त्याग और बलिदान की भावना का अवतार मानकर उसकी पूजा की है। किसी ने ठीक ही कहा है कि पढ़ी लिखी माँ घर की रहनुमा, अर्थात अगर हम अपने अपने घर में बालिकाओं को लिखाते पढ़ाते या उसे शिक्षित करते हैं, तो भविष्य की किसी घर की माँ को शिक्षित करते हैं, जो अपनी संतानों को अपनी शिक्षा के बल पर उसमें सेवा सत्कार, पारिवारिक एकता को मजबूत करने की क्षमता तथा संस्कारों की मजबूत नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बड़ी कुशलता से निभा पाती है। एक शिक्षित बालिका भविष्य के गृह आश्रम में धर्म के पालन में नारी के रूप में पूर्ण सहयोग करके परिवार को आनंद और सुख शांति बड़ी कुशलता से दे पाती है। माँ का घर और ससुराल की उसकी जिंदगी त्याग और सेवा की यात्रा है। इस कार्य के लिए वह बचपन से ही अपने को तैयार कर लेती है। परिवार की आधारशिला स्त्री के त्याग पर ही टिकी होती है। इन्हीं सभी कारणों से बालिकाओं की शिक्षा परिवार, समाज और देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही एक शिक्षित बालिका अर्थात वह बालिका भविष्य की एक शिक्षित नारी अपनी शिक्षा के बल पर आत्मनिर्भर होकर बहुत हद तक दहेज की प्रताड़ना से स्वयं को और अपने माँ बाप को बचा सकती है। बावजूद इसके आधुनिक भारत में बालिका वर्ग में अनेकों ने शिक्षित होकर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पल्लवित पुष्पित नारी के रूप में कामयाबी की शिखर पर पहुंची है, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, जिनमें प्रमुख हैं टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, तीरंदाज दीपिका कुमारी, हरियाणा पुलिस की अनीता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की, राही सनोवल ने कोरिया में पिस्टल प्रतियोगिता में 25 मीटर के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनी। प्रसिद्ध IPS किरण वेदी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। राजनीति क्षेत्र में पूर्व

0: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदि शिक्षित बालिका वर्ग ने पल्लवित पुष्पित नारी के रूप में परिवार, समाज और देश का मान चोटी पर पहुंचाया है। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, देश की सुरक्षा के लिए जल थल वायु सैनिकों अधिकारियों का क्षेत्र हो या देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों का क्षेत्र हो, आदि देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षित बालिका वर्ग ने नारी के रूप में पल्लवित पुष्पित होकर परिवार, समाज और देश का मान बढ़ाया है और बढ़ा रही है। आवश्यकता है इसे और भी गति प्रदान करने की, क्योंकि आज भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्री की शिक्षा, उसकी आत्मनिर्भरता की प्रतिशत बहुत कम है, जबकि भारत में महिला की आबादी पुरुष की आबादी से आधी है। यद्यपि बिहार सरकार बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हुए कई योजनाओं को चला रही है, जैसे बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, बालकों और बालिकाओं के लिए मिड डे मील भोजन योजना तथा बालिकाओं को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा पास होने पर 25,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने की योजना आदि। भारत सरकार ने अभी हाल में 10 जुलाई 2014 को 2014-15 के आम बजट में बालिका वर्ग की सुरक्षा और सफलता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए पर्याप्त बजट लाया है, जो अत्यंत खुशी की बात है। आवश्यकता है कि सरकार को इसे सही रूप से चलवाने की, जिसमें विशेषकर बालिका वर्ग के माता पिता और हम नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि इसमें उचित सहयोग करेंगे। इस तरह बालिकाओं को बालकों से समानता के आधार पर शिक्षा देने की आवश्यकता है, जिससे परिवार, समाज, देश और भी अधिक खुशहाल हो सकेगा।
1: बहुत ही अच्छी बातें इस वार्ता के जरिए हमने सुनी बहनों। पढ़ेगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेगी बेटियां। ये पूर्व प्रसारित वार्ता हम सुन रहे थे बहनों, और अब आगे बढ़ते हैं और एक मधुर सा लोक भजन सुनते हैं।

जी बहनों, बहुत ही मधुर सा ये लोक भजन हमने सुना बहनों, और इसी के साथ बहनों हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा दें, बरसात का मजा लें, सबों को कमली का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,423 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। 6 योजनाओं के प्रत्येक लाभुकों को 1,100 रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर पेंशन राशि भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके जीवन यापन में मदद मिल सके। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक चल रही है। बैठक में एनडीए के सभी 5 घटक दलों के वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। बैठक में सरकार के कार्यों की समीक्षा, घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। साथ ही बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, विकास कार्यों की नियमित निगरानी और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को कयाची में विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय, लोकसभा के प्राइड और पिपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में 3000 से अधिक ऐसे नियोजित शिक्षक पाए गए हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया निगरानी विभाग ने पूरी कर ली है और इसमें 3035 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। इन सभी शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ था। उन्होंने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के मामले में अब तक 1830 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मुंगेर जिले के भीमबांध के जंगल में पुलिस ने 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 510 लीटर शराब और लगभग 8 क्विंटल चावा महुआ भी बरामद किया गया। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोभी चेक पोस्ट के पास पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक से 807 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे को ओडिशा से लाया जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: रियासत में 3,000 से जायद ऐसे नियोजित असातजा पाए गए हैं जिन्होंने फर्जी असनाद की बुनियाद पर नौकरी हासिल की थी। वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि असातजा के सर्टिफिकेट की जांच का अमल महकमा निगरानी ने मुकम्मल कर लिया है और इसमें 3,035 असातजा कसूरवार पाए गए हैं। इन सभी असातजा का नियोजन साल 2006 से लेकर 2015 के दरमियान हुआ था। उन्होंने बताया कि फर्जी असनाद पर नौकरी करने के मामले में अब तक 1,830 इत्तलाए अव्वल दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कसूरवार असातजा की सर्विस खत्म करने का अमल भी शुरू किया जा रहा है। वस्त मशरकी रेलवे ने मुसाफिरों की इजाफी भीड़ के पेश नज़र चलाई जा रही 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की आमदोरफ्त के अवकात में तौसी की है। चीफ राबता आमा अफसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि इनमें पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन स्पेशल और दानापुर आनंद विहार स्पेशल समेत दीगर ट्रेनें शामिल हैं। मुंगेर जिला के भीम बांध के जंगल में पुलिस ने 4 शराब भट्टियों को मुनहदिम करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 510 लीटर शराब और तकरीबन 8 क्विंटल जावा महुआ भी बरामद किया गया। गया जिला के बाराचट्टी थाना इलाके के तहत डोभी चेक पोस्ट के करीब पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक से 807 किलो गांजा के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे को उड़ीसा से लाया जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम है इस अंतराल के बाद।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
5: क्रेश,
6: ट्रेश
4: और बाल्टी बॉय।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
8: सुनो ना।
2: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
8: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
4: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
6: तिलका मांझी तो बहुत।
4: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
9: बख्शी जगबंधु तो
6: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर

0: दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें

0: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति

0: की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patelji believed for a richly diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
4: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
5: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे

0: शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म घायल का गीत लता मंगेशकर और पंकज उधास की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन बनाई है बाप्पी लाहिड़ी ने।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म नाम का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अभी आपने सुना फिल्म हेना का गीत लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए। बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म मोहब्बत का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आपने सुना फिल्म नागिन का गीत। गीत के बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ लता मंगेशकर की थी। इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। अपने सायंकालीन प्रसारण के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी अनुमति दीजिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

0: बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारते मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फ़ोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फ़ोन लगाया, तो आपको
1: हाँ,
0: कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को। हमारे
0: जी, और क्या करती हैं आप?
1: लॉन्ड्री है,
0: जी
1: बंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है।
0: जी
1: और यहाँ पे कोयली गांव में हमारा मकान है।
0: जी जी जी
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी 1.25 महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और
1: हाँ,
0: ये बताइए सोनिया जी, कि बारिश आपको कैसी लगती है? बारिश में आप क्या क्या और चीज़ें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। ये
0: जी, किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दी जुकाम का ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चा आ गया छोटा,
0: जी
1: उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा।
0: जी और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए। मेरे
0: आप,
1: बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं समा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सुहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी
0: जी क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ,
0: जी
1: उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा,
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की,
0: जी
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा,
1: हम लोग इसमें करते हैं जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं,
0: जी
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं।
0: जी तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं। क्या है?
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है, तो
0: जी
1: उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको
1: बहुत
0: गिफ्ट मिलता है। और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की।
0: जी और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती
1: उनको
0: हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई, उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले,
0: जी जी जी
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं
0: जी तो फिर
1: जैसे नहीं आता है।
0: हाँ जी
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी,
0: जी
1: उसका माँ बाप नहीं थे, तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: अब मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है, आँखियों के झरों पे से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का,
0: जी
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन हैं।
0: क्या
1: अभी
0: बात है।
1: जी
0: आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
0: जी,
1: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
1: जी घूमने कहीं चले जाएं, और क्या।
0: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए है?
1: जी जी
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें याद है तो साझा कीजिए।
1: जी जी मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ,
0: जी
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी
1: पानी में, बारिश में वहाँ पर।
0: जी
1: जी तो अच्छा लगता था, पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
0: अब ये
1: जी जी
0: बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, नीता जी आपको
1: जी
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का
1: जी
0: विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता
1: हाँ,
0: जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल
1: मेरे को
0: करती थी?
1: तो बारिश में भिगना और पानी में छप छप पड़ना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती हैं, ये इस बारे में कुछ बताइए
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है।
0: जी।
1: मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ,
0: जी,
1: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की
1: और
0: बात है
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई। मैं
0: जी। तो
1: सबको हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ उनकी।
0: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं दिल अपना और पीत परी का गाना है। दिल अपना पीत बनाई।
0: जी, बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी।
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। बारिश में घर गंदा ना हो, ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी?
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे। मेरा गांव सुल्तानपुर है।
0: जी
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे, खो
0: अच्छा,
1: खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना गृहिणी
1: बन
0: की।
1: ही जाता है।
0: जी,
1: हाँ
0: जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया,
1: हाँ
0: है ना?
1: कुछ भी बना। हाँ,
0: और मान लीजिए सूजी कम है तब?
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
0: बिल्कुल सही बात आपने बताई। ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
0: जी
1: बहू पोते
0: जी
1: पोती
0: क्या बात है, भरा
1: बच्चे।
0: पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
1: हाँ
0: अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली
0: जी, स्वागत
1: नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है
0: जी।
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से,
0: हाँ।
1: हरी भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम
0: जी। और
1: और उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद हैं आपको?
1: बारिश में देखिए पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती थी।
0: हाँ।
1: और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे।
0: सही बात है। और वो अगर
1: घर में पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया, है ना? तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी, ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ, तो बस से रात तक।
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार,
0: जी जी
1: उसमें
0: जी
1: जो चिंतन

0: आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: रामचरितमानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं ना, बताते हैं स्टोरी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: क्या बात
0: क्योंकि
1: है।
0: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता है।
1: सही बात है, उसकी विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
0: बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
1: तो
0: और बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के,
1: जी,
0: और मैं सब सुनती रहती हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: एक्चुअली ये पसंद मेरी मम्मी की है।
1: जी
0: स्वप्न झरे फूल से, नीत चुभे शूल से, वो
1: जी
0: है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
1: ठीक ठीक ठीक तो प्रतिमा जी, आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से।
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे,
0: जी
1: अभी जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने
1: हाँ
0: की
1: जी,
0: कोशिश करी
1: हाँ
0: और
1: जी।
0: कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है, चारों
0: जी
1: तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है इस
0: क्या बात है,
1: टाइम।
0: यानी कि बारिश वहां पर भी खूब हो रही है।
1: बहुत हो रही है हम
0: तो
1: जी।
0: बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप
1: हाँ
0: साझा
1: जी,
0: कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है, तो
0: जी
1: मैं वहाँ पे, हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़ियाँ एक पास में जगह थी,
0: जी
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल पूरा,
0: जी
1: वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था।

0: पूरी हरियाली और पहाड़ियां।
1: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।
0: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती हैं।
1: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
0: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है, बहुत ध्यान रखने का।
1: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
0: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शो बरकरार है मेरी, मतलब बचपन की फ्रेंड, अभी तक हम लोग सब ग्रुप है तो
1: जी,
0: हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं पर मिलते हैं, या
1: क्या
0: कभी
1: बात
0: कभी
1: है,
0: कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है
1: बहुत अच्छा
0: ऐसा।
1: लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
0: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है तो
1: जी
0: म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ,
1: जी
0: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था पहला
1: जी
0: स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं, तो
1: जी जी जी
0: बहुत खेला है, मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक स्कूल
1: जी
0: पूरा कॉलेज पूरा वो खेला।
1: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल, खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती है तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
0: और
1: में।
0: भी अच्छा लगता जी।
1: तो अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी।
1: तो अंजू जी, आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ पुणे से। मैडम
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या
1: बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं बहुत
0: बात है।
1: ज्यादा।
0: तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं? क्या
1: सारे प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है, जैसे
0: बात है,
1: दीपमाला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली।
0: जी। तो ये
1: हाँ,
0: बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा
0: जी,
1: देखना, ये सब चीज, रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला
0: कर,
1: के
0: कला
1: फैन
0: के फैन हैं, क्या बात है
1: है
0: जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ
0: उसकी कोई सीमा
1: वही।
0: नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना
1: हाँ, ये
0: जी।
1: बात है।
0: तो ये बताइए,
1: हाँ,
0: बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत। हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से, बिना
0: अच्छा
1: सीखे ही बहुत बनाते थे, और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद,
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है तो
0: जी जी जी
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक हैं आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना,
0: जी,
1: बस यही सब मेरा शौक है। सब
0: क्या चीज़ खिलाना पसंद करती हैं? आपको क्या पसंद है,
1: चीज
0: क्या
1: सब।
0: बनाएं?
1: नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं, और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे।
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का,
0: जी
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिलिक मंदिर का ये
1: हाँ
0: प्यारा
1: ठीक है,
0: संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हम खो बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है, और सखी सहेली
0: जी,
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ।
0: क्या बात है।
1: जी
0: अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है, और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें,
0: जी
1: घर पे रहें। हाँ,
0: जी और बारिश में क्या-क्या चीजें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बारिश आते ही सबको पकोड़े याद आ जाते हैं ना।
1: हाँ
0: मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीजें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती हैं कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े,
0: जी
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी,
0: अच्छा,
1: इस
0: तो
1: तरह, और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन-कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास
0: जी
1: नंदे
0: जी
1: और मेरे पति, एक बेटा।
0: भरा पूरा परिवार है, बहुत अच्छा लगा सुन करके।
1: हाँ,
0: और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई।
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो
1: हाँ, ये
0: बहुत,
1: गीत
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002466 2, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867028 8, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867028 8, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फ़ोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

इसी तरह उदास यश रोज वहां बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गई। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ। दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था। मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली। क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी, आपसे क्या छिपा है? आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरु जी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ, संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ, वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन

में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया। कुछ लोग ताना मारते, लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

नीलश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम उपस्थित हैं लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी भागलपुर के युवा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शालिनी और अगले कुछ मिनटों तक आपके साथ लेकर आई हूं जानकारी, विचार, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आज का ये युववाणी अंक। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले होगी चर्चा, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की पुण्यतिथि पर उनके जीवन और योगदान को याद किया जाएगा। साथ ही भोजपुरी लोक संस्कृति के अमर हस्ताक्षर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उनके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अवदान पर भी चर्चा होगी। इसके बाद प्रस्तुत होगा डेली ट्रिविया, फिर सुनेंगे साप्ताहिक स्तंभ वार्ता, कार्यक्रम में आगे रहेगा साप्ताहिक स्तंभ आर्थिक परिक्रमा, फिर होगा हमारा दैनिक स्तंभ फन फैक्ट और समसामयिक खबरें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा करते हैं अब्दुल गफूर की पुण्यतिथि पर। आज हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। अब्दुल गफूर जी का जन्म 8 मार्च 1918 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और बाद में भारतीय राजनीति में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। अपनी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति समर्पण के कारण वे जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। अब्दुल गफूर वर्ष 1973 से 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। वे मानते थे कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सम्मान मिले। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक सुधारों तथा जनहितकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनका राजनीतिक जीवन संघर्ष, सेवा और नैतिक मूल्यों का उदाहरण रहा। वे हमेशा आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए तत्पर रहते थे। राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के बीच भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आज उनकी पुण्यतिथि हमें यह संदेश देती है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जन कल्याण की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिहार की राजनीति और समाज में उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। युवाओं के लिए उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की सीख देता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अब्दुल गफूर पुण्यतिथि पर चर्चा। आइए अब थोड़ा गीत संगीत की ओर चलते हैं। फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ये गाना सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: पुनः स्वागत है साथियों आपके अपने पसंदीदा शो युववाणी में। अब अगली चर्चा की ओर चलते हैं। विषय है भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि। आज भोजपुरी भाषा और लोक संस्कृति के महान पुरोधा भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर हम

0: उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। उन्हें भोजपुरी साहित्य और लोक नाटिका शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने अपने लेखन और मंचन के माध्यम से समाज की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। भिखारी ठाकुर केवल नाटककार ही नहीं बल्कि कवि, लोक गायक, अभिनेता और समाज सुधारक भी थे। उनके प्रसिद्ध नाटकों में विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर और विधवा विलाप विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में उन्होंने प्रवासी मजदूरों को पीड़ा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शोषण और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाया। उनकी भाषा सरल, सहज और लोक जीवन से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण आम लोगों ने उनके साहित्य को खूब अपनाया। उन्होंने भोजपुरी लोक कला को नई पहचान दिलाई और उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। आज भी उनके गीत और नाटक समाज में उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि हमें अपनी लोक भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन का सशक्त साधन भी हो सकती है। भोजपुरी साहित्य और लोक संस्कृति में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। प्यारे श्रोताओं, ये थी हमारी चर्चा। आज की चर्चाएं बारी है डेली ट्रिविया के प्रश्न की। आज की चर्चा में हमने दो महान विभूतियों को याद किया। क्या आप बता सकते हैं कि भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? आप इसका उत्तर सोचिए। हम इस प्रश्न का सही उत्तर शो के अगले पड़ाव में बताएंगे। फिलहाल चलते हैं साप्ताहिक स्तंभ वार्ता की ओर। विषय है भीष्म साहनी, वार्ताकार है सदानंद सिंह।
1: नमस्कार श्रोता भाइयों और बहनों, साहित्य जब समाज का दर्पण बनता है तो केवल घटनाओं को नहीं दिखाता बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपी मानवीय संवेदनाओं, आंसुओं और संघर्षों को भी हमारे सामने ला खड़ा करता है। हिंदी साहित्य में जब भी ऐसे रचनाकारों का जिक्र होगा जिन्होंने आम इंसान की पीड़ा को बेहद संजीदगी और सादगी से पन्नों पर उकेरा तो एक नाम सबसे पहले जहन में आएगा और वो है भीष्म साहनी। 8 अगस्त 1915 ईस्वी को अविभाजित भारत के रावलपिंडी में जन्मे, जो अब पाकिस्तान में है, साहनी जी का पूरा जीवन और उनका साहित्य मानवीय मूल्यों के प्रति अटूट आस्था का दस्तावेज है। उनके बड़े भाई बलराज साहनी, जो भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता थे, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए साहनी जी ने भी कला और प्रगतिशील विचारों को अपने जीवन का ध्येय बनाया। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, फिर पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जुलाई का यह महीना हिंदी साहित्य के लिए एक गहन आत्मस्मरण का समय है। किसी साहित्यकार को स्मरण करना केवल उनके जीवन वृत्त को दोहराना नहीं होता, उसकी रचनात्मक चेतना से संवाद करना होता है। इस प्रकार भीष्म साहनी को प्रेमचंद परंपरा के लेखक व मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित रचनाकार माना जाता है। तो आइए अब उनकी साहित्यिक योगदान पर थोड़ी चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन और विशेष रूप से 1947 ईस्वी का भारत विभाजन उनके जीवन की ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनके मन और लेखन दोनों को गहराई से प्रभावित किया। जब हम भीष्म साहनी की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले उनका कालजयी उपन्यास तमस आता है। 1947 के देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया यह उपन्यास हिंदी साहित्य की एक ऐसी धरोहर है जो हर दौर में प्रासंगिक है। उन्होंने विभाजन के उस भयानक दौर को खुद जिया था, उसकी आँच को महसूस किया था। तमस केवल दंगों की कहानी नहीं है, यह उस सांप्रदायिक राजनीति का पर्दाफाश करता है जो चंद स्वार्थों के लिए इंसानों को भेड़िया बना देती है। तमस के लिए उन्हें 1975 ईस्वी में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से

सम्मानित किया गया और बाद में इस पर गोविंद निलहानी ने एक बेहद प्रभावशाली दूरदर्शन धारावाहिक और फिल्म बनाई जिसने पूरे

आग्रह का विस्तार, वह मनुष्य की गरिमा में अटूट विश्वास का साहित्य है। उन्होंने अपने उपन्यासों में इतिहास को घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के नियति के रूप में देखा। यही कारण है कि उनकी रचनाएं पढ़ते समय हम केवल पात्रों से नहीं बल्कि अपने समय, अपने समाज और कहीं न कहीं स्वयं से भी साक्षात्कार करते हैं। हिंदी उपन्यास की परंपरा में यदि प्रेमचंद ने किसान, श्रमिक और वंचित समाज की पीड़ा को स्वर दिया तथा यशपाल ने इतिहास और राजनीतिक के द्वंद्व को कथात्मक विस्तार प्रदान किया, तो वहीं भीष्म साहनी ने इन दोनों परंपराओं को मानवीय करुणा की ऐसी उपमा प्रदान की जहां विचार से पहले मनुष्य है जो हमारे बीच रहता है, संघर्ष करता है, टूटता है, फिर भी अपने भीतर आशा की एक छोटी सी लौ बचाए रखता है। इसी प्रकार उन्होंने झरोखे, कड़िया, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो और नीलू नीलिमा नीलोफर जैसे अद्भुत उपन्यासों की रचना की जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, इतिहास और सामंती व्यवस्था के बदलते स्वरूप का सजीव चित्रण है। उपन्यासों के साथ साथ कहानी विधा पर भी साहनी जी की पकड़ बहुत अच्छी थी। उनकी एक कहानी का जिक्र यहाँ बेहद जरूरी है जिसका नाम है चीफ की दावत। यह कहानी आज के बदलते पारिवारिक मूल्यों और मध्यम वर्गीय खोखलेपन पर करारा प्रहार करती है। इसी तरह अमृतसर आ गया है कहानी विभाजन के समय ट्रेन के भीतर के मनोवैज्ञानिक खौफ और मानवीय व्यवहार के बदलते रंगों का बखूबी दिखाती है उनके कहानी का अंत इतना मर्मस्पर्शी है कि पाठक और श्रोता की आंखें नम हो जाती है और वह अपने भीतर झांकने पर मजबूर हो जाता है। इसी प्रकार पाली कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म से पहले मनुष्य होना कितना आवश्यक है। अब अगर उन्हें और गहराई से देखें तो भीष्म साहनी जी का योगदान केवल कथा साहित्य तक सीमित नहीं था, वे एक बेहतरीन नाटककार भी थे। रंगमंच से उनका गहरा जुड़ाव था। उनका नाटक हानुष एक ऐसे शिल्पकार की कहानी है जो अपनी बरसों की मेहनत से एक अद्भुत घड़ी बनाता है लेकिन राजा उसका हाथ कटवा देता है ताकि वैसी घड़ी दोबारा न बन सके। यह नाटक कलाकार की रचनात्मकता और सत्ता के क्रूर स्वभाव के द्वंद्व को दर्शाता है। वहीं कबीरा खड़ा बाजार में नाटक आज भी भारत के कोने कोने में खेला जाता है और कबीर के बहाने समाज को जोड़ने का संदेश देता है। इसके अलावा माधवी और मुआवजे जैसे नाटकों के माध्यम से उन्होंने समाज की कुरीतियों, धार्मिक ढोंग और सत्ता की लोलुपता पर तीखे व्यंग किए हैं। उनका नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। यदि साहनी जी के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता बतानी हो तो वह है मानवीय संवेदना। उन्होंने कभी किसी धर्म, जाति या वर्ग का पक्ष लेकर नहीं लिखा। उन्होंने हमेशा मनुष्य को केंद्र में रखा। उनका साहित्य हमें सिखाता है कि नफरत और हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। प्रेम, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता सरलता, सहजता और प्रभावशीलता है। वे कठिन शब्दों और अलंकारों के पीछे नहीं भागते थे। उनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है जो सीधे पाठक और श्रोता के हृदय तक पहुंचती है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं साहित्य के विद्यार्थी से लेकर सामान्य पाठकों तक सभी को समान रूप से प्रभावित करती है। उनकी आत्मकथा आज के अतीत नाम से सन 2003 में प्रकाशित हुई जिसमें साहित्यिक जीवन, संघर्ष, रचना प्रक्रिया,
तथा लेखन शैली का वर्णन मिलता है। उन्होंने इप्टा के सदस्य

0: हास्य के रूप में भी योगदान दिया था। नई कहानी के उस दौर में साहनी जी ने साहित्य प्रेमियों तक नई कहानी को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया तथा 1965 से 67 ईस्वी तक नई कहानी पत्रिका के संपादक भी रहे। उनकी वैचारिक दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वे प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े थे। उनका साहित्य मनुष्य की गरिमा, समानता, न्याय और सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करता है। आज जब दुनिया तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुकी है, तब भी समाज में धार्मिक विद्वेष, जातीय भेदभाव, हिंसा, असहिष्णुता और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं मौजूद हैं। ऐसे समय में उनकी साहित्य हमें याद दिलाता है कि यदि मानवता समाप्त हो गई तो विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। उनकी रचनाएं हमें यह संदेश देती है।
1: मित्रों, आपने सुनी साप्ताहिक स्तंभ वार्ता, विषय था भीष्म साहनी। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अब समय है थोड़े संगीत और मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं एक शानदार गीत और फिर लौटेंगे युवाणी के अगले पड़ाव के साथ।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म याराना का गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, और अब समय है आर्थिक परिक्रमा का, जिसमें जानेंगे अर्थव्यवस्था और वित्तीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जानते हैं पिछले सप्ताह से अब तक के प्रमुख आर्थिक समाचार। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की सक्रियता बनी रही। सरकार और रिजर्व बैंक मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों पर निवेशकों की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, ये थे प्रमुख आर्थिक समाचार। अब बढ़ते हैं आज के फन फैक्ट की ओर। क्या आप जानते हैं आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन देश की कई भाषाओं और बोलियों में प्रसारित किए जाते हैं, जिससे करोड़ों श्रोताओं तक जानकारी पहुँचती है। अब समय है डेली ट्रिविया के उत्तर का। हमारा प्रश्न था, भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर है भिखारी ठाकुर। और अब समय है कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव समसामयिक खबरों का। भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम और अस्त्र MK-1 मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता किया। ओम प्रकाश व्यास को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। PGI 2.0 रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच 14 एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए। आज के समसामयिक खबरों में इतना ही। आशा करती हूँ ये खबरें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। दोस्तों, बातों, विचारों, जानकारियों और गीत संगीत से सजी युवाणी यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है आज का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप यूं ही अपने सपनों को नई उड़ान देते रहें और अपनी सोच को नई दिशा देते रहें। प्यारे श्रोताओं, फिर होगी मुलाकात युवाणी के अगले अंक में कुछ नए विषयों, नई जानकारियों और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो साथी शालिनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ संध्या।

युववाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म जीत से लिया है। सोनू निगम एवं अलका याज्ञिक ने इसे गाया है। गीत के बोल समीर के हैं। संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने।

अब सुनिए फिल्म रन का एक गीत, कुमार सानू एवं अलका याज्ञिक की युगल आवाजें हैं। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने।

अब सुनते हैं मोनाली ठाकुर एवं मीत ब्रदर्स का गाया फिल्म बागी का ये गीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

कार्यक्रम के अंत में यह फिल्म जिस्म का गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने, गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत तैयार किया है MM करीम ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके समयों पर। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर शोभा रेवन की वार्ता, विषय होगा परिवार कल्याण, बेहतर जीवन की ओर पहला कदम। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार होंगे आनंद कुमार सिंह। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा।

रजनीगंधा। रात्रि 9:30 बजे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम होगा शतदल, प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद यूनुस हुसैन खां का गायन राग जोग में, और रात 10:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 का समय है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 6:35 पर कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर किशोर कुमार सिन्हा से की गई भेंटवार्ता। विषय होगा बच्चों में होने वाले बरसाती रोग। आपसे बातचीत करेंगे सचिन कुमार। 6:40 पर रामचरितमानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। प्रातः 7:00 से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें प्रातः 7:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायिका होंगी शर्मिला गुप्ता। 7:20 पर कार्यक्रम कानून की बातें अंतर्गत आप सुनेंगे अंजलि आनंद की वार्ता। विषय होगा नई श्रम संहिताएं। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे राजीव कुमार सिंह। 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में कल गायक कलाकार होंगे जयप्रकाश शर्मा। 11:00 कार्यक्रम होगा फोनी नाप की पसंद। प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 12:00 महिला श्रोता सुनती हैं अपना कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग मदमात सारंग में। दिन के 1:00 लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में गायक कलाकार होंगे गौतम कुमार मंडल। 1:30 संताली कार्यक्रम होगा जियो झरना। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है चित्रपट से। 3:00 प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे मधुकर निराले एवं साथी। 3:20 पर आप हर रोज सुनते हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत। और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली

शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर कल विशेष भेंट वार्ता का कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा से की गई भेंट वार्ता। विषय होगा विश्व जनसंख्या दिवस 2026, युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज के लिए और भविष्य के लिए। आपसे बातचीत करेंगे सुप्रभात रॉय। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार होंगे ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष तथा कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रामू का नमस्कार
1: और सबको कमली का भी नमस्कार। नमस्कार रामू भाई।
0: नमस्कार नमस्कार और हार्दिक स्वागत कमली बहन। और सब बताइए क्या हाल समाचार है।
1: जी रामू भाई बढ़िया है सब हाल समाचार। और रिमझिम रिमझिम बरखा का मौसम आ पहुंचा है। तो वैसे भी हम किसान भाई बहन और गृहस्थों के लिए यह मौसम सबसे बढ़िया मौसम है। हम स्वागत कर रहे हैं इस मौसम का।
0: अब देखिए ये जो इतनी तेज गर्मी जो पड़ रही थी अभी कमली बहन, उसके बाद जो ये बारिश है, तो इस गर्मी जो कम हुआ है तो सब कुशल मंगल तो होना तो सबका मान लीजिए बनता ही है।
1: हाँ हाँ।

0: कि और राहत भी सबको मिली है
1: जी, जी, और साथ ही साथ हम किसानों के लिए एक ये भी है ना कि अब रोपने का समय शुरू हो गया है ना, एक उम्मीद से बन गई है कि आप कितना भी पानी पटा लीजिए लेकिन जो बरखा जो अपने खेतों में बरसती है तो उसकी उत्पादकता की कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही साथ अभी का ये जो मौसम है इस समय वैसे भी आप देखते हैं कि उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मौसम माना जाता है
0: और इसका स्वागत भी तो हम लोग उसी तरह से कर रहे हैं। अब देखिए पहली बारिश की जो बूंद होती है वो जब मिट्टी पर गिरती है कमली बहन तो उसकी जो एक खुशबू होती है ना वो अपने आप में उसका एक अलग अंदाज
1: अलग ही रोमांच है कि नहीं। जी जी बिल्कुल।
0: तो निश्चित रूप से ये जो हम लोग अभी गर्मी से परेशान थे तो ये बारिश जो हो रही है तो गर्मी से राहत मिली ही है। और इसके साथ ही साथ क्या है कि अब देखिए लोग इसके साथ ही साथ जल जीवन हरियाली तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: क्योंकि तीनों आपस में एकदम परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है,
1: जुड़े हुए
0: है कि नहीं।
1: हाँ, अभी आप देखिए कि कुछ दिनों पहले तक क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे जा रहा था और अधिकतर तालाब नदियां ताल पोखरे सब सूख रहे थे और इस कारण से जो पानी का एक तरह से देखा है तो किल्लत हो रही थी, तो अब बारिश की जो बूंदें आने लगी हैं वर्षा होने लगी है तो नदियों का जल स्तर भी सुधरा है और थोड़ा चापाकल वगैरह में पानी का भी सुधरा है। तो आप देखिए पेड़ पौधे भी देखिए उनकी भी रंगत निखर गई है,
0: बिल्कुल
1: है ना, उनमें हरियाली आ गई है, घास वगैरह और अच्छी दिखने लगी है। तो ये जल जीवन के साथ ही हरियाली ये सारी चीजें जो है आप एक दूसरे से इनका अन्योन्याश्रय संबंध है।
0: बिल्कुल। और कहते भी है ना कमली बहन की जल है तो जीवन है।
1: जी हाँ।
0: और हरियाली है तो जीवन में खुशहाली है,
1: खुशहाली
0: है कि नहीं।
1: जी
0: देखिए हमारी पृथ्वी जो है ना कमली बहन सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन फल फूल रहा है और इसका एकमात्र कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में जल और अनुकूल पर्यावरण मतलब हरियाली का होना है कि नहीं।
1: जी।
0: और देखिए हवा के बाद जल ही जीवन की सबसे बड़ी और अनिवार्य आवश्यकता है, है कि नहीं।
1: जल के बिना जीवन की कल्पना भी
0: नहीं कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए अगर पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए कमली बहन तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे जिससे हरियाली नष्ट हो जाएगी। जल और हरियाली मिलकर ही जीवन का निर्माण करते हैं, है कि नहीं।
1: रामू भाई वैसे तो पृथ्वी पर तीन भाग जल ही है ना, लेकिन इसमें से जो है अधिकतर पानी खारा पानी है,
0: बिल्कुल
1: वो पीने के योग्य नहीं है और इसी कारण जो है इस जो मीठा पानी जो है मात्र 3% ही है जो पेयजल के रूप में उपलब्ध है
0: और इसका भी अधिकांश हिस्सा जो है कमली बहन वो ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में जमा है।
1: अच्छा,
0: मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम लोग कि इंसान के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए 1% जल ही नदियों तालाबों और भूजल के रूप में बचता है।
1: जी है, लेकिन एक बात देखिए आप रामू भाई, दिन पर दिन जैसे जैसे नई पीढ़ियां आती जा रही है जल संकट एक उभर कर देखने को आ रहा है। रामू भाई इसका कारण क्या है?
0: देखिए ये तो स्वाभाविक है ना कमली बहन
1: जी
0: कि जल संकट के कारण तो कई कारण है जिसमें है क्या कि अगर जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसके कारण पानी की मांग भी लगातार बढ़ रही है कि नहीं।
1: और दूसरा कारण ये भी रामू भाई की शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, औद्योगिकरण जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है, कंक्रीट के सीमेंट के जंगल मतलब बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जहाँ समझ लीजिए हरी भरी भूमि होनी चाहिए थी वहाँ उसका दोहन कर पक्के मकान बनाते जा रहे हैं।
0: तो उससे वर्षा का जल जो है वो जमीन के अंदर भी तो नहीं जा पाता।
1: जो बारिश होती है तो उसका जो धरती को जो प्यास नहीं बुझ पाती है, पानी नहीं सोख पाती है और इसी कारण जो है भूमि का जल स्तर नीचे गिरता जाता है।
0: उसके साथ ही साथ देखिए कारखानों का कचरा हो या फिर घरेलू गंदगी नदियों में बहाने से स्वच्छ जल के जो भी स्रोत हैं कमली बहन वो दूषित हो रहे हैं, है कि नहीं।
1: और एक ये भी बात है रामू भाई कि हम लोग जो है आजकल शहरीकरण के कारण जल का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा करते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना। जहां आप देखिए कि कई बार नहाने के क्रम में लोग जो है झरने के नीचे बैठ जाते हैं और लगभग 20-30 बाल्टी पानी बह जाता है जो आराम से 2 बाल्टी में लोग नहा सकते हैं।
0: निश्चित रूप से
1: आप देखते हैं कि मुंह धोते समय ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा पानी बहते जाता है, इस पर एक अंकुश नहीं है लोगों की
0: दैनिक जीवन में। लोग गाड़ी भी धोने में बहुत पानी बर्बाद करते हैं,
1: हम लोग है गाड़ियों को धोते हैं और बस अनवरत धोते ही जाते हैं।
0: कई बार तो लोग ऐसे भी जहां सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है जल की व्यवस्था वहां भी नल को आप देखेंगे कि छोड़ दिया, खुला ही छोड़ दिया, नल बह रहा है, पानी बह रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं ना कमली बहन, इन सब पर ध्यान देना होगा। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो जल का जो संरक्षण है वो भी होगा, और वो आने वाली पीढ़ी के लिए ही तो हम लोगों की आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए फायदेमंद होगा।
1: आने वाली पीढ़ियों को हमें ये समझाना होगा कि ये जल जो है ये निःशुल्क जरूर है लेकिन ये बहुत कीमती है,
0: बिल्कुल
1: मूल्य है, और अगर हम इसकी बचत नहीं करते हैं तो आने वाले वर्षों में ये हो सकता है कि हमारे लिए उपलब्ध ना हो और जीवन पे संकट आ सकता है।
0: निश्चित रूप से
1: ये समझने की बात है कि हमें उतना ही पानी को खर्च करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है, और उन्हें बचाने का प्रयास शुरू से होना चाहिए और एक आदत के रूप में बना जाना चाहिए।
0: इसके साथ ही साथ क्या है कमली बहन कि हरियाली का जो महत्व है और पर्यावरण संतुलन
1: जी
0: दोनों आपस में जुड़ा हुआ
1: बहुत जुड़ा हुआ है।
0: कहते हैं कि पेड़ पौधे जो है ना कमली बहन प्रकृति के फेफड़े हैं।
1: हाँ।
0: वे हम लोगों को जीवन दायिनी ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको सोखते हैं।
1: जी है जी, और इसी कारण आप देखिएगा कि जब कभी हम पेड़ों से होती हुई जो सड़क होती है उसके बीच से गुजरते हैं तो एक ठंडक का सा एहसास होता है।
0: निश्चित।
1: और जिन जगहों पे मान लीजिए आसपास में पेड़ नहीं होते वहाँ एक घुटन सी होती है, एकदम लगता है कि हमारे मतलब दम सा घुट रहा है। तो बहुत जरूरी है कि जो पेड़ों की हरियाली है और वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उस कारण हमें एक शांति का एहसास होता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास पेड़ रहे, पौधे रहे, हरियाली रहे।
0: घने जंगल और पेड़ पौधे के द्वारा ही तो ये बादलों को आकर्षित करते हैं जिससे समय पर और अच्छी बारिश होती है ना कमली बहन
1: जी।
0: अब देखिए पेड़ सूर्य की सीधी और तेज किरणों को सोखकर धरती के बढ़ते तापमान को भी कम करती है। पेड़ों की जड़ें जो है वो मिट्टी को मजबूती से जकड़ कर रखती है जिससे बाढ़ के समय उपजाऊ मिट्टी बहने से भी बच जाती है ना
1: जी।
0: वन जो है इसके साथ ही साथ करोड़ों पशु पक्षियों और कीट पतंगों का प्राकृतिक घर भी है।
1: हाँ,
0: है कि नहीं। अब देखिए इसके लिए सरकार के द्वारा भी समय समय पर प्रयास किए ही जा रहे हैं लगातार
1: जी।
0: इसमें क्या है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कई विशेष कदम उठाए हैं। अब देखिए ना बिहार सरकार का जो जल जीवन हरियाली अभियान है जो आप कहना चाह रही हैं कमली बहन
1: जी जी, जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हम लोग वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये समय होता है, अनुकूलन होता है इस समय पेड़ पौधों के उगने के लिए। तो इस समय अधिक से अधिक पेड़ पौधों को उगाने पर, उनके संरक्षण पर एक अभियान चलाया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पेड़ों को उसके उनके उगाने के लिए में आए आगे और इस तरह से हरियाली को बढ़ावा मिले।
0: तो यही ये जो बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली अभियान है वो एक ऐतिहासिक कदम है, और इस अभियान के जो मुख्य कुछ घटक हैं जैसे पुराने जो भी कुएं हैं, तालाब है या फिर पोखर को साफ कर उनका पुनरुद्धार किया जा रहा
1: जी
0: है
1: जी।
0: सड़क हो, नहर हो या फिर बांधों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। पानी की बचत के लिए टपकन सिंचाई और रसायनों से मुक्त जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: जी जी, ये टपकन सिंचाई जो है ना ये बहुत ही उपयोगी है, और इसमें आप देखिए कि कम पानी में ही बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें इसको ड्रिल ड्रॉप भी कहते हैं,
0: जैसे
1: कि एक बोतल में पानी भर के और किसी पौधे से बांध के लगा दिया जाता है और बूंद बूंद उससे पानी गिरता है तो पौधे की मिट्टी भी नहीं सूखती है और बहुत ज्यादा पानी की उसे जरूरत भी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छी एक उपाय है ये, इसको हमारे किसान भाई बहनों को इसको अपनाना चाहिए
0: जी। इसलिए जल और हरियाली प्रकृति द्वारा मानव को दिए गए सबसे अनमोल उपहार हैं कमली बहन। जल जीवन हरियाली केवल एक नारा नहीं है बल्कि ये हमारे अस्तित्व को बचाए रखने का एकमात्र संकल्प होना चाहिए हम लोगों का।
1: निश्चित तौर पे होना चाहिए, हम सबको मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि हम जल का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और अपनी धरती को हरा भरा बनाएंगे।
0: बिल्कुल, ताकि मानव जीवन जो है वो हमेशा मुस्कुराता रहे, है कि नहीं।
1: बिल्कुल, अभी जो है बहुत सारी तरह के पौधे भी जो है निशुल्क सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं, आप नर्सरी में भी जाके उन्हें ले सकते हैं, और हम अपने आसपास के जो खाली क्षेत्र हैं उनमें हम चाहें तो उनको उनका पौधारोपण कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत तरह के पुरस्कार वगैरह भी निर्धारित होते हैं अपनी फोटो खींचकर और अपलोड करने पर, कई तरह के प्रोत्साहन पुरस्कार वगैरह भी मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब अभियानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, प्रकृति के महत्व को समझे। और रामू भाई आगे बढ़ते हैं और कुछ संदेशों को सुनते हैं और फिर सुनेंगे एक शिव भजन
0: जी।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.

0: जी
1: बहुत ही मधुर सा शिव भजन सुना,
0: पूरा माहौल एकदम भक्तिमय हो गया।
1: जी अब सावन आने वाला भी है और गीत संगीत की जो ये भजन की जो एक गंगा है, हम सबों को इन सबों में ये माहौल बन जाएगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। और वैसे भी देखिए कविताएं हैं, भजन हैं, ये सब हमारे जीवन की सांस्कृतिक एक विरासत होती है,
0: निश्चित।
1: और इन सब में हमें एक तरह से आप देखिए कि अगर आप इनमें मतलब डूब जाते हैं तो बहुत आत्मिक शांति का एहसास भी होता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो ये काव्य पाठ भी इसी एक तरह से इसी
0: देखिए मूल रूप से क्या है कमली बहन, कि जब किसी कविता को केवल पढ़ा नहीं जाता है बल्कि उसे सही लय, सुर, ताल और भावों के साथ जब श्रोताओं के सामने उसको प्रस्तुत किया

0: किया जाता है
1: जी,
0: तब वो काव्य पाठ कहलाता
1: अच्छा,
0: है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आइए हम लोग भी एक पूर्व प्रसादित स्वरचित काव्य पाठ सुनते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: और साथ साथ अपने श्रोताओं को भी सुनाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ये कवित्री है माधवी, तो आइए हम लोग ध्यानपूर्वक ये काव्य पाठ सुने।

0: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: जी
3: जी अंतराल से पहले हम बहुत ही मधुर सा काव्य पाठ सुन रहे थे और कितना अद्भुत था रमन जी,
2: जी।
3: रामू भाई की कितना अद्भुत, बहुत ही आनंददायी लगा। और ये खूबसूरती होती है, ये मौसम जो होता है इसमें जब बारिश का मौसम होता है और उस समय हमें भजन में और शिव शंकर की याद आती है कि चलो पास ही हमारे देवघर नगरी है, वहाँ जाके हम दर्शन भी करें। बहुत ही अद्भुत सा ये गायन और काव्य पाठ था, बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें खास बात भी थी कि कजरी की बातें आ रही थी, जब बारिश होती है तो कजरी भी याद आती है
2: निश्चित रूप से।
3: तो आइए और
2: जैसे जैसे ये बारिश का मौसम मान लीजिए आ रहा है तो कजरी तो उसमें निश्चित रूप से होना ही चाहिए,
3: होना ही चाहिए,
2: है कि नहीं?
3: तो बारिश हो और कजरी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए एक सुनते हैं कजरी भी।

0: तोरा संग ना जाए बालम, कितनी मधुर मधुर कजरी हमने सुनी रामू भाई।
1: बिल्कुल।
0: और अब कुछ मौसम से संबंधित जानकारी भी हम अपने श्रोता भाई बहनों को दे दें। तो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। बांका नवादा जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90-95% और दोपहर में 50-55% रहने की संभावना है। और इस अवधि में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलने का अनुमान है। पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा जल का लाभ लेते हुए हमारे श्रोता भाई बहनों को हम देंगे सुझाव कि धान की सबोर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई करें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें तथा 10-15 दिन की नर्सरी के समय पर निराई गुड़ाई करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों जैसे कि राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबोर मोती धान, सबोर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं।
1: जी।

0: मोटे अनाजों को खेती हेतु ऊंचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8, RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1 किस्मों की बुआई भी कर सकते हैं
1: जी। और इसके साथ ही साथ क्या है कमली बहन, कि अरहर के लिए कि ऊंचास जमीन में अरहर की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करना है
0: जी।
1: और जैसे बहार हो गया, पूसा 9 हो गया, राजेंद्र अरहर 1 हो गया और राजेंद्र अरहर 2 किस्मों की बुआई जो है वो 60 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर करना है और अंतिम जुलाई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करना है और अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर जो है वो 18 से 20 किलोग्राम जो है वो प्रति हेक्टेयर है
0: जी जी,
1: है ना
0: जी।
1: और अब कुछ पशुपालक भाइयों के लिए भी सलाह है
0: हाँ हाँ,
1: कि माह के अंत तक भैंसों का ब्यान जो है वो शुरू हो जाता है और ब्याने वाले पशु का विशेष ध्यान रखना है। गलघोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगाए हों तो इस माह में जो भी पशुपालक भाई हैं वो निश्चित रूप से अपने भैंसों को लगवा दें
0: जी।
1: और इसके साथ ही कुछ ये मान लीजिए चेतावनी भी है मौसम संबंधित कि आंधी, तेज हवाएं और वर्षा फसलों को नुकसान, फल फूल का झड़ना और कीट रोग प्रकोप और सब्जी बागवानी फसल जो है उसको क्षति पहुंचा सकती है और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती है। इसलिए जो भी इस तरह का चेतावनी दिया गया है उससे अपने पशुओं को परहेज करके रखना
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: उससे मतलब, बचाव करके रखना
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: है ना
0: जी। और भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करते रहें। पत्ती खाने वाली सुंडियों एवं फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 30 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर किस्में अनुशंसित हैं और प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने से पूर्व बीजोपचार कर लें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की रखें।
1: अच्छा, तो ये तो थी मौसम संबंधी जो भी जानकारी थी और
0: हाँ,
1: समसामयिक
0: हाँ,
1: सलाह था किसान भाई भाइयों के लिए
0: जी।
1: और अब क्या इरादा है आपका इस तरह का ये मौसम
0: रिम
1: है
0: रिम बारिश हो
1: तो
0: रही
1: लगे
0: है,
1: हाथ एक
0: तो
1: बढ़िया सा कजरी सुन लिया जाए,
0: सुन ही लिया जाए जी। आइए

0: जी, और जब घटा घिरती है तो फिर हम लोग किसान भाई बहनों के लिए बहुत से काम होते हैं अपने खेतों में। हम क्या बोएं, कैसे बोएं, अपनी फसलों की सुरक्षा कैसे करें, तो इन बातों को समझने के लिए हम जरूरी है कि कोई अनुभवी किसान हो जो हमें सलाह दे क्या करना है कैसे करना है। तो आइए एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता के माध्यम से एक अनुभवी किसान की बातों को सुनते हैं, आइए सुने।
1: श्रोताओं, समय समय पर हम आपकी मुलाकात समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से करवाते हैं और उनसे उनकी सफलता की कहानी भी हम सुनवाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं भाई बच्चू प्रसाद सिंह जी।

0: कृषि के क्षेत्र के एक बड़े ही अच्छे जानकार हैं, एक सफल किसान हैं, जिंदगी के अपने इनके अनुभव हैं और आज इनके अनुभव आपके साथ हम बांटना भी चाहते हैं। भाई बच्चों प्रसाद सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हमारे दूसरे किसान भाइयों के लिए आप अपने खेती के अनुभव बांटिए, उन्हें बताइए खेती के आपके क्या क्या अनुभव रहे।
1: खेती के, धान खेती के लिए सर्वप्रथम पहली जुताई हम जेठ में करते हैं, वर्ष बारिश जब होती है उसकी जुताई करते हैं
0: जी।
1: और हरी खाद के लिए ढैचा, मूंग, कलाई भी बुआई करते हैं। सबसे उत्तम हरी खाद के लिए ढैचा होता है, क्योंकि इसलिए कि उसमें जो गांठ होता है वो यूरिया का काम करता है और खेत के लिए बहुत नाइट्रोजन उसमें आ जाता है और यूरिया का जो काम करता है, पहली काम यूरिया का ही धान की खेती के लिए ये करते हैं। इसके बाद फिर जब
0: बच्चों भाई थोड़ा सा यहाँ विराम देते हुए
1: जी
0: अपने श्रोता भाइयों को थोड़ा हम क्षेत्र के हिसाब से जानकारी दिलवा दें, जैसे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं?
1: ग्राम बिरनौत के हैं।
0: ये बिरनौत है कहाँ?
1: बिरनौत आपका गोराडी प्रखंड के आसपास है।
0: बिरनौत है, ठीक है। अब रही बात है कि आपके क्षेत्र की जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी है?
1: मिट्टी अभी हम लोगों को जो जांच हुई है,
0: मिट्टी कैसी है?
1: मिट्टी काली मिट्टी,
0: बलुआही मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, अलग अलग किस्म की मिट्टी होती है, ये मिट्टी कैसी है?
1: काली मिट्टी है।
0: काली मिट्टी आपकी यहाँ ज्यादातर है, यानी कि जो भी आपका खेत है, बहियार है, उसमें काली मिट्टी ही ज्यादा मात्रा में
1: जी।
0: और मिट्टी जांच आप अनुभवी लोग हैं, आप लोग तो करवाते ही होंगे
1: जी। हाँ,
0: मिट्टी जांच के उपरांत आपके क्षेत्र की माटी में किन किन पोषक तत्वों की कमी आई?
1: अभी जो जांच में आई हुई है हम लोगों का करीब करीब ठीक है, उसमें कमी अभी तक नहीं आई है, हर चीज
0: बढ़िया बात है ना
1: जी।
0: अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि माटी जो है वो आपकी सबल माटी है, है ना? अच्छी माटी है, काली माटी है
1: जी।
0: इन काली मिट्टी जो है आपके क्षेत्र में जो है, कितने खेत हैं आपके?
1: 5 बीघा खेत है।
0: 5 बीघा खेत है। इन खेतों में किन किन फसलों का उत्पादन आप लेते हैं?
1: धान कटने के बाद हम गेहूं की खेती लेते हैं
0: जी।
1: फिर मक्का खेती लेते हैं, इसके साथ गेहूं, चना, मसूर इत्यादि।
0: अभी का समय धान का चल रहा है?
1: अभी धान का चल रहा है।
0: ठीक है, गेहूं कटने के बाद धान का समय
1: जी।
0: धान के समय में जैसे कि अब धान आपके यहाँ क्या दरमन बीघा जाता है?
1: हम अपनी अनुभवी बता रहे हैं सर,
0: कितना दरमन?
1: 20 से 25 मन हम अपनी उपज लाए हैं।
0: लाए हैं गेहूं कितना लाए हैं?
1: उन्नत प्रगतिशील किसान जो है बहुत अच्छा ढंग से जो खेती करते हैं, हर फर्टिलाइजर दे करके, बर्मी कंपोस्ट भी और डीएपी यूरिया पोटास वगैरह देकर जो बुआई करते हैं, उसका उपज 12 से 16 20 तक ले आते हैं।
0: मक्के के बारे में बताइए।
1: मक्का अच्छी ढंग से, उन्नत ढंग से करते हैं, बर्मी कंपोस्ट, गोबर कंपोस्ट दे करके, इसके बाद रासायनिक खाद डालते हैं, तो उसका उपज 3-3.5 मन का कट्ठा आता है।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है, अच्छे उत्पादन आप लेते हैं। अभी धान का समय चल रहा है, तो धान के समय में अभी बिचड़ा वगैरह आपने लगाया या क्या किया है?
1: जी, बिचड़ा लगाए रोहिण नक्षत्र के लास्ट में, रोहिण नक्षत्र जब आता है
0: जी,
1: तो खेती का समय
0: रोहिण नक्षत्र के अंतिम में आप बिचड़ा लगाए
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: और अभी बिचड़ा लगा हुआ है?
1: नहीं, बिचड़ा रोपाई हो गया सर, यही रोपाई करके हम आपके स्टूडियो में पधारे हैं।
0: रोपाई करके पधारे हैं, ठीक है। बिछड़ा कितना लगाए हैं आप?
1: बिछड़ा 1 बीघा के लिए 1 कट्ठा।
0: 1 कट्ठा खेत की तैयारी जिसमें की रोपाई आपने की है
1: जी,
0: वो खेत की तैयारी आरंभ में कैसा किया आपने?
1: आरंभ में जो हरी खाद था जैसे मूंग या ढेचा, उसको पानी पहले पूरा दे दिए खेत में, इसके बाद ट्रैक्टर से 2-4 बार जुताई कर दी लगातार, इसके बाद 5 या 6 दिन उसको गलने के लिए छोड़ दिए। जब वह पूरा अच्छी तरह गल गया तो इसके बाद फिर 2 बार जुताई उसमें लगातार कर दिए और कादा की तैयारी हो गई, जिसमें कि वह

0: खाद 5-6 दिन के अंदर सड़ गल जाता है, खरपतवार जो भी रहता है, जो भी हरी खाद रहता है वह सड़ कर अच्छी खाद बन जाती है। इसके बाद रोपाई हम लोग कर डालते हैं, रोपाई लाइन से करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी 8 या 10 इंच रहती है। इसके बाद फिर घास मारने वाला दवाई और 20 किलो का बीघा DAP, 10 किलो यूरिया, पोटास 10 किलो का बीघा छिड़काव कर डालते हैं। इसके बाद फिर दूसरी खाद 15 या 20 दिन पर डालते हैं और इसके बाद वो घास वगैरह जिसमें आता है वह किनोनी कर डालते हैं। इसके बाद वह एक अच्छा तरह का पौधा बन जाता है, उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं आता है। और जो भी बीमारी वगैरह होता है उसके लिए एक स्प्रे दवाई हम लोग कर डालते हैं
1: जी,
0: तो पौधा का रंग भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ने लगता है जब खिलता है, जब उसका ताकत मिल जाता है ना सब खाद वगैरह का, तो पौधा खिलने लगता है खेत में, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लाइन से लाइन की दूरी रहती है, इसलिए जो भी देखने के लिए जाते हैं एग्रीकल्चर से,
1: 20,000 भी कभी होता है।
0: हाँ, कभी अगर रेट चला गया 20 का तो उसमें ज्यादा आ गया, 12,000-15,000 भी आता है।
1: हाँ, 4 महीने का ये परिश्रम,
0: 4 महीने,
1: इस 4 महीने की अवधि में आप ये पाते हैं, है ना?
0: जी हाँ।
1: चलिए, बड़ी अच्छी बातों की जानकारी दी आपने भाई बच्चू प्रसाद सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दूसरे किसान भाइयों के साथ अपने जीवन के, अपने कृषि के क्षेत्र के अनुभवों को आपने बांटा। उनकी ओर से ही हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: जी
3: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमने इस अनुभवी किसान से पाई और हमारे श्रोता भाई बहन जो है निश्चित तौर पे उन्हें भी इन जानकारियों से लाभ मिला होगा। हम समय समय पे अपने श्रोताओं को इसी तरह की अनुभवी बातें, अनुभवी किसानों की बातें, जानकारियों की बातें पहुंचाते रहते हैं ताकि उन तक इन बातों का लाभ पहुंचे।
2: और इस तरह से अगर वो मान लीजिए कि अपना जो भी कृषि कार्य है अगर करते हैं तो निश्चित रूप से उनका फसल भी अच्छा होगा,
3: उपज
2: उत्पादन भी बढ़िया होगा।
3: हाँ।
2: और जब उपज अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आमदनी भी अच्छा ही होगा, है कि नहीं?
3: जी जी, हमारे अन्नदाता हैं, उनका अन्न मतलब भरपूर होना हमारे लिए हित की बात है। और इसी के साथ ही रामू भाई, हमारे चलने का समय भी हो रहा है, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, तो अगले कार्यक्रम में फिर से ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दें सबों को, कमली का नमस्कार
2: और सबको रामू का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिन का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में एसीबी ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मू के अंचल अधिकारी राजस्व

0: उपनिरीक्षक सहित तीन को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दूसरे दिन झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार निवेशक अनुकूल वातावरण, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना और कुशल मानव संसाधन के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार ने पर्यटन नीति 2026 और होम स्टे नीति के माध्यम से धार्मिक, इको, साहसिक और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना प्रस्तुत की। उन्होंने निवेशकों से झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन और रोजगार सृजन केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला तथा बीएलओ और बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जल्द भरकर जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के विरुद्ध निलंबन सहित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन में तेजी लाने तथा 14 जुलाई को सभी बूथों पर बीएलओ बीएलए 2 बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज चाईबासा में कोल्हान क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि समीक्षा के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान तेज करने, सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
1: डीजी मैडम की अध्यक्षता में आज सभी जिले का जो परफॉर्मेंस है क्राइम और नक्सल सिनेरियो पे, उस पे विशेष रूप से चर्चा की गई। और जो नक्सल अभियान तथा आने वाले फेस्टिवल्स और क्राइम रिलेटेड जो सिनेरियो है उसको लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। और विगत कुछ महीनों में काफी सारे ऑपरेशन लोगों ने यहाँ पे किया है, जिसके वजह से नक्सल का स्ट्रेंथ अभी काफी कम हो गया है। और आने वाले समय में वो बचे हुए ग्रुप्स के ऊपर हम लोगों की तरफ से प्रभावी कार्रवाई की जाए।
0: बोकारो जिले में नष्ट की जाने वाली करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि विभाग ने डिपो मैनेजर और क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
2: जितने संबंधित पदाधिकारी या कर्मी हैं, उन सबको सौकौज पूछा गया है और सौकौज पूछने के उपरांत अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया तो उस पर अग्रतर कार्रवाइयां होगी। अभी देखते चल रहे, आगे आगे और भी कार्रवाइयां होगी। आप आश्वस्त रहें, विभाग गंभीर है और गंभीरता के साथ दोषियों पर कार्रवाई करेगी।
0: धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में 15 वर्ष बाद अदालत ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक सहित 30 आरोपियों को दोषी करार दिया है। MP MLA कोर्ट ने सभी दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2011 में BCCL आवासों से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल

0: @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB रांची की टीम ने बुढ़मू अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा, राजस्व उप निरीक्षक राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को म्यूटेशन की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। परिवादी सुबोध कुमार ने ACB से रिश्वत लिए जाने की शिकायत की थी। जाँच में ये मामला सही पाया गया। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताराटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि आरोपी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर और APK फाइल भेजकर लोगों से ठगी करते थे।
1: साइबर क्रिमिनल सेक्टर है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था और उस टीम ने छापामारी की और उसमें 5 लोग थे। लोग के पास से 10 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। कई APK फाइल भेज करके उनके द्वारा लोगों से साइबर ठगी किया जा रहा था।
0: जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड में एक और आरोपी राहुल दुबे ने आज बिष्टुपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है।
2: पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, इनका जो एक मिलजुल के सहयोगपूर्ण कार्यक्रम स्पीडी ट्रायल करना और उनके माध्यम से उन लोगों पर इतना दबाव बन गया है कि वो अब ये प्रयास करते हैं कि वो या तो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से संदेश है सभी लोगों को कि अपराध से दूर रहें। अभी तक जो घटनाएं हो गई हैं उनमें तो हम जरूर पकड़ेंगे लोगों को और सजा दिलवाएंगे।
0: गिरिडीह की विशेष NDPS अदालत ने वर्ष 2010 में दर्ज अवैध अफीम की खेती और तस्करी से जुड़े मामले में 27 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। यह मामला लुकैया नयनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था जिसमें 29 लोगों पर अवैध रूप से अफीम की खेती और कारोबार करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नहीं कर सका। रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज वार्षिक आषाढ़ी पूजा श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर मां को 56 प्रकार के व्यंजन और ऋतु फल अर्पित कर राज्य तथा देश की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई। मंदिर न्यास समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि योगिनी एकादशी पर होने वाले इस वार्षिक पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है।
3: आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। आज बहुत ही तिथि महत्वपूर्ण है और गर्मी का समय खत्म हो गया, बरसात ऋतु चालू हो चुका है ताकि आसपास क्षेत्र में अच्छे से फसल हो, खेती हो, भरपूर रहे, आनंद रहे। और ये तो जागृत देवी है कि माँ हर मनोकामना भक्त को पूरा करती है।
0: झारखंड की अंडर 18 बालक रग्बी टीम जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। यह प्रतियोगिता गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित हो रही है। टीम की कप्तानी अजीत नाग कर रहे हैं जबकि सालमन भेंगरा कोच और किशन उराव टीम मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026 के दौरान झारखंड को औद्योगिक निवेश और पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की रणनीतियों पर हुआ मंथन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने अभियान के लिए 15 दिनों का मांगा अतिरिक्त समय। कोल्हान दौरे पर DGP तदाशा मिश्रा ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची में ACB ने म्यूटेशन की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में बुढ़मू के अंचल अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक सहित 3 को किया गिरफ्तार। और जूनियर नेशनल रग्बी 7A साइड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की अंडर 18 बालक टीम पहुंची हैदराबाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 7:11 हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर शोभा रेवन की वार्ता। विषय है परिवार कल्याण, बेहतर जीवन की ओर पहला कदम।
1: परिवार कल्याण, बेहतर जीवन की ओर पहला कदम। भारत जैसे देश के लिए जहाँ की विस्फोटक जनसंख्या अरबों को पार कर चुकी है, एक गुणवत्तापूर्ण परिवार कल्याण सेवा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता एवं चुनौती बन गई है। विकास के इस दौर में भारत भी विश्व के समकक्ष खड़ा है, लेकिन अन्य विकसित या विकासशील देशों की तुलना में इस बढ़ती हुई जनसंख्या के आंकड़ों को देखकर साफ लगता है कि ये रास्ता आसान नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही औरतों और बच्चों के लिए देश की गरीबी के परिणाम साफ हैं। 75.5% बच्चों की शारीरिक स्थिति स्थापित मानदंडों के हिसाब से अवरुद्ध है और 51% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इस बेलगाम बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, अपराध इत्यादि में बेइंतहा बढ़ोतरी हो रही है। अतः यदि हमें बेहतर जीवन की ओर आगे कदम बढ़ाना है तो सर्वप्रथम हमें बढ़ती हुई आबादी पर पाबंदी लगानी होगी और इसके लिए हमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को केंद्र बिंदु बनाकर कार्यक्रम बनाने होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में अपने 189 सदस्य राष्ट्रों के सामने विकास के कुल 8 लक्ष्य रखे, जिसमें से 4 सीधे स्वास्थ्य से ताल्लुक रखते हैं। इन चारों में है चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार और एड्स, मलेरिया व टीबी से मुकाबला। लेकिन जानकारी का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं कुपोषण से महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिर रहा है। इसे दूर करने का प्रण ही व्यक्ति, समाज और जनमानस को बेहतर जीवन की ओर अग्रसर करने का पहला कदम होगा। इन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते हुए भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत अपने आप में अनूठी एवं इकलौता है। पिछले कई दशकों में परिवार नियोजन केवल महिला बंध्याकरण तक ही सीमित था, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों की संख्या सीमित करना था। लेकिन आज इसी परिवार नियोजन ने अपना उद्देश्य बदलकर परिवार कल्याण कर दिया है। अर्थात इस कार्यक्रम ने प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य को पूरी तरह स्वयं में आत्मसात कर लिया है। यह बदलाव 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैरो में आयोजित जनसंख्या एवं उसके विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हुआ। तब से आज तक इस परिवार कल्याण कार्यक्रम में निरंतर बदलाव लाते हुए अब इसका लक्ष्य मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में केंद्रित है और इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के अलग अलग अनेकों कार्यक्रम चला रही है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें उसके बुजुर्ग पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठाते थे, लेकिन आज का परिवार हम दो, हमारे दो या बच्चे दो ही अच्छे पर सीमित हो गए हैं। जिन बातों को पुरानी पीढ़ी संस्कृति मानती आ रही थी, हो सकता है वे उनकी जरूरतें रही हों। धीरे धीरे वही जरूरतें परंपराएं बनी और रूढ़ हो गईं। लेकिन पुरानी रूढ़ियां टूटती हैं तो नई बनती भी हैं। आज महिलाओं के अपने मुद्दे हैं जो पुरुषों से अलग हैं। ये मुद्दे रोजमर्रा की जिंदगी और बेहतर जीवन की आकांक्षा से ओतप्रोत हैं। सरकार ने महिलाओं और किशोरियों के लिए

मुख्य बिंदु है जिसके आंकड़ों के आधार पर सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम के विकास को गति दे रही है। पहला, किशोरियों के लिए उनका स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। शादी की उम्र एवं प्रजनन क्षमता, शादी की उम्र 18 वर्ष के बाद एवं पहला बच्चा 20 के बाद। प्रथम प्रसव के समय महिलाओं की उम्र, दो बच्चों के बीच का अंतराल जो कम से कम 3 साल होना चाहिए। बच्चों की कुल संख्या, कितने बेटे कितनी बेटियां, या फिर सिर्फ दो ही बेटियां। वैसे दंपतियों की संख्या जिन्हें सिर्फ दो ही बच्चे चाहिए, उन परिवार नियोजन विधियों को अपनाने वाले दंपतियों की संख्या। इन आंकड़ों के आधार पर परिवार कल्याण को गति दी जा रही है। महिलाओं के लिए गर्भावस्था में किसी स्वास्थ्य संस्था में पंजीकरण कराना, प्रसव पूर्व कम से कम 3 बार जांच, 90 दिनों तक आयरन की गोलियां लेने वाली महिलाओं की संख्या, प्रसव पूर्व टिटनेस का टीका कितनी महिलाओं को लगाया गया, और संस्थागत प्रसव की संख्या। शिशुओं के लिए जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चों को माँ का दूध पिलवाना, कंगारू विधि अपनाना, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण यानी 12 से 23 महीने के अंदर BCG का 1 टीका, पोलियो की 3 खुराक, DPT का 3 टीका और मिजल्स का 1 टीका, इनकी कुल संख्या। कै दस्त वाले बच्चे जिन्हें ORS दिया गया, कम वजन वाले बच्चों की संख्या। कै दस्त वाले वैसे बच्चे जिन्हें ORS के अलावा अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई। अब परिवार नियोजन में पिछले दशकों की अपेक्षा आज गर्भ निरोध की जरूरतों में चमत्कारिक बदलाव आए हैं। दंपति अब पुराने तरीके नहीं अपितु आधुनिक अस्थाई लंबी अवधि तक चलने वाले गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने लगे हैं। यह एक खुशहाल परिवार की चाबी है, इससे अनचाहे गर्भ से मुक्ति मिलती है। दो बच्चों के बीच स्वस्थ और सुरक्षित अंतराल रखा जा सकता है जो माँ और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। प्रसव के तुरंत बाद महिलाएं जिन परिवार नियोजन की विधियों को अपना सकती हैं है और केवल प्रशिक्षित कर्मी द्वारा ही लगाया जाता है। आंवल निकलने के 10 मिनट के अंदर या प्रसव के 48 घंटों के अंदर अस्पताल में रहते हुए ही लगाया जा सकता है। यह 10 साल तक प्रभावी है। अगर बच्चा ऑपरेशन से हो तो भी आंवल निकलने के बाद इसे लगाया जा सकता है। अन्य विधियों में है गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, कॉन्डोम, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां, महिला या पुरुष नसबंदी। इन सभी के लिए सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनेकों कार्यक्रम चला रही है, जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो, समय समय पर विटामिन ए, जापानीज एनकेफेलाइटिस का टीका इत्यादि। अर्श यानि एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, जिसमें 10 से 19 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए परामर्श एवं विभिन्न जानकारी दी जाती है, जिसमें उन्हें माहवारी एवं स्वास्थ्य से संबंधित बातें बताई जाती हैं। इसी तरह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें स्कूलों में साप्ताहिक यानि हर एक सोमवार को बच्चों को आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं। संस्थागत प्रसव के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि पूरे गर्भावस्था में उनके स्वास्थ्य की समुचित जांच एवं देखभाल हो सके। इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है, जैसे जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को आधुनिक एवं जरूरी सामानों से सुसज्जित किया है। गांव की महिलाओं से सीधा संपर्क के लिए आशा एवं ANM की नियुक्ति की है। प्रसव के लिए सुदूर गांव से आने के लिए हर गांव प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई है।

0: इसी तरह परिवार नियोजन के लिए यूं तो हर रोज ही इसकी सेवा प्रदान की जाती है, लेकिन समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं जिसमें निःशुल्क एवं सरल परिवार नियोजन की सुविधाएं प्रोत्साहन राशि के साथ दी जाती हैं। ऐसे अनेकों कार्यक्रम सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के विकास के लिए चला रही है। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, पहला, मातृ मृत्यु दर को कम करना, दूसरा, शिशु मृत्यु दर को नीचे लाना, तीसरा, नवजात शिशु मृत्यु दर कम करना एवं चौथा, महिलाओं की प्रजननशीलता दर को कम करना। इस पर अभी काम और बाकी है, क्योंकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी है। मातृ स्वास्थ्य सेवा के लिए संस्थागत गांव या प्रखंड स्तर तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि इसे जिला और राज्य स्तर तक विस्तार करना है ताकि माँ और शिशु मृत्यु दर कम हो सके। इसके लिए हमारे पास आज की तारीख में संसाधन है, स्वास्थ्य केंद्र जिसमें अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फर्स्ट रेफरल यूनिट एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल, और इसी के अलावा स्वास्थ्य कर्मी जिसमें ANM, मेल हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ वर्कर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सक इत्यादि। इन सभी का अवलोकन के पश्चात अभी भी हमारे स्वास्थ्य तंत्र में बहुत सी त्रुटियां या खामियां हैं जिनमें सुधार किया जा रहा है। इसी के क्रम में कन्या भ्रूण हत्या को बिल्कुल रोका जाए, तब ही बेहतर जीवन की ओर हमारा पहला कदम बढ़ेगा और यहीं से बदलेगी आधी दुनिया की तस्वीर।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
2: परिवार कल्याण बेहतर जीवन की ओर पहला कदम, डॉक्टर शोभा रेवन की ये पूर्व प्रसारित वार्ता आप सुन रहे थे। कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बचाव का कृपया ध्यान रखें।
1: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, शुगर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
0: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी।

सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लिया। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया नया उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। गया जी में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की। और राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3035 शिक्षक चिन्हित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पटना में पार्टी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
1: मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: इस बीच भाजपा ने उपचुनाव में नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
2: मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना और मैं 2 बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज लोग यहाँ पे देंगे।
0: गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक निर्धारित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के कार्यों की समीक्षा, घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। भाजपा के श्रेयसी सिंह ने बताया कि बैठक में राज्य के विकास पर भी चर्चा हुई।
3: और निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक बैठक थी। किस तरह से बिहार के विकास को सरकार और संगठन के समन्वय को बनाया जाए।
0: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और मंत्री संजय सिंह ने बताया कि बैठक में जिले के प्रभारी मंत्रियों को एनडीए के घटक दलों के जिलाध्यक्षों के साथ महीने में एक बार बैठक करने को कहा गया।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग जितने भी सहयोग शिविर सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसमें तमाम जिलाध्यक्षों को कहा है कि आप लोग अपने तरफ से सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो। वहीं उन्होंने माननीय मंत्री को कहा है कि जब आप जितने प्रभारी मंत्री हैं आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आप लोग भी अपने जो जिलाध्यक्ष जी हैं, एनडीए के जिलाध्यक्ष जी, उनके साथ बैठे और वहां की उनकी जो समस्याएं हैं, जो सहयोग शिविर में नहीं हो पाती है उसके ऊपर की जो समस्या है उसको आप लोग समाधान करने का काम करें। उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो जो संबंधित पदाधिकारी हो उनको बुलाकर आप लोग निर्देश दें।
0: बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति कयाची में विधायकों के लिए आयोजित हो रहे 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा के प्रबोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा विपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायकों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5: माननीय सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली विभिन्न पहलुओं विषय पर विशेषज्ञों द्वारा एक्सपर्ट जो हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। इससे संसदीय प्रक्रिया एवं नियम, सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, आचार संहिता, प्रश्नकाल एवं कार्यपालिका की जवाबदेही, आधुनिक तकनीक एवं ई लेभा का उपयोग, विधायी तथा बजटीय प्रक्रिया, विशेषाधिकार का प्रोटोकॉल तथा संसदीय समितियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल।
0: उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि अंतरित की। श्री चौधरी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से 1,423 करोड़ रुपए की राशि जारी की। योजना की 6 श्रेणियों के प्रत्येक लाभुकों को 1,100 रूपये का भुगतान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है ताकि उनके जीवन यापन में सहायता मिल सके।
6: महीने में 2 सहयोग कार्यक्रम आपके हो रहे हैं, साथ ही साथ पंचायत विकास शिविर भी होते हैं। इन तीनों कार्यक्रम में एकदम हर हालत में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें, सैनिटाइज करें, पंचायत में जो बैठक हो उसमें भी लोगों से पूछे कि कौन लोग छूट गए हैं जिनको पेंशन देने की जरूरत है, सबके बैंक अकाउंट को जोड़कर

0: सभी दिव्यांग जन, विधवा बहने और हमारे जो वृद्ध जन है, 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है, ये सरकार की तरफ से तय है।
1: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। नालंदा में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 साल पूरे होने के कारण चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर प्रभावी होगा। श्री प्रकाश ने कहा कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से ही सम्पन्न होगा।
2: सभी 6 पदों के लिए चुनाव होना है, मैं सभी पदों के लिए मल्टी फोर्स ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, 6 अलग अलग बैलेट यूनिट रहेंगे, तो चुनाव की प्रक्रिया भी सरल होगी, लोगों को सहूलियत भी होगा, वोट देने में ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा, पारदर्शी बनेगा और किसी तरह की गलती के लिए गुजारिश नहीं रहेगी। तो ये नया लेकिन साथ ही साथ पूरे में आरक्षण के रोस्टर लागू हुए और आरक्षण का रोस्टर भी इस बार इस तरीके से होता है, अभी वही वैसे ही होगा। इसके लिए अगर
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में 3035 ऐसे नियोजित शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने फर्जी शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन सभी शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ था। इस मामले में अब तक 1830 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
1: निगरानी विभाग ने इस जांच को कंक्लूड किया है और ये पाया है कि 3000 से अधिक शिक्षक इसमें दोषी पाए गए हैं जिनकी फर्जी डिग्रियां थी। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को ये कहा है कि पूरी तरह से और कड़ा एक्शन के साथ इसका प्रस्ताव बनाया जाए और शिक्षा विभाग ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से कोई इस प्रकार का हिम्मत नहीं जुटाए। और दूसरी बात कि आगे से जितनी भी बहालियां होंगी उन सभी लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच पहले हो, ऐसी व्यवस्था करें। और अभी भी उस जांच पेंडिंग है, सारे विषयों की जांच होगी और सब पे कार्रवाई होगी। कोई भी फर्जीवाड़ा को बर्दाश्त शिक्षा विभाग नहीं करेगा।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की विभागीय प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के लिए कल प्रशिक्षण होगा और उसके बाद शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन की तिथि जारी की जाएगी।
1: विभागीय प्रक्रिया ऐसे शुरू हो रही है डिजिटल, पूरी तरह से ऑनलाइन। वो हमारा ई शिक्षा कोर्स का कल ट्रेनिंग होगा, बिहार के सभी अधिकारी उससे जुड़ेंगे। उनको यहाँ से जो एक्सपर्ट हैं हमारे विभाग के, वो पूरा तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे कि इस प्रकार से आपको इसका ऑपरेशन करना है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर एक मापदंड के आधार पे करना, और इसके लिए आपको डेट आएगा, उस डेट में सभी शिक्षक आवेदन देंगे और उसके बाद प्रक्रिया के अधीन उनका ट्रांसफर।
0: प्रदेश में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सभी प्रारंभिक स्वीकृतियों को अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में बांका के फेतिया और शंभूगंज तथा सिवान का तरोली शामिल है। तकनीकी कारणों से फिलहाल नवादा के रजौली को निर्धारित लक्ष्य से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थलों की तकनीकी स्थिति, भूमि और जल उपलब्धता की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि अगले 12 महीनों के भीतर भूमि

0: जल आवंटन, बोरहोल ड्रिलिंग की अनुमति और अन्य आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए ताकि परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति ली जा सके। समीक्षा के दौरान ये बताया गया कि नवादा के रजौली के निकट चिन्हित स्थल परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है, इसी वजह से इस स्थल को परियोजना से बाहर कर दिया गया है। बैठक में ये जानकारी दी गई कि दो दो 700 मेगावाट क्षमता वाले प्रत्येक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि और प्रतिवर्ष 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी। उपयोग के बाद रीसाइकिल्ड और रेडिएशन फ्री जल का उपयोग सिंचाई सहित अन्य कार्यों में किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बेगूसराय के सिमरिया सिक्स लेन पुल पर एक्सपेंशन ज्वाइंट के तकनीकी अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है। मंत्रालय के अनुसार अनुरक्षण कार्य के दौरान पुल पर यातायात सामान्य रूप से जारी है और यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सिवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लिया। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया नया उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। गया जी में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की। और राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3035 शिक्षक चिन्हित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: रोहतास जिले में मानसून सक्रिय है, जिससे जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कैमूर वन जीव अभयारण्य के झरनों और पहाड़ी नालों में अचानक जल स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। लोगों से जोखिम वाले स्थानों पर न जाने तथा रील और सेल्फी बनाने से बचने की अपील की गई है। इधर जिले में खरीफ मौसम के तहत धान की रोपनी ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि इस वर्ष करीब 2,07,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। अब तक लगभग 10% रोपनी पूरी हो चुकी है। श्रावण मास में जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। धाम परिसर और गुफा क्षेत्र में बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम, पर्याप्त ऑक्सीजन, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत शेरशाह सूरी मकबरा, माझर कुंड और धुआं कुंड क्षेत्र के लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर सकेंगे। वहीं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए शेरशाह सूरी मकबरे के आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिले में आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस माह आयोजित पहले चरण के शिविर में जिले के सभी प्रखंडों, 65 पंचायतों और 32 शहरी वार्डों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े सैकड़ों आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इधर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रोहतास जिले में 1,06,000 से अधिक संदिग्ध और प्रभावित लोगों का निश्चय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। समय पर जांच, निःशुल्क दवा और निश्चय पोषण योजना का लाभ दिया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन कम होने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की है। बीते दिनों जिले के जमुहरा स्थित गोबर आधारित प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जिले में चल रही रोजगार सृजन गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के प्रभावी क्रिया अनुमान के लिए रोहतास जिले की राज्य में बेहतर रैंकिंग की सराहना की। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। योजना के माध्यम से अधिक लोगों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने से परिवार अपनी जरूरतों के अनुसार बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी। बीते दिनों जिले के सभी 229 ग्राम पंचायतों में पहली बार पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित ग्राम सभाओं में पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पंचायतों को विकास की सबसे मजबूत इकाई बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सशक्त होने से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा। सासाराम स्थित अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 100 बच्चे शास्त्रीय गायन, कथक, भरतनाट्यम, हारमोनियम और तबला का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि यह केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। रोहतास जिले में महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सखी वार्ता और दीदी अधिकार केंद्र के माध्यम से महिलाओं और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, बाल विवाह निषेध तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
0: रोहतास जिले

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज गायक कलाकार हैं आनंद कुमार सिंह। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं कबीरदास की ये भक्ति रचना।

का प्यारा। रैदास की इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यही संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे आनंद कुमार सिंह। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

पहला गाना हमने फिल्म मस्ताना से लिया है, लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ें हैं। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
1: मोहम्मद रफ़ी एवं आशा भोसले को अब आइए सुने फिल्म मजबूर में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और उसे संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मुकेश कगाया फिल्म पत्थर के सनम का एक गीत आपको सुनवाते हैं। मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: 34 km and running costs of under ₹1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: आकाशवाणी भागलपुर से ही आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। क्रोधी फिल्म के एक गीत को सुनते हैं सुरेश वाडकर एवं लता मंगेशकर की युगल आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए द बर्निंग ट्रेन का गीत, मोहम्मद रफी एवं आशा भोसले के युगल स्वर में। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: Future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज़ और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
3: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
4: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
5: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
4: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
6: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक आर्थिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग

0: 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 पैसे पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार

0: हथियार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेक दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness the performance by the Nad Vocal Ensemble.

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हममनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हममनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके दो रोज़ा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोशो खरोश से भरा हुआ था, क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिल-ए-दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्रयाज़मों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वज़ीर

आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राबतों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला

0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेहत इको निजाम में से एक बनकर उभरा है, जिसमें तकरीबन 94 करोड़ की तादाद में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वजह किए गए और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए गए हैं। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ABDM के तहत एक शानदार डिजिटल सेहत देखभाल का बुनियादी ढांचा वजह किया गया है और अगले मरहले में मुल्क भर में इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने और इस्तेफादा करने पर जो मरकूज की जानी चाहिए। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कौमी पैदावारियत काउंसिल NPC सनअत और अंदरूनी तिजारत के फरोग का महकमा और कॉमर्स के महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि जायजा मीटिंग के दौरान बैन इदारा जाति तआवुन को बेहतर बनाने, इदारा जाति सलाहियतों को फरोग देने और पैदावारियत और खिदमात की फराहमी के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार अपनाने पर तवज्जो दी गई। वजीर मौसूफ ने उन इकदामात का भी जायजा लिया जिनका मकसद ज्यादा मरबूत, मौसर और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग इंतजामी निजाम कायम करना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जिली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात हमारे नामा निगार से।
1: IMD के मुताबिक 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, मगरबी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी भारत के बाद इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज झक्कड़ों के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज दिन भर अब्र आलूद मौसम के साथ ज्यादा नमी का एहसास बरकरार रहा। नई दिल्ली से सोमिया शरण और ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत आज यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन में दाखिल हो गया। तमाम जरूरी इमिग्रेशन और सरहदी दस्तावेजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद भारत तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP ने यात्रियों के जत्थे को सरहद पर तैनात चीनी इंतजामिया की सरपरस्ती में दे दिया। इस जत्थे में कुल 52 मेंबरान हैं, जिनमें एक तिब्बी कारकुन और 3 खाना पकाने से मुंसलिक मेंबरान समेत 48 यात्री शामिल हैं। भारत के जर मुबादला के जखायर में 30 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन जखायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के जखायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ, जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उज्रदारियों की समाअत करेगी, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को एक रोजा पुलिस रिमांड में दे दिया था। एक मकामी अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जाम के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक SIT की तश्कील की थी। आज BJP ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हलके के जिमनी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाके कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन

0: हाउसेज ने शिरकत की ताकि मुस्तकबिल के साहिली गार्ड्स प्लेटफॉर्म्स पर गौर खास किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई, जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलों पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़ीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव बरतानिया के खिलाड़ी आर्थर फेरी को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साहित्यिक रेडियो पत्रिका कार्यक्रम शतदल। स्वर सहयोग सुप्रभात राय का है एवं प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।
2: श्रोता मित्रों नमस्कार, उपस्थित हैं हम शतदल के इस अंक के साथ। श्रोताओं, साहित्य का निर्माण शून्य में नहीं होता, ये प्रकृति, समाज, इतिहास, व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं के दैवीय आह्वान जैसे तत्वों से प्रेरित होता है। ये प्रेरणा स्रोत ही साहित्य को सजीव, प्रासंगिक और कालजयी बनाते हैं, मगर हर समय एक सा नहीं होता। आज अधिकांश लोग सफल होना नहीं अपितु वायरल होना पसंद करते हैं। जिस समय लोगों के हाथों में किताब रहनी चाहिए, उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया है। साहित्य के पतन के लिए कई आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी कारण जिम्मेदार हैं। सूचना के त्वरित माध्यमों, अध्ययन की घटती आदत और कला की तुलना में व्यवसायीकरण ने साहित्य की प्रासंगिकता को कम किया है। इसके साथ ही समाज में संवेदना और गंभीर आलोचनात्मक सोच का अभाव भी एक मुख्य कारण है। तो इसी कड़ी में अब आइए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता, आज साहित्य क्यों धूमिल है। वार्ताकार हैं निपेंद्र प्रसाद वर्मा।
3: साहित्य समाज का दर्पण तो कहलाता ही है, यह जनता की चित्तवृत्ति का संचित भंडार और उसकी आशाओं तथा आकांक्षाओं का कोष एवं उसके आगे आगे चलने वाली मशाल भी है। इसलिए साहित्य का सीधा संबंध समाज से है और समाज की रक्षा और उसके विकास के लिए साहित्य को धूमिल होने से बचाने की जरूरत है। साहित्य रहेगा तो समाज और देश बचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें चाहे मेट दो, हमारे नगर, प्रांत, देश, राष्ट्र सबका नाश कर दो, पर हम साहित्य का संजीवनी सुरा पीकर फिर से जी उठेंगे, अमर हो जाएंगे। उसकी स्वर्गीय प्रभा पाकर हमारा देश, हमारा राष्ट्र फिर से जगमगा उठेगा, क्योंकि साहित्य ही हमारी संस्कृति, हमारा प्राण और हमारापन है। साहित्य रूपी मारतंड के अभाव में समाज एवं देश में घोर अंधकार छा जाएगा। कहा भी गया है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। साहित्य से ही समाज और राष्ट्र को जीवन शक्ति मिलती है। साहित्य की प्रभा से ही समाज और

देश जाज्वल्य होता है, इसके बिना हमारा अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है। साहित्य बचेगा तो हम नए समाज और राष्ट्र का निर्माण फिर से कर लेंगे। यह मनुष्य में ऐसी चेतना का संचार करता है जिसके फलस्वरूप वह लोक मंगल की भव्य भावना से पूरित हो जनता के सुख दुख और आशाओं आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए उद्यमशील हो उठता है। ऐसे साहित्य के चिंतन और दर्शन से जो आस्था का मूल्य प्रख्यात समाज और राष्ट्र को मिलता था, उसका स्थान देहवादी भोगवादी और केवल मनोरंजन का लुत्फ देने वाले रासायनिक खाद युक्त साहित्य ने ले लिया है। इस यूरोपीय प्रभाव ने भारतीय साहित्य को धूमिल करने का काम किया है। आज साहित्य के पठन पाठन में भी कमी आई है। विज्ञान तकनीक और प्रबंधन तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में छात्रों की रुचि ने साहित्य से विमुख करने का काम किया है। फलस्वरूप देश एवं समाज में भौतिक समृद्धि की वृद्धि तो हुई किंतु आत्मिक समृद्धि संकुचित हुई। धीरे धीरे साहित्य हाशिए पर जा रहा है तथा अपनी प्रभा महिमा एवं प्रतिष्ठा आदि खोकर अप्रासंगिक दिखने लगा है। खासकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध से ही साहित्य जीवन से दूर होने लग गया था। एक समय था जब भारतेंदु और मैथ्यू अर्नोल्ड के काल में साहित्य को जीवन की आलोचना का पर्याय माना जाता था। आज शब्द और अर्थ का निरंतर टूटता संबंध यह संकेत दे रहा है कि साहित्य का भविष्य न केवल अनिश्चित है बल्कि साहित्य धीरे धीरे जीवन से निकलता जा रहा है। हिंदी के कई नामचीन साहित्यकार आज पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए गए हैं और विचारधारा विशेष के साहित्य को पाठ्य ग्रंथों में स्थान दे दिया गया है, जिसकी वजह से राष्ट्रवादी और लोक मंगलकारी सोच में कमी आई है। सहसंबंधों विश्व मानव कल्याण और सामाजिक समरसता बनाए रखने वाले प्रेरक साहित्य आज बहुत कम लिखे और पढ़े जा रहे हैं। फलस्वरूप आतंकवाद अलगाववाद और अपसंस्कृति को बढ़ावा मिला है तथा राष्ट्रवाद की भावनात्मक सोच में गिरावट आई है। जयशंकर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त माखनलाल चतुर्वेदी श्रीधर पाठक बालकृष्ण शर्मा नवीन सुभद्रा कुमारी चौहान सुब्रमण्यम भारती नजरुल इस्लाम रामधारी सिंह दिनकर और गोपाल सिंह नेपाली की राष्ट्रवादी कविताओं को आज उदंड बच्चा हिकारत भरी दृष्टि से देखता है। काश वह इन साहित्य मनीषियों की कविताओं को पढ़ा होता तो अलगाववाद और आतंकवाद तथा राष्ट्रद्रोहियों के समर्थन में देश के भीतर राष्ट्र विरोधी नारे नहीं लगाता, क्योंकि साहित्य समाज में राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रतिरोध में खड़ा होने वाला एकमात्र विकल्प है। देश के हर परिवर्तन और विकास के मूल में साहित्य की अहम भूमिका होती है। वैसी स्थिति में साहित्य का धूमिल होना राष्ट्र के विकास परिवर्तन और समरसता में व्यवधान होगा। साहित्य आज इसलिए भी धूमिल हो रहा है कि अब न तो वह समाज का दर्पण रहा, न आत्मा व्यक्ति, न सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना और न जीवन की आलोचना। नैतिक शिक्षा मूल्य व्यवस्था मनुष्यता का भाव विश्व मानव प्रेम का भाव आज साहित्य से तिरोहित होता जा रहा है। आज साहित्य के धूमिल होने का एक महत्वपूर्ण कारण संचार क्रांति का नकारात्मक प्रयोग भी माना जा सकता है। साहित्य जहाँ मनुष्य की संवेदनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, वहीं संचार माध्यम केवल घटनाओं का कोरा प्रदर्शन है। इसकी यांत्रिक अभिव्यक्ति में भाव और संवेदना की शून्यता होती है। ऐसी अवस्था में साहित्य आज अपनी बुनियादी मान्यताओं से कटता जा रहा है। अब तो वीडियो डिस्क वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग MF रेडियो माइक्रोफिल्म कैप्सूल वीडियो टेक्स्ट आदि के प्रयोग से संप्रेषण और अभिव्यक्ति का अर्थ ही बदल गया है। मानवीय मूल्य भाव संवेदना और सांस्कृतिक पतन में इन माध्यमों की असमानांतर भूमिका रही है। इनके प्रयोग से साहित्य की संप्रेषणीयता और साधारणीकरण की प्रक्रिया पर गहरा आघात हुआ है। फलस्वरूप साहित्य और पाठक के बीच तदाकार नहीं हो पाता है, जिससे अच्छा से अच्छा साहित्य भी अपने प्रभावपुंज से जनता के हृदय को आलोकित नहीं कर पा रहा है। आज साहित्य के प्रति जनता की रुचि में ह्रास होता जा रहा है। साहित्य के धूमिल होने में बाजारवाद की भूमिका भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। साहित्य भी आज अन्य उत्पाद की तरह बाजार की वस्तु बना दिया गया है। बाजार की मांग के अनुरूप सस्ती किस्म के साहित्य के प्रकाशन से समाज और देश में विकृतियां बढ़ी हैं।

0: ऐसी बात नहीं है कि आज उत्कृष्ट कोटि का साहित्य नहीं लिखा जा रहा है, ऐसे साहित्य छप भी रहे हैं, किंतु अन्य उत्पाद की तरह इसका मूल्य बाजार तय करता है। फलस्वरूप ऐसा साहित्य आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, और जब साहित्य आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा तब कैसे साहित्य में सामाजिक विकृतियों के प्रतिरोध में खड़ा होने का उत्साह भर सकेगा। 21वीं सदी में यह विकृति वही है। एक स्वस्थ समाज और सुंदर राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरत है जनता की मनोवृत्ति को बदलने की, और यह सत्कार्य साहित्य के अतिरिक्त अन्य माध्यमों के द्वारा संभव नहीं है। साहित्य के आलोक में ही कोई समाज और देश आगे बढ़ा है। समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाए रखने की औषधि है हमारा साहित्य। इसलिए ऐसे साहित्य को धूमिल होने से बचाने की जरूरत है। इसके लिए साहित्य को धूमिल करने वाले तत्वों की पड़ताल कर उन पर विराम लगाने की आवश्यकता है।
1: अभी हम नृपेंद्र प्रसाद वर्मा से पूर्व प्रसारित वार्ता आज साहित्य क्यों धूमिल है सुन रहे थे। शततल में अब आइए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित कहानी फर्ज की जीत। रचनाकार हैं उमाकांत भारती।
2: शुरू शुरू में फर्ज के इम्तिहान के सभी प्रश्न उमंग और उसकी पत्नी चांदनी को बहुत आसान लगे थे। बाबूजी की सारी जरूरतें ए से जेड तक खुशी और उमंग से वे दोनों पूरा करते रहे। यह शुरू के 2-3 महीने की बात थी। रामरस बाबू विगत 1 साल से स्वयं करवट भी नहीं बदल पाते, अपने हाथों से वे खा पी भी नहीं सकते थे। सुबह उन्हें बैठाकर मुंह धुलवाना, चौनपरास खिलाना, दूध पिलाना, हॉर्लिक्स पिलाना, नाश्ता कराना, दोपहर में सुसुम पानी से स्नान कराना, कपड़े बदलना, भोजन कराना, सुबह शाम दोनों आंखों में दवा डालना, 8 बार दवा खिलाना, शाम को नाश्ता कराना, रात में दूध रोटी और सब्जी खिलाना, इसके अलावे 15-20 बार सुसुम पानी पिलाना और कई बार मलमूत्र त्याग करवाना। 70 वर्षीय उमंग को 3-4 महीने के बाद ही परिचय कठिन लगने लगे। निश्चिंतता से खाने पीने और आराम करने के लिए उसे मोहलत नहीं मिल पाती थी। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती जब वह भोजन कर रहा होता तो पानी पानी की आवाज़ सुनकर वह बिना खाए ही उठ पड़ता, फिर भोजन की इच्छा मर जाती। कभी रामरस बाबू पुकारने लगते, उमंग बेटा पानी गला सूख रहा है, तब बिना सोच किए उसे बाहर निकलना पड़ता। यह सब देख सुनकर चांदनी को लगने लगा कि ऐसे में उमंग बीमार पड़ जाएंगे, तब वह कदाचित दोनों की देखभाल नहीं कर पाएगी। गठिया की बीमारी नहीं होती तो शायद कोई सगा भी तो नहीं है जो संकट मोचन बनकर मदद करे। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद उसने उमंग से कहा, भोजन करने वक्त या नेचुरल कॉल के दौरान आप बीच में नहीं उठा करें, मैं बाबूजी का काम कर दूंगी। क्या मलमूत्र का त्याग भी करवा सकोगी? उमंग का स्वर चुनौती भरा था। हाँ क्यों नहीं, बच्चा बूढ़ा एक समान, फर्ज के आगे किंतु परंतु आड़े नहीं आने दूंगी, लाज कैसी? उसका जवाब सुनकर उस दिन उमंग का उमंग और भी बढ़ गया। उस दिन से दोनों परस्पर सहयोग के आधार पर रामरस बाबू की सेवा करने लगे। दिन किसी तरह बीत जाता लेकिन रात मुश्किल भरी होती। रामरस बाबू कब सोते थे, सोते भी थे या नहीं, यह प्रश्न अकारण नहीं उठा, क्योंकि 25-30 मिनट के अंतराल पर रामरस बाबू की आवाज़ गूंजने लगती, पानी पानी पिलाओ, गला सूख रहा है। उनकी आवाज़ सने सने ऊंची होने लगी। बिना रुके उमंग की नींद टूट जाती, तब वह फायरमैन बन जाया करता था। रात के नीरव सन्नाटे में अक्सर रामरस बाबू की आवाज़ उनके घर की सीमा तोड़कर पड़ोसियों के घरों में दस्तक देने लगती। उन लोगों को भी नींद रात में कई बार उचट जाती, तब वे लोग कहने लगते, बूढ़ू पानी के लिए छछनते रहते हैं, जो बेटा बूढ़े बाप को मुफ्त का जल नहीं देता हो वह भोजन क्या देता होगा। इलाज और मलमूत्र साफ करने की बात तो बहुत दूर, सेवा नहीं कर पाते तो मार क्यों नहीं देते।

कोई दूसरा कहता, मारने की क्या जरूरत, भूख प्यास से तड़प कर मर ही जाएंगे, अब हमें ही कोई कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, आने दो सोसाइटी के सेक्रेटरी को। पड़ोसियों की बातें तीक्ष्ण कांटे बनकर उमंग के दिल में चुभ गए। दर्द की टीस से उसका अंतर्मन पीड़ा से कराहने लगा। सोसाइटी वालों की धमकी से चांदनी घबरा गई, ना जाने क्या करने वाले हैं ये लोग। चांदनी ने कहा, निष्ठावान सेवाधारी का यह कैसा कीर्तिगान। कहते कहते उमंग की आंखों से आंसू झड़ने लगे। तब चांदनी ने उसके बिखरते मनोबल को संजीवनी देने के ख्याल से कहा, कदाचित एक मर्द परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसकर घुटने टेक दे, लेकिन एक सपूत कदापि नहीं। श्रवण कुमार की कथा क्या आप भूल गए? एक बात और, हम लोग जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं, इसलिए हम किसी से डरने वाले नहीं। चांदनी की बातों ने उसके दिल पर उगे फफोले पर न सिर्फ मरहम लगाने का काम किया, बल्कि उसकी आत्मशक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। सोसाइटी वालों ने फिर कोई उत्पात नहीं मचाया, लेकिन कोल्ड वार के बुलबुले फटते रहे। दोनों ने अपने को निर्लिप्त कर दिया, उन लोगों की बातों को अनसुना करने लगे। 3-4 महीने बाद रामरस बाबू की हालत थोड़ी और बिगड़ गई। अब उन्हें दिन रात का ज्ञान कभी कभी नहीं रहने लगा। खाने पीने के मामले में भी उनकी स्मृति घर वालों की परेशानी और बढ़ा दी। नाश्ता भोजन और पानी पीने के बाद वे भूल जाते, थोड़ी देर में ही वे पुनः मांगने लगते। आए दिन वे कभी कभी आधी रात को भोजन और चाय मांगते। रामरस बाबू की स्मरण शक्ति छिन्न होने लगी है यह जानते हुए भी दोनों उनकी आवाज पर दौड़ पड़ते, क्योंकि थोड़ी भी देर होने पर वे जोर जोर से आवाज लगाने लगते। इसका कुप्रभाव दोनों के तन मन पर पड़ने लगा। कमजोरी, अनिद्रा, बदहजमी, सरदर्द, तनाव, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चांदनी ने उमंग से कहा, हमें अपना इलाज तुरंत करवाना चाहिए, अन्यथा हम लोग और सेवा करने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन बाबूजी अकेले कैसे रहेंगे, मर गए तो? नहीं नहीं, इन्हें 1-2 घंटे भी अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। उमंग ने अस्पताल जाने से साफ मना कर दिया। तब चांदनी ने स्त्री धर्म के तेवर दिखलाए, कहा, फर्ज की पुकार क्या बाबूजी के लिए सिर्फ, पत्नी के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी नहीं? प्राण रक्षा करना मानव का धर्म है, फर्ज भी है यह, तो फर्ज के निर्वहन में भेदभाव क्यों? उमंग को जवाब नहीं सूझा, समझ में नहीं आता क्या करूं। आप इन्हें वृद्धा आश्रम में भर्ती कर दीजिए, इससे हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अपने पितृ ऋण का बोझ मैं दूसरे पर नहीं डाल सकता, यह मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं, दोबारा ऐसा कहना भी नहीं। उमंग थोड़ा नाराज हो गया था। तब हमें एक सेवक या सेवका इनकी सेवा के लिए रखना चाहिए, कुछ अधिक मांग करे तो भी। चांदनी की यह बात उमंग को पसंद आ गई, लेकिन आजकल कर्मठ सेवक दुर्लभ जीव जैसे हो गए हैं। खोजने पर कदाचित भगवान मिल भी जाए, लेकिन कर्तव्यपरायण सेवक हरगिज नहीं। फिर भी मैं ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन से उमंग सेवक की खोज में पिल पड़ा, लेकिन पड़ोसियों को इतना सबर कहाँ। वे लोग हल्ला गुल्ला करते हुए उमंग के घर पहुंच गए। तुम लोग बुढ़ू को खाना पीना क्यों नहीं देते हो? सोसाइटी के सेक्रेटरी कल्याण सिंह ने आंख तरेर कर उमंग से पूछा। यह आरोप गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो उमंग। अगर इन्हें खाना पीना मिल रहा होता तो पानी और भोजन की रट क्यों लगाते रहते हैं? इस बार जवाब चांदनी ने दिया, आप सठिया गए हैं क्या, बिना खाए पिए ये जिंदा कैसे हैं? चांदनी को खुनस निकालने का मौका मिल गया था। पड़ोसियों की तीखी फफ्तियां सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। आधा पेट खिलाने पिलाने से तुरंत जान नहीं निकलती, लेकिन धीरे धीरे

0: कमजोर होकर मर जाता है आदमी। तुम्हारी भी यही साजिश है। तुम दोनों गुनाहगार हो, तुम दंड के पात्र हो, सिक्रेटरी ने गरज कर कहा। रामरस बाबू का कान और वाक्य अंतर बिल्कुल दुरुस्त था। दोनों की झूठी बदनामी सुनकर उन्होंने कड़क कर कहा, मेरा बेटा सुरन कुमार सा है, तुम्हारी तरह कपूत नहीं, तो अब चिल्लाते क्यों रहते हैं, पगला गए हैं क्या? कहते हुए वह उमंग की तरफ मुखातिब होकर आदेशात्मक स्वर में बोला, इन्हें या तो वृद्धा आश्रम भेज दो या इनके मुंह पर टेप साट दो, अन्यथा हम इन्हें पागल खाने भिजवा देंगे ताकि हम लोग रात में चैन से सो सकें। उसकी धमकी सुनकर उमंग ने कड़े स्वर में कहा, कपूत ही अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम की राह दिखलाते हैं, इन्हीं में से एक आप भी हैं। आप धन बल और जन से संपन्न हैं, फिर आपके पिताजी वहां क्यों हैं? आपका मुंह देखना भी पाप है, चले जाइए यहां से, अन्यथा। सेक्रेटरी का मुंह काला पड़ गया, मोहल्ले वाले उसे छोड़कर धीरे धीरे खिसक गए।
1: अभी हम उमाकांत भारती से पूर्व प्रसारित कहानी फर्ज की जीत सुन रहे थे। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं शतदल के आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें आज हम डॉक्टर रामपूजन सिंह से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुनेंगे।
2: मेरी पहली कविता है बेटियां। जीवन उपवन का वसंत है बेटियां, आनंद का उद्गम अनंत है बेटियां, हृदय का ऊर्जस्वित उल्लास है बेटियां, सचमुच अंधकार में प्रकाश है बेटियां, खुशबू बन घर में महकती हैं बेटियां, चुलबुल बुलबुल सी चहकती हैं बेटियां, जिंदगी की रूह सी लहकती हैं बेटियां, प्रीति की पावन अग्नि सी दहकती हैं बेटियां, मधुमय सुधा घटा सी बरसती हैं बेटियां, सेवा सुश्रम समर्पण से हरसती हैं बेटियां, प्रबल प्राण बल से सब प्राण लरसती हैं बेटियां, वीणा सी बजती कभी सिंहनी सी गरजती बेटियां, हमारा सच्चा दुलार प्यार मांगती हैं बेटियां, फूलने फलने बढ़ने चढ़ने का द्वार मांगती हैं बेटियां, माता पिता सबके लिए दुआ उपहार मांगती हैं बेटियां, हो जीवन का सदा श्रृंगार यही मांगती हैं बेटियां, कभी ना हो उन पर अत्याचार यही मांगती हैं बेटियां। मेरी दूसरी कविता एक गीत है, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, ज्योति का संदेश स्वर्णिम ला रहा हूँ, महाकाल का चक्र पल पल गतिशील है, परिवर्तन का नर्तन आवर्तन अनावील है, हो रहा अंधकार सघन गगन में भय घटा, क्षणित पर्यावरण विगलित वसुधा की छटा, सहरा पर बद्री बन मैं देखो छा रहा हूँ, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, आतंक अनीति प्रदूषण का कोलाहल रो रहे, असुर बल हुमच रहा विपदा छाई घन घो रहे, समता स्वतंत्रता बंधुत्व का सुमंच पर शोर है, पर अभी स्वतंत्र कमजोर कुतंत्र पुरजोर है, मैं ममता मानवता के सुगीत गा रहा हूँ, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, इस अंधेरी सुरंग के अंत में मुंतजिर प्रकाश है, अवसाद यंत्रणा की कोख में पल रहा उल्लास है, इस मनहूस पतझर का अंत होगा यही वसंत होगा, आसुरी हंता तृष्णा से मरमाहत मनुष्य फिर संत होगा, सृजन की संवेदना सुधा मैं बंधु ला रहा हूँ, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ, कली मन की खिलेगी धरा हरी नीले व्योम से मिलेगी, सामूहिक संकल्प से हृदय काया कल्प से जड़ता ही लेगी, पीड़ित मानवता का उत्थान होगा नव मंगल विहान होगा, पतन उत्कर्ष का सोपान होगा ध्वंस से नव निर्माण होगा, संजीवनी की खातिर मैं गंतव्य पर जा रहा हूँ, रहना प्रतीक्षमान तुम मैं आ रहा हूँ।

का संदेश स्वर्णिम ला रहा हूँ। मेरी तीसरी रचना एक गजल है। हो कर लहा लोट कभी नाचता उसका जिया था, तोड़ डाला उसे आपने, ऐसा उसने क्या किया था। होकर लहा लोट कभी फक्र जिस पर था आपको, ऐसा वह प्यारा पहिया था। पागल रहता था खुशी से, इतराता था बहुत खुद पर, सांवरिया था आपका अजीज बौराया बाबरिया था। रो पड़ता था हृदय आपका बिछोड़ कर उससे पल भर, आपकी खुशी का सबब था जीने का नटखट जरिया था। आंसुओं का जल पात्र ला दे कंधों पर मुरीद आपका, श्रद्धा बिहवल करता था अभिषेक समर्पित कांवरिया था। सींचता हुआ वसुधा को आपकी चेतना के सूखी सूखी, प्यारा कल कल छल छल बहता प्रणय का दरिया था। देखिए न किस कदर बेचैन वह तिश्नगी से छटपटा था, क्यों मर रहा मैं जिसने आपकी आंखों से पिया था। रौनक चेहरे पर आपके आती थी जिसके रोशन दीदार से, रो रहा वह आज बिलखकर ऐसा उसने क्या किया था। बाती जल रही अब तो बूझने को है वह प्यारा चिराग, डालिए स्नेह उसमें आपने, डालिए स्नेह उसने आप में, एक माँ को पा लिया था। होकर लहा लोट कभी नाचता उसका जिया था, तोड़ डाला उसे आपने, ऐसा उसने क्या किया था। एक और गजल। बहुत हंसती हैं आंखें आपकी, एक करम कीजिए गिरा कर पलकी, मन तबस्सुम से मोह लीजिए, खड़ी हवा पास आपके हसरत ये खुशबू लिए, उसकी झोली में नाजनीन सुरभि डाल दीजिए। यह को क्या हो गया है चांद को, क्यों छुप गया वो, तसल्ली देकर उसे हौसला आप जाई कीजिए। तपिश ए मोहब्बत होती मधुर मधुर मादक बहुत, पकता उसमें फले इष्ट आप उसी में सीजिए। फलक पर प्यार के छाती घटा आबे हयात की, खिलता गुलशन मन का आप उसमें।

0: पूजन पल दो पल के लिए भी टलना मिलन का है हादसा, फिर हाथ न मीजिए बहुत हंसती हैं आंखें आपकी। एक करम कीजिए गिरा कर पल की, मन तबस्सुम से मोह लीजिए।
1: अभी हम डॉक्टर राम पूजन सिंह से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोताओं, हिंदी साहित्य न केवल भाषा का एक माध्यम है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों का जीवंत दर्पण है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, नैतिक विकास करता है और समाज की कुरीतियों के प्रति जागरूक करके एक सशक्त समाज के निर्माण में मदद करता है। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे अनुमति लेने का। आज के शतदल के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। अपने सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएं। इसके लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phair.bhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल। स्वर सहयोग सुप्रभात राय का था एवं प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन राग जोग में। आपके साथ संगत कर रहे हैं गायन में उस्ताद यूनुस हुसैन खां।

आप सुन रहे थे उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन राग जोग में। आपके साथ गायन में संगत किया था उस्ताद यूनुस हुसैन खां ने। शास्त्रीय संगीत का हमारा यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.7।

सुनने वालों की खिदमत में विशाल आनंद का प्यार भरा नमस्कार। ये पहला गाना फिल्म मेरा साया से है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं राजा मेहदी अली खान और संगीतकार हैं मदन मोहन। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें अपनी फरमाइश लिख भेजिए आप श्रोताओं ने। ये पहली फरमाइश हमें ईमेल से आई है, लिखने वाले हैं हितेंद्र दास आसाम से। गांव झाखोद राजस्थान से ये ईमेल आया है, लिखने वाले हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और इनके परिवार के सभी लोग। अगली फरमाइश भी हमें ईमेल के रूप में ही प्राप्त हुई है, लिखने वाले हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, लिखने वाले हैं मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज और हसन नवाज। और ये पत्र आया है मायागंज दुर्गास्थान भागलपुर से, लिखने वाले हैं संतोष कुमार यादव, अभिनव कुमार, ममता कुमारी, शिल्पी और अंशु। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गाना।

आशा भोसले एवं मुकेश का गाया फिल्म मेरा नाम जोकर का आपको गीत सुनवाते हैं। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। मधेपुरा अनिरुद्ध चौक से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं प्रेमचंद ठाकुर, मीना ठाकुर, राज ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, संजू मिश्रा, सुभाष मिश्र, भवानी, लवकुश, अरुण झा और इनके परिवार के सभी लोग। किशनगढ़ अजमेर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं शैलेश झा। नौगछिया मुमताज महल्ला से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं जफर अंसारी, अहतहर अंसारी, शौकत अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं सुजीत रॉय, दीपांकर राय और तमाम रॉय परिवार। मोहल्ला सदरुद्दीन चक से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं मोहम्मद शहजाद हासिम, मोहम्मद उद्रान और परिवार के सभी सदस्य। सैलबाग भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं अभिजीत, अभिषेक, सोनू, मोनू, भाव्या, पारस, आदित्य, प्रीति और मोनी। दिल्ली शहर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं हीना नाज, अबीदा और फातिमा नाज। सुल्तानगंज सीतारामपुर से इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है प्रमोद पासवान, सुस्मिता, सागर, दीपा, करीना और सूरज ने। भट्टा बाजार पूर्णिया से ये पत्र है। लिखने वाले हैं लीनू, नीशू और उनके मम्मी पापा। कुनौनी बांका से हमें पत्र लिख भेजा है बबलू, डब्लू, नीपू, चंदा और ललन ने। और ये पत्र आया है ग्राम कुड़रो से। लिखने वाले हैं पप्पू, लीली, आपरा, वैष्णु और कौशिक। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर अब आइए सुनते हैं ये गीत।

किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर का गाया फिल्म मन मंदिर का एक गीत आपको सुनवाते हैं। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें अपने फरमाइश लिख भेजी है आप श्रोताओं ने। ये फरमाइश हमें ईमेल से प्राप्त हुई है और लिखने वाले हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़।

छत्तीसगढ़ राज्य से ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। लिखने वाले हैं रामचंद मखीजा काफिर भाई, सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और पूरा मखीजा कुटुंब। ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जागेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और एक अंतिम ईमेल हमें प्राप्त हुआ है भागलपुर से। लिखने वाली हैं रिधिमा यदुवंशी। तो आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर अब आइए सुनते हैं ये गीत।

आशा भोसले एवं किशोर कुमार को अब आइए सुनते हैं फिल्म लावारिस में। गीतकार अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें अपनी फरमाइश लिख भेजी है आप श्रोताओं ने। सैनिक रेडियो श्रोता संघ बबूरा धनकुंड से ये पत्राया लिखने वाले हैं मोहम्मद परवेज आलम, आर एस स्वीट, मोहम्मद रियाज, अनाया परवेज और आतिफ परवेज। ये पत्र आया है बबूरा वार्ड नंबर 10 मकैता धनकुंड बांका बिहार से, लिखने वाले हैं मोहम्मद परवेज आलम। बड़ी गोविंदपुर जमालपुर मुंगेर से ये पत्र आया, लिखने वाले हैं मुकेश कुमार, प्रवीण, बबलू, राजेश, जितेंद्र, जीवन, मनोज, दीपक, विवेक, मनोहर, अनिल, हिमांशु, कौशल, विजय और प्रफुल्ल मोहन। बड़ी खंजरपुर भागलपुर से ये पत्र आया, लिखने वाले हैं गुलफराज आलम और जमालुद्दीन नेपाली। इंदिरा चौक दिल्ली से ये पत्र आया, लिखने वाले हैं अजीम वकार और माहिरा अजीम। मोहल्ला ततारपुर भागलपुर से ये पत्र आया, लिखने वाले हैं अरसान अहमद, जरीस वली अहमद, साजिल शाहदाब अहमद, जयप्रकाश नारायण, आहिशा और इनके परिवार के सभी लोग। और ये पत्र आया लुत्फ अली लेन मोहल्ला काजवली चक से, लिखने वाले हैं फौजल नसीम, रोज़, सुमेरा शहरीन, फैजल नसीम, शादान, सिमरा, सिदरा, जोया और अनहम। आप सबों की मिली जुली फरमाइश पर अब आइए सुनते हैं ये गीत।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए महेंद्र कपूर का गाया फिल्म तवायफ का गीत। गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है मुजाहिदपुर पूरब टोला भागलपुर से मोहम्मद राजू खान, जहांगीर खान, सबनम जानम, खैरुबाही, रूबी बेगम, अरबाज खान, अयाज खान और महबूबा खातिन। और ये पत्र है बसवारा पुंसिया से। लिखने वाले हैं पवन कुमार सिंह, सचिन छोटू, राजा सौरभ और गोलू।

0: पसंद आपकी फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आजाद साढ़े 12 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly four decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Ki Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Saioi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
2: We will be building on the things that we've already worked on. So, free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So, there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports diplomacy, and also under the economy piece, there will be more on horticulture, agriculture, and education as well. So, there are many, many aspects of it, including maritime security as well.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity, maritime, technology, defense, and cyber and AI domains. The two leaders also held a comprehensive exchange of views on developments in the Gulf and efforts to ensure peace and stability in the region. Dr. Jaishankar highlighted that the discussions reflected the trust and strength of strategic partnership between India and Oman. Meanwhile, the Omani Foreign Minister said that the long-standing maritime ties between India and Oman have connected their people for centuries and continue to provide a strong foundation for the partnership between the two countries. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan today reviewed preparations for the upcoming monsoon session in the Parliament House complex. The session of the Parliament will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of August. In a social media post, Mr. Meghwal said, a comprehensive review of the legislative business scheduled for the upcoming session was conducted and necessary guidelines were issued. Indian Railways has approved 206 crore rupees for covered deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. The project aimed at expanding the indigenous safety system across high density and strategically important routes. The Railway Ministry said the provision of covered version 4.0 will be implemented on the Rewari Delhi and Shakur Basti Bathinda sections of Delhi Division. The system has been designed to significantly enhance railway safety by preventing signal passed at danger incidents and train collisions. The ministry said the system continuously monitors train movements, automatically applies brakes whenever necessary, permits trains to operate safely at maximum permissible speeds. It also supports reliable train operations even during adverse weather conditions such as dense fog. In football, Spain will face Belgium.

0: in the second quarterfinal of FIFA World Cup at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. France has already stormed into the semifinals after defeating Morocco 2-0 in the first quarterfinal in Boston. In Wimbledon tennis, Germany's Alexander Zverev stormed into men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry in the semifinal this evening. The second-seeded Zverev produced a clinical performance to defeat Ferry in straight sets 7-6, 6-2, 6-4. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की यह प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:48 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे।

ग्यारह बजकर दस मिनट हो चुके हैं। अब हमारी आज की यह प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:48 पर अपने कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे।